है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि

0: जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं, कुछ जगह एक बीज कम पड़ते हैं, तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पे कम बीज पड़ता है वहाँ पे पौधा बौना और मोटा होता है, और जहाँ पर घना बीज पड़ता है वहाँ पर नर्सरी है जो आपका पौधा है जो लंबा और उसका जो तना होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हमें मुख्य भूमि में देते हैं तो उस समय हमें गुणवत्तापूर्ण पौध नहीं तैयार होता है। तो किसान भाई इसको नर्सरी में अगर जमीन में भी डाल रहे हैं तो बीज को हमेशा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर दें ताकि उनको पौधा अच्छा प्राप्त हो। दूसरा, किसान हमारे सावधानी बरतें कि लगाते समय वो कोशिश करें कि लगाने के एक दिन पहले उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें किसी कीटनाशक को अवश्य पानी में डाल करके उसका पटवन कर दे ताकि प्रत्येक पौधा में कुछ न कुछ कीटनाशक का अंश आ जाए। दूसरा चीज़ है कि अगर वो लगाने जा रहे हैं पौधे को तो ऊपर की पत्तियों को काट दें, जो बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं लगाने में, सिर्फ उसके एपिकल कली का भाग को छोड़ दें और बाकी पत्तियों को हटा दें वो नर्सरी में ही। इससे क्या होगा कि जब आप उसे मुख्य भूमि में लगाएंगे तो लगाते समय आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पत्तियां ही खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, और जब पत्तियों को सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो पत्तियां हैं जो जड़ से आपको खाना मांगना, पानी मांगना प्रारंभ कर देगा, और आपका जड़ जो है अभी ज़मीन में स्थापित नहीं हुआ है। तो अपनी लगाए गए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए किसान भाइयों को अग्रभाग को छोड़कर बाकी की पत्तियों को हटा दें, और इससे क्या होगा, पत्तियों को हटाने से आपका मुख्य तना ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तना निकलना प्रारंभ हो जाएगा जहाँ जहाँ से आपने पत्तियाँ छोड़ी हैं, तो कलिका है जो तना में परिवर्तित हो जाएंगी, इससे पौधों में शाखाएँ की संख्या बढ़ जाएंगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फल लगने वाले कल्ले भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर किसान अपने पौधों का प्रबंधन करते हैं नर्सरी अवस्था में ही तो वो उत्पादन में एक नया आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मैडम। और श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आप उन्नत कृषि कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हम खेती से जुड़ी बातें करते हैं। किसान भाइयों के खेती में आने वाली दिक्कतों के समाधान को हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। तो आज हम विषय लेकर आए हैं रबी तिलहनी, राई, सरसों, तोरियां, इसके बारे में, और प्रमुख किस्में क्या क्या हैं इसकी, और इसकी प्रारंभिक तैयारी आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
2: किसान भाई नमस्कार। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि बढ़िया मुनाफा के चलते किसानों के बीच जो हमारी रबी तिलहनी फसलों को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसा कि बाज़ार में तिलहन की फसल से निकाले गए खाद तेलों की मांग ज़्यादा हो रही है, यही वजह है कि जैसे कि अभी राई, तोरी, सरसों और मूँगफली के तेलों की कीमत में काफ़ी उछाल दिखाई पड़ रहा है
1: जी।
2: यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की भी तरफ से तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी बहुत सा योजना चलाई जा रही है। परिणाम के तौर पर हम देख रहे हैं कि तिलहन की खेती का रकबा में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है
1: जी। तो इसमें से तिलहन की किन फसलों की खेती कर किसान भाई जो है आसानी से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं सर?
2: जैसे कि जिसे तिलहन जो है हमारी अर्थव्यवस्था में अनाज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तिलहन के फसल से जो हम लोग तेल जो निकलता है उसको तेल में आहार कप में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे अन्य उत्पाद भी बनते हैं जैसे पेंट में, वर्निशेस, वनस्पति तेल, साबुन, इत्र, ये सब के प्रयोग में कच्चे माल के रूप में हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है। तेलहन में तेल निकालने के उपरांत बची हुई खली का प्रयोग पशुओं को चारे और खाद के रूप में भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तिलहन फसल में जैसे अभी रबी मौसम है तो राई

0: सरसों, तिल, अलसी जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, का महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन में हमारा जो भारत है विश्व में तीसरा स्थान है। बिहार के में रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में राई, तोरिया और सरसों का ही प्रमुख स्थान है।
1: जी
0: इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य तेल या जानवरों के लिए खल्ली के रूप में किया जाता है। किसान भाई, अधिक एवं गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि इसकी खेती हम वैज्ञानिक ढंग से करें, जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राई, तोरी, सरसों के उन्नत प्रभेद और कौन कौन सी है और खेत की विधि क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तोरी के अनुशंसित प्रभेद उसके बारे में बात करेंगे। तोरी के का बुआई का समय मुख्य रूप से 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच है। तो इसके लिए जो अनुशंसित बिहार के जलवायु के अनुकूल जो हमारे लिए अनुशंसित प्रभेद है उसमें RUTS-17, इसकी परिपक्वता अवधि 90 से 95 दिनों की होती है। इसका औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेल की मात्रा इसके बीज में 43% पाई गई है। इसी तरह दूसरा प्रभेद है पंचाली, यह 95 से 105 दिनों की प्रभेद है। इसका भी औसत उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 40% है। इसी तरह PT-303 और भवानी किस्म है जो 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी भी औसत उपज काफ़ी अच्छी है, इसे 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 43% पाई गई है। इसी तरह किसानों के बीच में पीली सरसों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो पीली सरसों के लिए जो उन्नत अनुशंसित प्रजातियां हैं उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पहले था उसके द्वारा ये विकसित की गई थी, उसमें 66-197-3 और इसका राजेंद्र सरसों 1 और स्वर्णा। इसके बुआई का समय 10 से 20 अक्टूबर है जिसमें अच्छा उपज किसान भाई ले सकते हैं और परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की होती है। औसत उपज जैसे 66-197-3 की 14 से 16 क्विंटल है और राजेंद्र सरसों अभी वहाँ से अधिसूचित तो विमोचित हुई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, तो उसमें 15 से 16 क्विंटल इसका औसत उपज है और तेल की मात्रा 46% पाई गई है। और भी बहुत से अच्छे प्रभेद हैं, जैसे पीली सरसों के लिए अभी जो हाल के दिनों में जो प्रभेद विकसित की गई है उसमें NRCYS-0510, यह प्रभेद का औसत उपज 1317 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसका परिपक्वता अवधि जिसको हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं वो 94 से 125 दिनों की है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें तेल की मात्रा 38.2 से 46.5% पाई गई है। ये वेराइटी 2009 में नोटिफाई की गई। इसी तरह दूसरी प्रभेद अच्छी प्रभेद है YSHO-401, इसका इस प्रभेद का भी औसत उपज 12 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा परिपक्वता अवधि 115 से 120 दिनों की होती है। इसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी पाई गई है जो 43 से 45% है। इसी तरह जैसे हम लोग पीली सरसों के बारे में बात किए उसी तरह राई के जो उन्नत और अनुशंसित प्रभेद है उसमें वरुणा, बूसा बोल्ड, क्रांति, राजेंद्र राई पिछात और राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम। तो वरुणा जो है उसको बुआई का उपयुक्त समय जो है 15 से 25 अक्टूबर है। इसकी परिपक्वता अवधि 135 से 140 दिनों की है और उपज बहुत अच्छी है, 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसको 42% इसमें तेल की मात्रा पाई गई है। उसी तरह अभी राजेंद्र इसे अभी धान कटने में लेट हो जाती है तो इसके लिए जो किसी किसान बंधुओं को लगाना है तो इसके लिए राजेंद्र राई पिछात जो 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी परिपक्वता अवधि 105 से 115 दिनों की होती है और औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 41% पाई गई है। इसी के अनुरूप राजेंद्र अनुकूल ये भी पिछात किस्म है और इसको लोग किसान भाई 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक लगा सकते हैं। उसी तरह राजेंद्र सुफलाम ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है राई की और इसको 15 नवंबर से 25 दिसंबर इसको लेट बहुत लेट तक भी किसान भाई इसको ले सकते हैं। यदि विलम्ब से भी बुआई करें तो अच्छा उपज दे देती है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसमें तेल की मात्रा 40% पाई गई है। इसी तरह पूसा IRI संस्थान से पूसा मस्टर्ड 27-2011 में अधिसूचित विमोचित की गई। इसका औसत उपज 1417 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो तेल की मात्रा 40 से 45% पाई गई है। उसी तरह पूसा मस्टर्ड 26, पूसा मस्टर्ड 28, अभी हाल के दिनों में 2020 में एक बहुत अच्छी प्रभेद आई है पूसा महक, इसका औसत उपज 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा तेल की मात्रा

0: इसमें 42% पाई गई है
1: जी। और सर अभी यहाँ पर सरसों, तोरी और राय की बात हम कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती कर हमारे किसान भाई मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं?
0: सरसों का जैसे हम लोग जानते हैं कि बीज दर इसका 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो किसानों भाइयों को एकदम बीज दर हिसाब से लगाना चाहिए। ज़्यादा बीज दर रखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो पंक्ति में बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी की दूरी हम लोग को 30 सेंटीमीटर रखनी है, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। इकाई क्षेत्रफल में जैसे पर्याप्त पौधों की संख्या होती है तो उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। और बीज को सबसे बड़ा है कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से जो जर्मिनेशन होता है, बीज का जमाव होता है, वह समान रूप से होता है, यह ध्यान देना चाहिए। और बीज उपचार के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्मेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के दर से हिसाब से हम लोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी मृदा जनित जो फंगस है उससे बचाव करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं खाद उर्वरक का प्रयोग। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 10 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, तथा 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम सफोर जिसको फास्फोरस, तथा 40 किलोग्राम पोटास खेत में डालने से फसल के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जैसा कि नेत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा, जैसे कि हम लोग जुताई अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, और जो शेष नेत्रजन की आधी मात्रा है उसमें फूल आने के समय हम लोग को उपरिवेशन के रूप में दे देना ज़्यादा उपज देती है। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर यदि गंधक, जिंक और बोरोन का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि कमी हो तो असिंचित अवस्था जैसे होती है तो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन, 20-20 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा पोटास के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और पौधे की बछनी हम लोगों को करना चाहिए। यदि बीज बुआई के 15 दिनों बाद बछनी की आवश्यकता यदि आपको दिखाई पड़ रही हो तो कर देना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर अन्य सभी पौधे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर पौधे को सनलाइट मिलना, सूरज की प्रकाश मिलना अति आवश्यक है। कतार में सही दूरी पर पौधे में होने से उपज में वृद्धि होती है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तथा इसमें जो निकोनी और कमौनी होती है तो बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद निकोनी अवश्य करनी चाहिए। खेत में खरपतवार मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ पौधों के जड़ों के पास प्रकाश एवं हवा ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि फसल की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। सिंचाई को यदि हम देखें तो राई और सरसों में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल लगने के समय करनी चाहिए, तथा दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी न हो तो हल्की सिंचाई कर देना ज़्यादा हितकर होता है
1: जी। और अब इसमें लगने वाले रोग और कीटों के प्रबंधन के बारे में बताएं।
0: जो प्रमुख कीट और रोग इसमें सरसों में लगते हैं उसमें प्रमुख रूप से है जिसको हम लोग सफ़ेद रोली रोग या सफ़ेद रतुआ रोग हम लोग कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है या सरसों का अति इससे सफ़ेद रतुआ जो रोग है वह बहुत भयंकर रोग है। यह बीज और भूमि जनित रोग है। इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद जैसा कि हम लोग देखते हैं पत्तियां की निचली सतह पर सफ़ेद रंग का उभरे हुए फफोले दिखाई देने लगते हैं। फफोले को ऊपरी सतह पर पत्तियां पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उग्र अवस्था में सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोलों पत्तियाँ के दोनों सतह पर फैल जाती है, और फफोलों को देखिएगा तो फट जाने पर सफ़ेद चून बाहर की तरफ फैलता है और पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं, और फूल लगने और फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती है जिसमें बीज नहीं बन पाता है और काफ़ी क्षति होती है। तो इसके नियंत्रण के उपाय है कि सरसों की बुआई हम लोग को हमेशा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करना चाहिए, और बीजों को जैव नियंत्रक आजकल बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। तो ट्राइकोडर्मा पाउडर 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम या फफूदनाशी मेटालेक्सिल कि 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई करें, और फसल के बुआई के 55 से 60 दिनों के बाद या रोग के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल MZ 2% का छिड़काव करें, और आवश्यकता अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर दोहरा दें। एक सरसों में अंगमारी रोग लगता है। इस रोग की पत्तियों पर कथई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। देखने में ये धब्बे आँख की तरह प्रतीत होते हैं, और उग्र अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं जिससे कि सरसों की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती है। तो इसके नियंत्रण के लिए थायराम 75 WP 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से किसान भाई इसको बीज को

उपचारित लगावें और तो ये समस्या से निजात पा सकते हैं। यह 100 किलोग्राम सरी हुई गोबर की खाद में 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम मिलाकर 15 दिनों तक रखें और बुआई के पहले खेत में छिड़क कर हल्की सिंचाई कर दें। और दूसरा सबसे प्रमुख रोग है सरसों का तुला सीता रोग, जिसको डाउनमिल्डी भी कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियां के निचली सतह में ये रोग दिखाई देता है। निचली सतह पर कपास की तरह उभरी हुई सफ़ेद भुरियाँ दिखाई देती है, जिसमें पत्तियाँ के निचली सतह पर

0: आक्रमण ना हो, और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए, और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
1: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
0: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है, क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी

ते हैं उन्हें बता दे, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है उन्हें बता दे, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दे और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। We'll be right back.

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: prší.
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका

0: भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है, साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म हैं जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म हैं।
1: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
0: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज से ही वो काफी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम

0: उसको उपयोग करते हैं, साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है, और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8।

0: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: सेहत सही और लाभकारी, सन्नाटा भूले भाई।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने बहुत सारी बातें की है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया है, पर आज हम बातें करने वाले हैं टीबी के बारे में। इसके पीछे खास वजह यही है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड टीबी डे को मनाने की शुरुआत क्यों की गई और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और टीबी कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिथिलेश कुमार झा सर, आप हैं STLS। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कब इस वर्ल्ड टीबी डे मनाने की शुरुआत हुई थी?
2: 1882 में रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक के द्वारा जो है सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई। तब से लेकर के एक हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पर 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, SWC सेंटर हुआ, सदर अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर होते हैं वहाँ पर हम लोग जो है सो अनेक प्रकार की रैली, झांकियाँ और अनेक तरह के कार्यक्रम को चला करके या लोगों को बताते हैं कि टीबी क्या है।
0: सर, इस साल वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है?
2: इस बार का स्लोगन है यस वी कैन इन टीबी, लीड बाय भारत, पावर्ड बाय पीपुल ऑफ भारत। यह संदेश स्पष्ट करता है कि टीबी के खिलाफ जंग केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह जन आंदोलन बनना चाहिए, जिससे कि जो भी NGO हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबकी भागीदारी है कि इस बीमारी को समाप्त किया जाए।
0: बिल्कुल सर, लेकिन जब हम बीमारी को समाप्त करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस बीमारी को समझना चाहिए कि वो बीमारी है क्या। तो सबसे पहले बताइए कि टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है?
2: टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बलगम को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने पर जो है सो आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है।
0: और अभी हमारे क्षेत्र में टीबी की वर्तमान स्थिति क्या है?
2: अभी हमारे जो क्षेत्र में है, लगभग मैं प्रत्येक PSC में लगभग 100 जांच होती है, जिसमें कि 5 से 7 टीबी पेशेंट जो है स्पुटम पॉजिटिव जो है सो मिलता है, जिसके कि फेफड़े की टीबी होती है, और कुछ अन्य हैं जो कि लिम्फ नोड्स हुए शरीर के। सबसे बड़ा चीज़ है कि शरीर टीबी बीमारी किसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेफड़े की जो टीबी होती है उसको बहुत अच्छे से केयर करके जो है सो हम लोग दवा चलाते हैं।
0: मतलब टीबी जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में होता है, ये सही नहीं है, वो किसी भी अंग में हो सकता है।
2: नहीं, 70% जो है फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, या लिम्फ नोड्स बन के, या एब्डोमिनल कॉक्स हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जेनेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
0: अच्छा, तो सर टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और कई बार लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, शायद हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानना चाहिए?
2: 2 सप्ताह से ऊपर खांसी हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा है, हेमोपोटाइसिस यानी कि बलगम के साथ में खून आ रहा हो, शाम के समय में जो है सो बुखार लग रहा हो, ऐसे परिस्थितियाँ में जो है सो हमें नज़दीक के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जांच एवं दवा की सारी व्यवस्था उपलब्ध है।
0: सर, अभी आपने जांच की बात की, तो किसी भी व्यक्ति को जांच कब करवानी चाहिए? उसे क्या, जैसे कि आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, तो और भी कोई ऐसे लक्षण जो समझ आए? तो कई बार हमें लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम की वजह से होगा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसे हम समझ कर जाँच करवाने जाते?
2: अभी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के नीचे स्तर से लेकर के मैंने JLMCS तक में जो व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम जो है सो खांसी हो जाए, बुखार हो रहा हो, भूख नहीं लगे, तो लगभग सारे जो है सो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जरूर लिख देते हैं स्पुटम 4 APs और एक्सरे लिखने की व्यवस्था सब जगह उपलब्ध है।
0: और जाँच के बाद अगर किसी को टीबी निकल जाता

0: जाता है, तो उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं है। तो क्या इसका इलाज है और क्या टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, और अगर टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है तो कितना समय लगता है इलाज में?
1: टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, मात्र दवा प्रत्येक दिन खाना है, समय पर खाना है, और यह दवा 6 महीना की इलाज है। 6 महीना तक जो है सो निरंतर कुछ काम करें, कुछ काम करें या न करें, लेकिन दवाइयाँ जरूर खाएं तो बीमारी समाप्त हो सकती है।
0: सर, कई बार होता है कि हम दवाई खाना शुरू करते हैं और हमें सुधार महसूस होने लगता है, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, हम महसूस करने लगते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, और ऐसे में मरीज बीच में दवा छोड़ देता है, तो अगर ऐसा वो करता है तो इससे क्या खतरा हो सकता है?
1: जो व्यक्ति बीच में दवाइयाँ छोड़ते हैं उसको जो है सो MDR होने की संभावना होती है, कि जो भी हम दवाइयाँ रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड या किसी जो दवाइयाँ खिला रहे हैं वो रजिस्ट जो है सो करेगा तो वह जो है सो पेशेंट को MDR होने की संभावना होती है। इसीलिए हमें दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, हमें 6 महीना तक दवाइयाँ पूरी तरह खानी है। उसके लिए सरकार या जो भी जन भागीदारी जिनकी है वो सारे लोग लगे हुए हैं कि हमें हर रोगी के लिए सुपरविजन की व्यवस्था है, पर्यवेक्षण की व्यवस्था है, उसके घर तक की जाने की व्यवस्था है, सब लोग जाते हैं और जाने के बाद उसे जो है सो मरीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं।
0: सर, ये भी मैंने सुना है कि अगर दवाई छोड़ दे तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, तो ये अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया तो उसके बाद क्या किया जा सकता है?
1: उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था करके किया हुआ है कि मायागंज है, JLMCH जो है, JLMCH में भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहां पर जो है सो TRUNET, CVNET की जांच की व्यवस्था है, और वहां पर जो है जांच किया जाता है। जांच करने के बाद में उसमें भी 9 महीना की जो दवाइयां हैं वो सरकार के द्वारा जो है सो उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयां हैं।
0: तो मतलब दवाएं तो मुफ्त हैं ही, कई बार लोग इसलिए भी जांच नहीं कराते कि पैसे लग जाएंगे।
1: जो भी जैसे 6 महीना की दवाइयाँ देना, उसका जांच कराना, MDR है या नहीं है, दवा रजिस्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी दवाइयाँ सरकार में उपलब्ध हैं, सारी जांच की व्यवस्थाएं सरकार में उपलब्ध हैं।
0: सर, MDR के बारे में आप बोल रहे हैं, MDR क्या है?
1: जो भी दवाइयाँ हम लोग जो खाते हैं, जिसमें कि 4 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं, रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड, जो दवाइयाँ चलती हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर पर जो है रजिस्ट कर जाती है। रजिस्ट का मतलब होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो है हम लोग जो है सो उसे CVNET करवाते हैं, उसके बाद रजिस्ट है एसोनियाजाइड या रिफाम्पिसिन, यदि रजिस्ट होता है कि उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर पर कोई काम नहीं कर रही है, तब हम लोग जो है सो उसे MDR के लिए जो है सो प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: क्या लक्षण होते हैं इस बारे में जान लिया, इलाज किस तरीके से है ये जान लिया, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि हम किसी भी बीमारी से खुद को बचा कर रखें, तो टीबी से बचाव के लिए आम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
1: जो भी टीबी मरीज हैं उसका जांच सभी समय पर होना, उसके परिवार के जितने फैमिली मेंबर हैं उसका भी जांच करवा लेना है। जो भी स्पुटम इधर उधर खखार जो फेंकते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी एक जाकर के घर के कोने के किसी सिरे में फेंकना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि किसी को किसी मरीज घर में किसी मरीज को यदि टीबी हो गया है तो उसके सारे परिवार का उसका जो है सो जाँच हो जाना चाहिए। जांच के लिए जो है सो फिर वही PSC में आना है, उसको जो है सो सारी जांच करानी है।
0: जांच में टीबी निकल गया, मान लिया कि घर वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम बाहर बताने से डरते हैं कि लोग भेदभाव करने लग, क्या ये सही है कि टीबी मरीज के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, या फिर उनके साथ उठने बैठने से भी किसी को टीबी हो सकता है, क्या ये सही है?
1: अब यह भ्रामक बिल्कुल गलत है कि टीबी मरीज के साथ में हम रहेंगे तो हमें टीबी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं है। मात्र है कि उस टीबी मरीज को हमें 6 महीना तक सब लोग मिल करके दवा खिलानी है। जितना जल्दी हम लोग दवा खिलाएंगे उतना जल्दी जो है सो रोगी ठीक होगा। और ख़ास करके ये रखना है कि जो भी टीबी के मरीज के घर वाले हैं उसका जाँच जो है सो सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरी चीज़ है, जो कि निःशुल्क है।
0: तो एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक टीबी फैल सकता है?
1: टीबी फैल सकता है, कम से कम जो है सो 10 आदमी को जो है सो एक मरीज से फैल सकता है।
0: तो मतलब किस तरीके से, मतलब उसका जूठा हमने खा लिया?
1: जूठा कुछ नहीं है, उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जो बलगम है, वो जहाँ तहाँ यदि फेंक देगा तो फेंकने के बाद में शुरुआती दौर में 1-2 महीना बहुत जो है सो हम लोग

0: हमारी सारे फैमिली को प्रिकॉशन के साथ में रखना है कि वो बलगम कहाँ फेंक रहा है, ये सब सारी सावधानी करनी होगी।
1: और सर पोषण से भी क्या टीबी का कोई संबंध है?
0: सबसे बड़ा चीज़ है पोषण, दवाइयाँ और दवाई और पोषण दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। पोषण के लिए सरकार ने घोषणा कर रखी है 6,000 रुपया जो है सो प्रत्येक मरीज को मिलता है 6 महीना में, यानी कि 1,000 पर महीना जो है सो सरकार के द्वारा जो है सो सरकारी योजनाएं में मिलता है। कुछ पोषण के लिए जो है सो खाना पीने की भी सामग्री जो है सो लोग देते हैं और वह रोगी को जो है सो दिया जाता है।
1: सर अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि टीबी कई प्रकार के होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है, तो टीबी कितने प्रकार का होता है?
0: टीबी प्रायः शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, बाल और नाखून छोड़ करके कहीं भी हो सकता है। टीबी मूलतः हमारे समाज में अभी दो प्रकार का है, एक पुलमोनरी है एक एक्स्ट्रा पुलमोनरी है। जो कि एक्स्ट्रा पुलमोनरी जो है सो क्या होता है कि ग्लैंड टीबी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, यूट्रस में भी टीबी हो सकता है, और ग्लैंड टीबी हो गया, एब्डोमिनल कॉक्स हो गया, फिर बोन टीबी हो गया, बहुत सारी टीबियाँ हैं। लेकिन प्रायः 70% जो है सो हमारे फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है सो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है।
1: तो अभी आप योजना के बारे में भी बता रहे थे कि सरकार 6,000 रुपये देती है, तो इसके अलावा भी और कोई योजना है जो चलाई जा रही है टीबी मरीजों के लिए?
0: टीबी मरीजों के लिए जो है सो एक निश्चय पोषण योजना है जिसके तहत में जो है सो भोजन प्लस 6,000 रुपया देने की जो है सो सरकार की योजना है। ये काफ़ी अच्छे वर्षों से चल रहा है जो रोगी तक पहुंच भी रहा है।
1: और निक्षय पोषण के अलावा हमने निक्षय मित्र के बारे में भी सुना है।
0: जो भी रोगी किसी को दान कर सकते हैं, सबसे बड़ा दान है यह कि अब 5 रोगी 10 रोगी 1 रोगी 2 रोगी जिस जो है वह जो है सो रोगी को जो है सो दान के रूप में जो है सो आप यदि 500 रुपया कम से कम जो है सो उसे अनाज देना है और 6 महीना तक वह अनाज देना है। यह सरकार का जो है सो स्कीम है।
1: यानी कि अगर हम चाहें तो किसी टीबी मरीज की मदद कर सकते हैं अगर हमारी नज़र में कोई है जो सक्षम नहीं है।
0: हाँ, सरकार को यदि आपकी इच्छा है कि हम टीबी मरीज को जो है सो गोद लिए हैं तो उसको गोद लेने के बाद में उसे कम से कम 500 रुपया की जो है सो राशि का चावल का दाल गेहूँ सोयाबीन जो भी है या चना है इस टाइप का इस तरह का जो है सो भोजन उसे दे करके जो है सो सेवा आप टीबी मरीज का कर सकते हैं।
1: तो अगर कोई निक्षय मित्र बनता है तो क्या उन्हें किसी तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोत्साहन?
0: हाँ, वह जो है सो जिला डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल के द्वारा जो है सो से जो है सो सर्टिफिकेट दिया जाता है।
1: तो सर टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें?
0: टीबी मुक्त भारत जो है सो जो भी हमने बताया है इससे सारे जो है सो टीबी मुक्त भारत योजनाएं में है जिसको कि हम लोग के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
1: और आज सर विश्व क्षय रोग दिवस है यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि
0: संदेश विश्व यक्ष्मा दिवस के अंदर दिवस पर हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मात्र जो भी रोगी हैं कहीं भी हैं वह कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके और कुछ नहीं कहना है आपको पुर्जा जैसे आप पुर्जा कटाते हैं कटाने के बाद में वो उसके आप मात्र कह देंगे कि 2 सप्ताह से ऊपर खांसी है उसके बाद आपको एक अतिथि के रूप में जो है सो आपका सम्मान के साथ में जो है आपका जांच करा देंगे आपको दवाइयां दे देंगे आपकी सारी देखरेख जो है सरकार के जो सहकर्मी हैं जो कर्मचारी हैं वो आपकी मदद करेंगे।
1: सर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है, टीबी मुक्त भारत भी चलाया जा रहा है, तो एक और योजना है या कार्यक्रम कहें कि टीबी मुक्त पंचायत, ये क्या है?
0: टीबी मुक्त पंचायत है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि क्राइटेरिया के साथ में टीबी मुक्त पंचायत है जो कि उसका जांच दर सालाना क्या है, उसको मैंने ये पोषण योजना का क्या हालत है, उसका जो है सो MDR की क्या स्थिति है, उसका जो है कॉलम है उसको पूरा करके यदि जो है वह उसमें जांच जो है सो कम से कम 30 जांच 1,000 की आबादी पर करनी है और यदि उतना हो जाता है तो उस पंचायत को जो है सो पंचायत मुक्त माना जाएगा।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी लगा होगा। और ध्यान रखें कि अगर किसी को भी टीबी के लक्षण दिखें

0: पीने का वो करें और साथ ही पौष्टिक खाना भी खाएं, तभी कोई भी टीबी मरीज ठीक हो सकता है। और कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, तो कोशिश करें कि आप इस बीमारी से बचे रहें कुछ सावधानियों को अपनाकर। आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा।

0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा जी।
2: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं, इसके बारे में आप पहले बताइए।
4: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनके प्रमुख कीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं, जिनको कि पत्तियां एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालूनालिस है। और उसके बाद एक गौल मक्खी आती है जिसको तिलकई मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ हॉपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं, इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफ़ेद मक्खी, बिहार हेरी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
2: तो मैम, अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
4: देखिए, अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं, सामान्य बात जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है ये बहुत छोटा होता है और इनके जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के, एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के

0: रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं और इनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं, जिससे कि क्या होती है, एक गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये काफ़ी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो पत्तों पौधों की जो कोमल सतहों हैं उन सतह होती हैं उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफ़ेद मक्खी जो है वो बेमेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफ़ी सफ़ेद होते हैं और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती है। सफ़ेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है। तो पत्ती फुदका और ये सफ़ेद मक्खी, ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
1: मैम, कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुंचे हैं, उनका लक्षण क्या होता है?
0: जी, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए ये लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी, जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधों की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वाड़ बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बीज की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है, इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है, वो कम बनती है फलियां, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफ़ी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तेनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूस कर उसे बिल्कुल कमजोर बना देते हैं एवं इसमें क्या होता है, सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है। जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर ये बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
1: तो मैम, जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है, बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए, और इसके अलावा जो फसल चक्र है उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुआई भी बहुत जरूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूंगी। इसमें हम करते क्या है कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं और जो खेतों में, इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक सबसे जरूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये

0: खेतों में जरूर से जरूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं, तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफ़ेद मक्खी एवं माहों को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं। इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है। और नीम बीज खली अर्क 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे। ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% 80 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लुबेंडामाइट 480% 80 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से, एवं इसके अलावा क्लोरेन ट्रेनली प्रॉल 18.5% 80 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार भी फिर उससे अच्छी आएगी।
1: जी मैम, अगर निगरानी करेंगे तो कीटों के बारे में वो पहले पता लगा पाएंगे और जी उनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैम आपने बहुत उपयोगी बातें बताई और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वार्ता उन किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिनके खेतों में अभी तिल लगे हुए हैं, और अगर वो कीट प्रबंधन करेंगे तो जैसे कि आपने बताया बहुत आय में वृद्धि होगी उनकी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें खूब प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: तन लागे बूंदिया,
6: हाँ थोड़ा जान के बढ़े।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल

तनाछेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है।

पीएच होने के चार बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है, और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज्यादा पानी हो या फिर दो बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का यानी कि पीपीएच का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है यानी कि एनेमिक है उन्हें भी पीपीएच का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी पीपीएच होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें पीपीएच का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार

0.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोग्याम प्लस लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मीवर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियाँ को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये

0: मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है। वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर PPH की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और माता का विशेष ध्यान रखें। और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम, स्वागत है आपका।
3: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों, क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसी बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का

उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं, जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए, जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों, निमेटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करूंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में, ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा कार्यालय या फिर सह भंडार, जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है, या तो लेयरिंग से होता है, या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना, जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं। नर्सरी में यह घटक पौध और रूट स्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है, इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूट स्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में

एक रूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है, वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1.5 महीना रखिए और फिर 1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयताकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें। तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है। जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है और एक सितंबर।

0: अक्टूबर का महीना हो जाता है, तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो अगस्त जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉलीबैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है, या पॉलीबैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सके या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
1: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला

के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की जरूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के जमाने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा शायद, इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है, है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफी ज्यादा मदद करती है, काफी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत जरूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ,

हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है अगर आप पीरियड्स में

नहाइए, पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन वो भी सेफ है, पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है, पीरियड्स है, आ तो रहे हैं ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज़ है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं,
होती हैं वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप

0: सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर, और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, 3 दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की

0: का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
5: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
4: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
5: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया, जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
4: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
5: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
4: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप की पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
5: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कोमल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है।

0: पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट के प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है, ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में, लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए, और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई, तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है, और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5-SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 gram प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहे हैं, और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल, और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ

0: बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी।
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा
1: जी।
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौधे लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
1: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
1: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, Have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.

0: This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय। जय जेरापुर जय भारत।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
5: आपके सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज।

0: वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: अरे
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
3: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी।
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
5: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
5: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी
3: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश शाबाश सारार्जन, मैं खुश हुआ, मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: अच्छा, तो ये सब

0: इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: छोड़ो मुझे।
2: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
3: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
4: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
4: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
4: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
4: yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
4: तो नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
4: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
5: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और आप सभी के साथ है आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु. दोस्तों और किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम में. और आप सोच रहे हैं भाई कि आज कौन से विषय के साथ मैं हाजिर हूं, तो बता दूं मैं आपको, आज का हमारा विषय है कृषि में जैव उर्वरक का महत्व एवं उपयोग. जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं आजकल रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस वजह से हमारी ज़मीन, हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है. और अभी फ़िलहाल तो ज़रूरी है, अगर आप उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो जैव उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें. और अगर लगातार बार बार इन रासायनिक खादों का आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जो वो मिट्टी है, ज़मीन है, वो बंजर हो जाएगी और आप उस जगह पर कोई भी फसल नहीं उगा पाओगे. तो चलिए आज महत्व के बारे में जानेंगे, जैव उर्वरक के महत्व के बारे में, साथ ही इसके उपयोग के बारे में. तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. और जैसा कि किसान भाइयों, मैंने कहा कि जैव उर्वरक और इसका नाम भी लिया है मैंने, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई, हमारे श्रोतागण ये जान लें कि जैव उर्वरक क्या होता है.
1: देखिए, जैव उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, और ये एक ऐसे सम्मिश्रण होते हैं जिनके अंदर लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं. और ये लाभदायक सूक्ष्म जीव जब मिट्टी में जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं. एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि वायुमंडल में 79% या 78.6% नाइट्रोजन होता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मिट्टी में जो कि उसको वायुमंडल से मिट्टी के अंदर लेकर के आते हैं और उस अवस्था में लेकर के आते हैं जिसमें कि पौधा लेता है. तो इस तरह से हम यदि इनका प्रयोग करते हैं तो बाहर से जो रासायनिक खाद से हम नाइट्रोजन देते हैं, जैसे कि यूरिया से देते हैं या DAP से देते हैं, उसकी देने की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी. इसी तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं पौधों के लिए, तो जब बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो वो उपलब्ध हो जाते हैं उस अवस्था में जिसमें पौधा लेता है. तो ये इनका मुख्य रोल है. और साथ ही साथ जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से रोगों पौधों में रोग भी कम लगते हैं, उनमें रोग लड़ने की क्षमता ज़्यादा आ जाती है. तो ये जैव उर्वरकों का परिचय था.

0: तो जैव उर्वरक के महत्व के बारे में या फिर जैसे कि परिचय है उसके महत्व से ही हम उसके परिचय को जोड़ सकते हैं। और इसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं।
1: देखिए, जैव उर्वरक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नंबर एक पर आता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले या पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले। तो उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है

0: ऑक्सीजन करता है और पौधों को वो उपलब्ध होने लगता है। तो ये राइजोबियम का प्रयोग केवल हम दलहनी फसलों में ही कर सकते हैं, बाकी किसी और फसलों में इसको वो नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये नाइट्रोजन एक राइजोबियम हो गया दलहनी फसलों के लिए। इसी तरह से एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, इस बायोफर्टिलाइजर का नाम होता है एजोटोबैक्टर। इसका काम होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना, और इसको जो रिकमेंड करते हैं सभी फसलों में कर सकते हैं सिवाय दाल वाली फसलों के, लेकिन सबसे अच्छा जो काम करता है ये सब्जी वाली फसलों में करता है। और इससे यदि पौधों में सही से अप्लाई करा जाए तो 20 से 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर एक साल में मिल जाता है। अच्छा। और सब्जी वाली फसलों में ज़्यादा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की खासियत होती है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलर्स का सिक्रेशंस ज़्यादा करता है, जो कि सब्जी वाली फसलों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तीसरा नाइट्रोजन वाला बायोफर्टिलाइजर होता है एजोस्पाइलम। एजोस्पाइलम एक ऐसा जीवाणु है जो कि सहजीवी तरह से काम करता है, जैसे कि धान्य फसल जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, तो उनमें किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग करने से भी 20 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर फसलों को मिल जाता है। तो ये सारा मैंने बताया नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर। नंबर दो पे आता है स्फुर या फास्फोरस को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर। तो ये एक ऐसे बायोफर्टिलाइजर होते हैं या जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मिट्टी का जो 45% भाग होता है वो खनिज पदार्थ से बना होता है। ये खनिज पदार्थ बहुत सारे न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं, अभी अब उनके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन उस अवस्था में होते हैं जिसमें कि पौधे के लिए बेकार होता है। तो ये जीवाणु क्या करता है, जब मिट्टी में जाता है तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो फिक्स या स्थिर अवस्था में फास्फोरस था पड़ा हुआ या मिनरल फॉर्म में फास्फोरस था पड़ा हुआ, उसको अपनी प्रतिक्रियाओं से मृदा घोल में लेकर के आता है। और उस घोल उस अवस्था में लेकर आता है, हम जानते हैं कि आयनिक फॉर्म में लेता है प्लांट, तो आयनिक फॉर्म में लेकर के आता है, पौधा उसको प्रयोग करने लगता है। तो ये दूसरे प्रकार का मैंने जब बताया फास्फोरस के लिए। तीसरा होता है इसी तरह से पोटेशियम सोल्युबलाइजर होते हैं, जो कि पोटास को सोल्युबलाइज करते हैं मिट्टी के अंदर। तो जनरली क्या होता है कि मिट्टी के अंदर लगभग 94 से लेकर 96% तक पोटास अस्थिर होता है या अघुलनशील होता है, बेकार होता है पौधों के लिए। तो जब हम इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, स्पेशली पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का, तो वो उस अवस्था में लेकर आते हैं उससे जिसमें कि पौधा लेता है। तो हमको बाहर से रासायनिक खादों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। तीसरा टाइप के बायोफर्टिलाइजर होते हैं मोबिलाइजर। जनरली मिट्टी के अंदर ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर पाते या जा नहीं पाते। तो जब वो जा नहीं पाते हैं तो पौधे के आसपास में, पौधे की जड़ों के आसपास में जो भी पोषक तत्व होता है वो पौधा ले लेता है, लेकिन जो उसकी जड़ के दूर था वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका वो कैरेक्टर ऐसा होता है, विशेषता ऐसी होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच नहीं पाता। तो उसमें एक बायोफर्टिलाइजर होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है कि ये सहजीवी संबंध होता है पौधों की जड़ों के साथ में, एक जो कवक होता है मिट्टी में पाया जाता है उसका। तो ये क्या करता है, अपनी हाइफी या माइसेलियम का एक जाल तैयार कर लेता है, जड़ों के साथ में मिट्टी में फैल जाता है, और जहाँ जड़ों तक नहीं पहुँच पाती, ये जाल पहुँच करके और वहाँ पर उपस्थित जो अगतिशील पोषक तत्व था, जैसे कि फॉस्फोरस है या जिंक है, आयरन है, तो उनको ये पौधों की जड़ों के तक लेकर आता है और पौधों की जड़ों के अंदर भी प्रवेश करा देता है। तो ये तीन मुख्यतः जैव उर्वरक मैंने बताए जो कि फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर सबसे खासियत होती है कि इनके अंदर कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होता, सारे नहीं के सारे ही ये जैवीय हैं या बायोलॉजिकल बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं।
1: तो बायोलॉजिकल जो बायोफर्टिलाइजर हैं वो फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जो इन रासायनिक खादों से हमें बार बार कहा जाता है कि हमें अपने फसलों में इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान है इसकी वजह से। तो ये बात हमारे किसान भाइयों को समझनी चाहिए। और इसके अलावे जब विशेषता की बात आती है, तो डॉक्टर साहब आपने जब इसका परिचय दिया तभी इसकी विशेषता की बातें हमने समझ ली थी थोड़ी, लेकिन अगर विस्तार में इसके विशेषता को जानना चाहे हमारे किसान भाई तो क्या हो सकती है वो विशेषताएँ?
0: देखिए, जब हम रासायनिक खाद मिट्टी में देते हैं फसलों के लिए, तो सब लोग जानते हैं, किसान भाई सब लोग जानते हैं कि ये हानिकारक है, उससे मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जो उसका भाग खाते हैं, मान लीजिए धान, गेहूं, मक्का, कोई भी फल खाएं, सब्जी खाएं, तो वो तो खेतों से ही आती है, खेतों के अंदर हम केमिकल्स ज़्यादा देते हैं, रासायनिक खाद ज़्यादा देते हैं या पेस्ट

0: ज्यादा देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ अंश हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। आजकल बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे रोग हम लोगों में हो रहे हैं, कैंसर, सबसे ज्यादा कैंसर्स हैं, पेट में दर्द है, तो सब ये प्रॉब्लम होती हैं जो कि केमिकल्स का कहीं ना कहीं इसमें भाग भाग होता है।
1: या देखा जाता है बाजार में कि बड़े बड़े जो सब्जियां हैं वो केमिकल से इंजेक्शन वगैरह दे के उगा लिए जाते हैं, और लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, चलो इसे घर लेकर जाते हैं, तो मतलब जितने भी लोग हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बनकर तैयार हो जाएंगे खाने के रूप में। लेकिन उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं इतने बड़े सब्जियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो रासायनिक जो खाद हैं या फिर इंजेक्शंस वगैरह हैं उससे बनाए गए हैं। तो इसलिए उन सारे चीज़ों से मुझे लगता है कि जो लोग हैं आसपास के हमारे लोग हैं उन्हें भी अवॉइड उन सारे सब्जियों को करना चाहिए।
0: जो बाजार में सब्जियां आती हैं तो आजकल तो मैक्सिमम रासायनिक खादों के थ्रू ही आ रही हैं, तो रासायनिक खादों के या जो भी पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं किसान, तो उनका अंश उनके अंदर आ जाता है। तो अब ये जैव उर्वरक क्या होते हैं कि इसके अंदर कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होता, इसमें केवल उसकी जगह रसायन, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसमें कुछ नहीं होता है ऐसा, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि लाभदायक बैक्टीरिया होता है, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है और उनके रोगों से प्रतिरोधकता क्षमता भी इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। तो इसमें और ये तो हो गया एक पार्ट की हम जो फसल का आपसे फसल खाते हैं, मान लीजिए धान या गेहूँ सब्जी खाते हैं तो वो अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। दूसरा सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हो रहा है मिट्टी के साथ में हो रहा है कि जब हम रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड देते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता कम होती चली जा रही है। उसमें उर्वरता क्षमता कम कैसे हो रही है कि हम लोगों ने क्या करा, किसान भाइयों ने क्या करा कि रासायनिक खादों पे ही हम डिपेंड हो गए, उसके अंदर जैविक खाद या कंपोस्ट का हमने प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया या बहुत ही कम कर दिया। कोई किसान है 3 साल में एक बार डालता है, कोई 5 साल में डालता है, कोई कभी कभी डालता ही नहीं है, उसका मतलब ऐसे ही वो चल रहा है, खेती हो रही है रासायनिक खाद के भरोसे। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और हमने जैविक खादों का प्रयोग करना छोड़ दिया। मान लीजिए घर ही खाद का प्रयोग नहीं करते, कंपोस्ट का खाद का प्रयोग नहीं करते, गोबर की खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं, तो इससे जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा कम हो गई। कार्बन की मात्रा, कार्बन क्या होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है मिट्टी का, जो कि सभी पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता रखता है कार्बन के अंदर। तो कार्बन कम होने से और मृदा का कार्बनिक पदार्थ कम होने से मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी हो गई। सूक्ष्म जीवों की कमी होने का मतलब मृदा की हेल्थ बहुत खराब हो गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि मृदा की कार्बन कंटेंट बढ़ जाए, तो किसान भाइयों को हम रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग अपने खेत के अंदर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी हरी खाद दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि उसमें उसकी मात्रा कम हो गई है और जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो ये इसके मुख्य लाभ हैं कि जब हम जीवाणु खाद देते हैं तो जीवाणु ही बैक्टीरिया या फंगस जीवाणु जो होते हैं लाभदायक, ये मिट्टी की लाइफ होती है या उसका जीवन होता है, इसके द्वारा ही सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा ही होते हैं मिट्टी के अंदर में। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर कोई रसायन नहीं होता, दूसरा ये होता है कि मिट्टी का ना तो वायु प्रदूषण होता, ना ही मिट्टी प्रदूषण होता, और ना ही हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव दुष्परिणाम पड़ता है इसके प्रयोग करने से। और सबसे बड़ा यह है कि यदि कोई किसान सही तरह से इसका प्रयोग करता है तो उपज में 10-12% तक वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ रासायनिक खाद का प्रयोग जो किसान करते हैं उसमें कम से कम 20-25% तक कट शॉर्ट हो जाएगा या कमी हो जाएगी। मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में यूरिया नाइट्रोजन 100 किलोग्राम देता है, तो यदि वो एजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करता है तो उसमें वो 100 किलोग्राम की जगह 75 या 80 किलो ही देगा, बाकी 20-25 किलोग्राम उसका सेव हो जाएगा। तो हमारा पर्पज था कि किस तरह से हम मिट्टी के अंदर को रासायनिक खाद को जाने से रोकें, तो इस तरह से हम इसके प्रयोग से मिट्टी के अंदर रासायनिक खाद को जाने से रोक सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि और साथ ही साथ उसकी उपज भी अच्छी मिलती रहती है, ऐसा नहीं है कि उपज कम मिलती है।
1: तो ये विशेषताएं हुई जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उपज अच्छी होती है और इसमें कोई भी रसायन नहीं होता है और जिसकी वजह से हमें कोई बीमारियां भी नहीं होती, क्योंकि कई बार देखा गया है कि केमिकल्स की वजह से हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट हैं वो डैमेज होते हैं और कई बीमारियां भी होती हैं हमें। तो यहां पर इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अगर किसान भाई हैं तो आप जैव उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने खेतों में। और इसके बाद यहां पर बातें हो गई विशेषताओं की, कितने प्रकार हैं उसकी बातें हो गई हैं। तो डॉक्टर साहब, अब प्रयोग विधि के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: हाँ।

ये प्रयोग विधि बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, इसका अवयव है या पहलू है। किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग विधि जानते हैं, कैसे यूरिया देना है, कैसे DAP देना है, कैसे SSP देना है, लेकिन जैव उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका एक्चुअली प्रयोग करना भी बड़ा आसान है नहीं, बड़ा ध्यान देना होता है इसका इसका ट्रीटमेंट करते समय या उपचार करते समय। तो जैव उर्वरकों के प्रयोग करने के मुख्यतः तीन मेथड होते हैं, तीन टेक्नोलॉजी होती हैं या विधियाँ होती हैं। तो नंबर एक इसमें आता है बीज उपचार। तो बीज उपचार के लिए जो हम बायोफर्टिलाइजर की दर लेते हैं वो 20 से 30 ग्राम प्रति KG ऑफ सीड लेते हैं। और यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, यदि किसी किसान के पास में 10 किलोग्राम बीज है तो 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 से 300 ग्राम बायोफर्टिलाइजर जैव उर्वरक लेंगे और उसकी दुगनी मात्रा में हम पानी लेते हैं। तो मान लीजिए 200 ग्राम कल्चर था, बायोफर्टिलाइजर था, तो 400 मिलीलीटर पानी ले लेंगे। 400 मिलीलीटर का हम 10% गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का गुड़ होगा या जैगरी होगा। तो 400 का 10% 40 ग्राम हो गया, 40 ग्राम गुड़ लेकर के हम उसको पानी में घोल लेंगे और यदि घुलता नहीं है तो उसको हम स्टोव पे या गैस पे हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद है हमको हमारा कि गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। जब पानी में गुड़ घुल जाता है तो हम उसको ठंडा कर लेंगे, इतना ठंडा कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर, उसका तापमान रूम तापमान पर आ जाए। जब वो ठंडा हो जाता है अच्छी तरह से तो उसके अंदर जो 200 ग्राम बायोफर्टिलाइजर था उसको हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद में ये सारा का सारा काम हम छाया में करते हैं, ध्यान देते हैं कि छाया होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि धूप के नीचे हम कर रहे हैं। तो किसी पेड़ के नीचे या किसी रूम के अंदर में हम ये काम कर सकते हैं। तो अब नीचे फर्श साफ होना चाहिए, फर्श पर हम एक प्लास्टिक की शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट के ऊपर जो 10 किलोग्राम बीज था उस बीज को डाल लेते हैं और उस पर जो सॉल्यूशन आपने बनाया था 400 ml का, 400 मिलीलीटर पानी के साथ में कल्चर का, उसको हम उसके ऊपर मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं। और हाथ से हथेली से नहीं करेंगे मिक्स, उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं जिससे कि रगड़ ना खाए वो उसका सरफेस जो होता है बीज का। तो इस तरह से बीज के ऊपर उसका एक बायोफर्टिलाइजर का या जैव उर्वरक का लेप आ जाता है। फिर इसको हम उस प्लास्टिक शीट जो अपने बिछाई थी उसके ऊपर इसको हम शीट को पूरा स्प्रेड कर देते हैं, बिछा देते हैं। बिछाने के बाद में उसको लगभग 1 घंटे तक छोड़ देते हैं छाया में ही, और 1 घंटे में वो लगभग पूरी तरह से सूख जाता है। सूखने के बाद में हम उसको जिस खेत में बिजाई करनी होती, बोना होता है, उसमें जाकर के हम बो देते हैं, चाहे लाइन में बोना है या बखेरना है, आपको जैसे आपकी सुविधा के अनुसार उसको खेत में हम यूज़ कर लेंगे, बो देंगे। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ईजी है, सरल है और सबसे अफेक्टिव ये बीज उपचार होता है। नंबर दो आता है मृदा उपचार। मृदा उपचार भी बड़ा अच्छा है और आसान है, तरीका है होता है। इसके लिए हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं। जैसे कि बायोफर्टिलाइजर आपको पहले बताए जा चुके हैं, एजिटोबैक्टर PSB, एजोस्पर्म KSB आदि इत्यादि को हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हिसाब से लेते हैं। और 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेंगे या उपलब्ध है तो, नहीं तो 100 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लेते हैं। इस गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में हम उसको 5 किलोग्राम कल्चर को मिक्स कर लेते हैं और पूरी रात के लिए हम 12 घंटे लगभग छोड़ देते हैं। फिर सुबह को जिस खेत में हमको इसको यूज़ करना होता है, उपयोग करना होता है, उसमें जाकर के बखेर देंगे या ब्रॉडकास्ट कर देंगे और फिर उसके बाद में हल्की हैरो से जुताई कर देते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। ध्यान रखें कि इसका जो छिड़काव हमने करा है सुबह सुबह होना चाहिए या फिर शाम को, ऐसा ना हो कि दिन में 12-1 बज रहा है और बहुत तेज धूप है तो उस धूप में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया था, जो जीवाणु था, वो मर जाएगा और सूर्य की किरणें होती हैं उनसे। तो बखेरने के तुरंत बाद ही आपको इसको मिक्स करना होता है। तो ये मृदा उपचार हो गया। और तीसरा तरह से आता है, कुछ किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या धान लगाते हैं, तो सब्जी की खेती में तो बिछड़ा लगाते हैं या पौध लगाते हैं। तो नंबर तीसरा आता है पौध उपचार। पौध उपचार बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है उन फसलों में जिनमें कि हम पौध का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं या गोभी है, तो इन सबको हम बिचड़ा के द्वारा लगाते हैं या सीडलिंग के द्वारा लगाते हैं। तो उसके लिए जो दर होती है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उस 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बायोफर्टिलाइजर लेकर के हम डालते हैं, 100 लीटर पानी में घोल लेंगे बड़ा बर्तन लेकर के, और घोलने के बाद में एक घोल बन जाता है 100 लीटर का। इस 100 लीटर के घोल में जो आपकी पौध है उस पौध को उखाड़ेंगे या बिचड़ा को उखाड़ेंगे और मिट्टी साफ करके उसकी जड़ को कम से कम 45 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और वो पानी के अंदर सॉल्यूशन में छोड़ दिया 45 मिनट तक, और 45 मिनट के बाद में
उसको निकाल करके जिस खेत में रोपाई करनी थी वहाँ पर जा करके हम उसको रोप देते हैं। तो ये तीसरा

0: और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पेशली सब्जियों के लिए, ये मैंने बताया आपको। और होता है कि हम नहीं जानते, किसान भाई नहीं जानते किस फसल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर दें, कौन से पे प्रयोग करें, तो इस थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। दलहनी फसलों के लिए जैसे कि मैंने बताया था केवल राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और राइजोबियम के साथ में हमेशा संशोधित किया जाता है, रिकमेंड कराया जाता है PSB, फॉस्फोरस सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया। तो राइजोम के साथ में मिक्स करके हमेशा PSB को अप्लाई करना होता है। इससे क्या होगा कि राइजोम की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और पौधों की जड़ों के अंदर गांठों का विकास ज़्यादा होगा, जड़ों का विकास भी ज़्यादा होगा और गांठों का विकास ज़्यादा होगा। जब जड़ों का विकास और गांठों का विकास ज़्यादा होगा तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप इसमें राइजोम के साथ में हमेशा PSP का प्रयोग करें। प्रयोग विधि जैसे मैंने बताया था पहले वही होती है। इसी तरह से एजोटोवेक्टर या PSB होता है, तो उसमें उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, PSB का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली हों या धान्य हो या फल हों या फूल हों। तो PSB का प्रयोग मैंने बता दिया किस किस फसलों में कर सकते हैं। तीसरा आता है एजोटोवेक्टर। एजोटोवेक्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं दलहनी फसलों को छोड़कर बाकी सभी में कर सकते हैं, और इसका प्रयोग स्पेशली सब्जी वाली फसलों में करते हैं जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। तीसरा है एजोस्पाइलम, एजोटोवेक्टर और राइजोबियम तीनों ही ये नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं पौधों को, और एजोस्पाइलम का प्रयोग हम धान्य वाली फसलों में रिकमेंड करते हैं। और तीसरा चौथा होता है KSB या पोटेशियम सोलराइजिंग बैक्टीरिया, इसका प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो धान्य हो, गेहूँ हो, धान हो, ज्वार हो, या सब्जी हो, या फल फूल जो भी हो, सब में प्रयोग कर सकते हैं इसका हम। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी हो, धान्य हो, फूल हो, सब्जी हो, फल हो। तो ये सब मैंने बताया आपको किन किन फसलों में किन किन जड़ों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे करें, ये भी मैंने आपको बताया।
1: तो किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको पूरे अच्छे तरीके से विस्तार में बताया कि आप जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से दलहनी फसलों के लिए कौन कौन से जैव उर्वरक हैं उनके बारे में बताया डॉक्टर साहब ने आपको। और अंत में जाते जाते डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि आप एक ही लाइन में बता दें हमारे किसान भाइयों की कि रासायनिक खादों की अपेक्षा क्या लाभ है जैव उर्वरक का।
0: हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये कि रासायनिक खाद की अपेक्षा में जैव उर्वरक क्यों अच्छे होते हैं। इसका एक ही उत्तर है या दो उत्तर हो सकते हैं कि रासायनिक खाद हम देते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, रासायनिक खाद देने से मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है और वायु प्रदूषण हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो ये उसके हानि है रासायनिक खादों की। और जैव उर्वरक को जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे मृदा के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, जल भी उसका कहीं कहीं हद तक अच्छा रहता है, और जो हम उत्पाद खाते हैं, जहाँ जो प्रोड्यूस खाते हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, धान हो, तो वो सभी एकदम सेफ होते हैं, उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होता, क्योंकि जैव उर्वरक खुद अपने आप में कोई रसायन तो है नहीं। इसमें एक जैव उर्वरक में जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं।
1: तो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या लाभ है जैव उर्वरक का रासायनिक खादों की अपेक्षा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कृषि में जैव उर्वरक के महत्व एवं उपयोग के बारे में बताया। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना। लेकिन सुनने के बाद आप इसे अपने जो प्रयोग विधि है, जो आप खाद इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, आप इसे अपनाएं तो आपके लिए लाभकारी होगा, आपके फसलों के लिए लाभकारी होगा। और फिलहाल तो आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: attention attention attention all the ladies and gentlemen, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key for their safety and health. It is a wise request, protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health

0: फैसिलिटी सेंटर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं, और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए, तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया। और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी

0: नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना, तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है, यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर, जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना। मुगलकालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझे, मान्यताओं को समझे, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा। भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि 90.8 FM। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ, 90.8 FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। और बातें होती है यहाँ पर हरियाली से खुशहाली तक की, और आज भी हम बहुत ही अच्छी बातें करेंगे। और आज पशुपालक भाइयों के लिए खास बातें होंगी, उनके पशुओं के लिए। और गर्मी का मौसम है, आप सभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है मार्च महीने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनकी चिंता बढ़ती जाती है कि उनके पशुओं की वो देखभाल करें, गर्मी के इस कहर से उन्हें कैसे बचाया जाए, क्या कुछ उचित देखरेख उन्हें करनी चाहिए, रखरखाव करनी चाहिए। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए इसी विषय पर, यानी गर्मियों के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो आज सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय ही है, तो सबसे पहले जो गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए जो खास रखरखाव की ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को बताएं।
1: वातावरण में तापक्रम अधिक होने से

0: हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही कठिनाइयों का दौर इस गर्मी में झेलना पड़ता है, क्योंकि खास करके शहरी और अर्बन और पेरी अर्बन जो शहरी इलाका है या शहर से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर क्रॉस ब्रीड का पालन ज़्यादा किया जाता है, या संकर नस्ल की गायों का, या प्योर हॉस्टन फ्रीजियन का, या जर्सी नस्ल की गायें हैं। तो इन गायों में गर्मी में समस्या अधिक आती है
1: जी।
0: क्योंकि ये ठंडे प्रदेश की गायें हैं और हमारे यहाँ का तापक्रम अभी 40 से 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में उन इन क्रॉसब्रीड पशुओं के लिए खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ जैसे ही समर स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस के चलते पशुओं में हाँफने की समस्या, उनके बॉडी का जो शरीर का तापक्रम है वो सामान्य जो पशुओं का तापक्रम 101.6 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक है उससे बढ़ के ये 103, 104, 105 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीधा प्रभाव पशुओं पर पड़ता है वो उनकी उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, और जहाँ दूध में प्रतिदिन 5 लीटर तक की कमी हो जाती है, जो कि हमारे जो वैसे फार्मर्स जो दूध उत्पादन करके अपना व्यवसाय करके जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो सीधा उनके उत्पादकता पर असर पड़ता है
1: और
0: नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने पशुशाला के निर्माण में ही आपको ध्यान देना है कि छत की ऊंचाई बढ़ानी होगी
1: जी,
0: ताकि सीधा जो ऊपर से जो टेम्परेचर जो गर्म होता है वातावरण में टेम्परेचर की अधिकता के चलते उसका कम प्रभाव आपके पशुओं पर पड़े। हो सके तो या तो अगर आपने पशुशाला के निर्माण में जो आपने एस्बेस्टस दिया है या टीन का छत दिया है तो उसके नीचे अगर आपने खर का एक मोटा लेयर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने जो छत है उसके ऊपर भी एक लेयर खस का या पुआल का देके और उसे भिंगाने का प्रयास करें, जिससे कि अंदर का तापक्रम सामान्य तापक्रम बना रहे। दूसरी बात है कि क्रॉस ब्रीड में जितना नस्ल प्योर होता जाएगा उनको तापक्रम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने पशुशाला में पंखा लगाएं, अगर हवा का आदान प्रदान हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा पंखा या कूलर के माध्यम से वहाँ आप टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में करता है, या जो अभी तो लू उस तरह का नहीं चल रहा है लेकिन जब लू चलेगी तो उससे बचने के लिए अपने पशुशाला में जो भी उसके दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उस पर जूट का बैग टांगे या खस की चट्टी टांग के उसको भिंगा के रखें, जिसके चलते कि सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में न हो। और हो सके तो अपने पशुओं को सवेरे शाम नहलाने का प्रयास करें और प्रचुर मात्रा में पानी या स्वच्छ जल पीने को अवश्य दें, जिससे कि आपके पशुओं में गर्मी का जो सीधा जो असर है उससे आप अपने पशुओं को बचा के और अपने उत्पादकता बढ़ाए रखें
1: जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में, खासतौर पर पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए। अब बात करते हैं बीमारियों की, तो इस मौसम में खास तौर पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पशुओं में?
0: जी, जैसा कि अभी एक तो तापक्रम के बढ़ने से समर स्ट्रेस या हीट स्ट्रेस
1: जी
0: जो आम है, आप पशुओं में देखेंगे कि खास करके हीट स्ट्रोक या समर स्ट्रेस, जिसके चलते कि पशुओं में के शरीर का तापक्रम बढ़ता है और पशु हाँफते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहला चीज तो है कि दोनों टाइम अपने पशुओं को स्नान कराएं, स्वच्छ जल पीने के को दें, साथ ही साथ जो उनके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उससे बचाव के लिए इंटालाइट ओरल या जो भी नमक चीनी का प्रयोग करें, या इंटालाइट ओरल आता है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स आते हैं उसका इस्तेमाल उसके पीने के जल के साथ दें, ताकि उनके शरीर का में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस नहीं हो। दूसरा चीज है कि इस मौसम में खास करके जब हमारे पशुशाला के आसपास जल जमाव होता है तो हॉट और ह्यूमिड वेदर, हॉट ह्यूमिड वेदर जो है गर्म और नमी वाली जो वेदर है, ये खास करके जितने भी मक्खी मच्छर या चमोकन इसके प्रकोप को बढ़ाता है, और इसके चलते पशुओं में खासकर क्रॉसब्रिड पशुओं में बबेसिएसिस या रेड वाटर थलरिएसिस या आपका ट्रिपनोसोमेसिस या सर्रा, इन बीमारियों का जो ब्लड प्रोटोजोआ के चलते होते हैं इनकी काफ़ी अधिकता

0: पाई जाती है। तो खास करके अपने पशुशाला को नमी रहित बनाएं और जित हो सके तो अपने पशुशाला में कहीं भी क्रैक्स अर्थात चिकना रखें फर्श दीवार को, जहाँ की ये जो चमोकन है, ये जो लाइस माइस्टिक्स हैं जो अपने अंडा और जिसका रिप्रोडक्टिव फेज उस दीवार में पूरा होता है जहाँ छिद्र रहता है या गैप्स रहता है, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे उससे बचाएंगे तो आप अपने पशुओं को बचाने, इस चमोकन से बचाने के लिए, मक्खी मच्छर से बचाने के लिए शाम के समय धुआं का प्रयोग करें, और अगर चमोकन है तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाएं, या साथ ही साथ जो एक्टोपैरासाइट्स यूज करने के लिए हम लोग एमिट्राज का सॉल्यूशन 1-2% आप अपने पशुओं को उससे धुला धो के और अपने पशुशाला को इससे चमोकन और जो अठैल होता है या जो इस प्रकार के लाइस माइस्टिक्स हैं इससे फ्री रखें। अगर इनसे आप अपने पशुओं को बचाएंगे तो ये जो रक्त के द्वारा, रक्त परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं इनसे, और लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पशुओं में बवेसियसिस या लाल पेशाब की समस्या है या खाना कम खा रही हैं और तापक्रम बहुत ज़्यादा रह रहा है तो फिर आप चिकित्सक की सलाह लेकर इसकी चिकित्सा करवा सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, अब ये तो बातें हो गई बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन और कुछ बातें उचित ध्यान रखने के लिए इस गर्मी से बचाने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए पशुओं को?
0: हाँ, ये जो ये सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग इस समय वातावरण, पहला चीज़ है कि नस्ल के चुनाव के समय से ही और अपने पशुशाला के निर्माण के समय से ही प्रारंभिक अवस्था से इस पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग जिसके लिए भी जो हम लोग पशुपालन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो शेड का निर्माण है ऊंची जगह पर हो जहां जल जमाव ना हो इसका ध्यान रखें। पशुशाला के निर्माण के समय आप जो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स है हेड टू हेड या टेल टू टेल विधि से जो हम लोग नाद का निर्माण करते हैं या स्टैंडिंग जो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उसका, उसके अनुसार अपने पशुशाला का निर्माण करें। साथ ही साथ हम लोग जो आजकल मॉडर्न डेयरी में हम लोग या तो पानी पीने की, स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था, दो खाने के नाद के बीच एक पानी का नाद अवश्य रखें जिससे आपके पशुओं को स्वच्छ जल जितना भी ज़रूरत हो, अर्थात एक स्वस्थ पशु को जो 15 से 20 लीटर दूध करती हैं उनको प्रतिदिन 80 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जल प्रबंधन और जो NDDB के द्वारा या डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो न्यू प्रोटोकॉल्स है कि अगर आपके आपके यहाँ तापक्रम बहुत अधिक रह रहा है तो पशुशाला के निर्माण के समय ऊपर में हम लोग वाटर सप्लाई का पाइप देते हैं जिसमें झरना लगा होता है और जिसको कि हर 2-3 घंटे के अंतराल पर हम लोग 10 मिनट के लिए अगर खोल देते हैं और आपके पशुओं के शरीर पर हल्का हल्का पानी का फव्वारा आता है तो उससे पशुओं को जो स्वास्थ्य प्रबंधन है खास करके जो समर स्ट्रेस है और जो तापक्रम बढ़ता है इससे आप आसानी बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट में आपको बहुत सहायता मिलती है और आपका, आपके पशुओं में आप देखेंगे अगर इस प्रकार जल प्रबंधन और टेम्परेचर प्रबंधन दो चीज पर आप ध्यान देते हैं तो समर स्ट्रेस से आप अपने पशुओं को बचा के रखेंगे। दूसरी बात है कि उनके खाने में खासकर फाइबर का की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और अगर हरा चारा आपके पशुओं का, हालांकि गर्मी के मौसम में हरा चारे का अभाव होता है लेकिन अभी जो राउंड द ईयर ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन पर हम लोग बल जोड़ देते हैं तो इस मौसम में सुडान है और या फिर जो हाइड्रोपोनिक विधि से चारा आप उत्पादित करते हैं तो ट्रे के माध्यम से आप अपने कमरे में भी हरा चारा उत्पादित करके पशुओं को फाइबर युक्त अगर भोजन अधिक देंगे तो आपके पशुओं में स्वस्थ रहेंगे और उनमें बीमारियां कम होंगी, उत्पादकता बनी रहेगी और आप पशुपालन से खासकर गर्मी के मौसम में भी आप अपने पशुओं से परेशान नहीं होंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जानकारी युक्त बातें थीं, और गर्मी के मौसम में ऐसे आप अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपके पशु स्वस्थ होंगे, कोई भी बीमारी उससे नहीं होगी, और आप अगर आय के लिए उनका पालन कर रहे हैं तो आपकी आय में भी बिल्कुल हानि नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: खांसी। 80

0: खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता श्री मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और आज हमें बताएंगी सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन के बारे में। तो क्या महत्व है और कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, बीज बुआई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, सारी बातें आज मैडम से जानेंगे हम। मैडम स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद अनु।
3: मैडम, तो सबसे पहले सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दें।
4: किसान भाइयों, मैं आपको जैसा कि अनु बता रहे थे कि इसका क्या महत्व होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले महत्व के बारे में बताती हूँ। सब्जी की नर्सरी तैयार करना सब्जी उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पौध तैयार करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि नर्सरी में पौध तैयार करते समय उचित सावधानी व उन्नत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे तैयार होने वाली पौध व उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। टमाटर, मिर्च आदि फसलों की पौध तैयार करते समय कृषकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखने से तैयार होने वाली पौध में विषाणु जनित बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे मुख्य खेत में पौधरोपण के बाद बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद कृषकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कृषकों को पौध तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रहे कि नर्सरी के लिए ऊंचाई वाला स्थान उपयुक्त रहता है। समतल व अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि श्रेष्ठ होती है, जहां सिंचाई का साधन भी समीप हो एवं सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो। चयनित स्थान यथासंभव प्रतिकूल मौसम जैसे लू, शीतलहर एवं पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भूमि की तैयारी पौधशाला के लिए बहुत महत्व रखता है। भूमि की अच्छी तैयारी के लिए नर्सरी क्षेत्र की गहराई जुताई करें, मिट्टी को ढेले रहित एवं भुरभुरी बनावें व कंकर, पत्थर, खरपतवार आदि अलग करें। अच्छी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सरी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय ऊपरी सतह में मिलावें। पौध तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी छोटी क्यारियां उपयुक्त रहती है। सामान्यतः 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां उपयुक्त रहती है, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी बेड्स की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं हो, ताकि सिंचाई, खरपतवार हटाने एवं पौध संरक्षण आदि क्यार करने में सुविधा रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र 1/20 भाग में नर्सरी लगाई जाती है। टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर तैयार क्षेत्र में पौध लगाई जाती है, जबकि 1 हेक्टेयर प्याज, बैंगन, मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। तैयार क्यारियों में बीज की बुआई से पूर्व भूमि जनित बीमारियों व कीटों आदि से पौधों को बचाने के

ये 4 से 5 ग्राम थायराम या कप्तान व 8 से 10 किलोग्राम 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% कण प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। नर्सरी में बुआई हेतु बीज में आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एवं सही किस्म का स्वस्थ बीज होना चाहिए। अतः बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए क्षेत्र विशेष के लिए उद्यान विभाग व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई किस्मों के बीज को ही बुआई के काम में लें। साथ ही बीज कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। बीज की बुआई ठीक समय पर करें। विभिन्न सब्जियों के लिए बीज की बुआई का समय अलग अलग होता है। जैसे कि टमाटर फसल के लिए वर्षा मौसम में बुआई हेतु जून जुलाई में करना चाहिए तथा 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वसंतकालीन टमाटर हेतु बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है तथा 150 से 250 ग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन बैंगन हेतु बुआई जून से जुलाई में करें तथा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। वर्षाकालीन तथा वसंतकालीन मिर्च की बुआई का समय मई जून होता है तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगेती फूलगोभी की बुआई का समय मई जून तथा बीज की आवश्यकता 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की होगी। प्रति हेक्टेयर मध्य फूल गोभी बुआई हेतु 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी तथा बुआई का समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। पछेतु फूल गोभी के लिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रखें तथा 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी का बुआई का समय सितंबर दिसंबर है तथा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। रबी प्याज की बुआई अक्टूबर नवंबर में करें तथा इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ प्याज की बुआई जून माह में करें तथा इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की बुआई से पहले उसे उपचारित करना आवश्यक होता है। उन्नत किस्म का बीज लेकर बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कप्तान प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। तैयार नर्सरी बेड्स में बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए जिससे निराई गुराई, उर्वरक प्रयोग एवं पौध संरक्षण कार्य आसानी से किए जा सके व अच्छी स्वस्थ पौध तैयार हो। ध्यान रहे बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होवे। बहुत छोटे बीजों का उनकी मात्रा से दुगनी रेत मिलाकर बोना चाहिए ताकि क्यारियों में इनका वितरण सामान्य रूप से होए। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। इसके लिए बीज बोने के पश्चात उनके ऊपर खाद एवं रेत 1:1 अनुपात के मिश्रण की हल्की परत बिछा दी जाती है ताकि सिंचाई करते समय बीज इधर उधर नहीं फैल पाए। बीज बुआई के तुरंत बाद झारे से सिंचाई करें। सर्दियों में कम तापक्रम के समय बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए क्यारियों को हल्के घास फूस से ढक देना चाहिए, परंतु अंकुरण होते ही इसे तुरंत हटा देना अच्छा होता है। सिंचाई की बात करें तो सब्जी नर्सरियों की क्यारियों में सिंचाई सामान्य रूप से तथा धीरे धीरे फुहारे से करना चाहिए जिससे मिट्टी बहे नहीं। पौध बड़ी होने पर नर्सरी बेड्स के चारों तरफ छोड़ी हुई खाली जगह में सिंचाई के लिए पानी को नर्सरी क्षेत्र से बाहर रोककर क्यारियों में पानी धीरे धीरे जाने दें। तेज हवा बहाव के साथ सिंचाई ना करें। सिंचाई करते समय नर्सरी बेड्स के ऊपर
पानी नहीं भरना चाहिए।

0: सिंचाई के बाद मिट्टी में पपड़ी आने पर गुराई करें, इससे जड़ों में वायु संचार बढ़ता है व खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। और संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में बीजों की बुआई के 10 से 12 दिन बाद जर गलन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए कप्तान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों की जड़ों के पास झाड़े से छिड़काव करें। बीज बुआई के 18 से 20 दिन बाद रस चूसने वाले कीड़ों से पौध को बचाने के लिए डाइमेथेट 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च आदि में विषाणु रोग के से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी, रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलते हैं, अतः नर्सरी तैयार करते समय पौध को इसके प्रकोप से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा रोगों का संक्रमण होने पर बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बाद भी इन रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका प्रकोप कम करने हेतु नर्सरी में नायलॉन जाली का उपयोग प्रभावी पाया जाता है, जिससे बेड्स को बीज की बुआई उपरांत 50 मैश की नायलॉन नेट से ढक दिया जाता है। इसके लिए नर्सरी के दोनों तरफ अर्धचंद्राकार तार लगाकर उस पर 50 मैश का नायलॉन जाली से नर्सरी की बेड्स को ढक लेते हैं, या फिर नर्सरी के चारों कोनों पर खूंटे गार कर उन पर 50 मैश की जाली बिछाकर ढकने से ऐसी व्यवस्था करें कि जाली उड़े नहीं व हमेशा पौध क्षेत्र को ढकी रहे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जाली चारों तरफ से जमीन में दबी रहे, ताकि रस चूसने वाले कीट जो उपरोक्त विषाणु जनित रोग फैलाते हैं का प्रवेश ना हो सके। अब पौध का स्थानांतरण। पौध लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या फिर 4 से 6 पत्तियों की हो जावे, तब इसे मुख्य खेत में लगाएं। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि में यह अवस्था सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में आ जाती है, जबकि प्याज की पौध लगभग 8 सप्ताह में तैयार होती है। पौधे को मुख्य खेत में लगाने से पूर्व उसकी हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। इससे पौधे मजबूत हो जाते हैं व उनमें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए पौध तैयार होने के 4 से 5 दिन पहले नर्सरी में पानी बंद कर दें, लेकिन पौध उखाड़ने से 24 घंटे पहले बेड्स में अच्छी तरह पानी देवे, जिससे पौधे उखाड़ने समय जड़ों को कम से कम नुकसान हो। रोपाई से पूर्व पौध की जड़ों को फसल की सिफारिश अनुसार कीटनाशी रसायन में 15 से 20 मिनट तक डुबें। तैयार पौधे को मुख्य खेत की बनी हुई क्यारियों में फसल विशेष की सिफारिश के अनुसार निर्धारित फसलों पर कतारों में लगाएं व पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौध रोपाई का कार्य शाम के समय करना ठीक रहता है, जिससे रात की ठंडक में पौध स्थापित हो जाएं। इस प्रकार कुशल नर्सरी प्रबंधन से अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों व अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, यहाँ पर आपने आज जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का यह वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।
2: उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।

0: कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहेलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहेलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर।

0: प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है और यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी होता है कि हम इसका रखरखाव करें। जो कई जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नजर टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो खराब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले जरूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांचीटॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
1: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक, इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुँचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है, केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है, और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सिगाटोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है, उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है, और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंचीटाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है, वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है, या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है, ये जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में

0: दो तरह का उठाव होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ट, जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है। ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30 से लेकर 40% तक नुकसान पहुंचा रहा है, और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है। यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं, और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ही रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा? लक्षण इसका जैसे ही पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है, और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है, और इसमें जो ऊंस बनता है घाव बनाता है, और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं, और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग्र रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, स्यूडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में, या फल वाले अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे, तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा या मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं, या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं, तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने विपुर में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या टाइकोड्रमा आप ले सकते हैं, बायो एजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है, जो फफूंद नाशक के तौर पर काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायोजेंट में टाइकोडर्मा लेंगे, तो टाइकोडर्मा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक

रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, कार्बेडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायादार जगह में रखेंगे घोल में रखकर, फिर उसके घोल से निकालेंगे और छायादार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर टाइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूद होता है या सूत्रकृमि होता है इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खरीफ फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है, तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बविस्टीन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं। तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं, और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अगूठा रोग हो या पनामा रोग हो सब एक ही तरह के हैं। तो ये फफूद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मास्पिसिस क्यूबियंस नामक फफूद से होता है, तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूद की तरह से। तो फफूद को मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो ये भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसमें बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये 2-3 घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसका लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूद वाला रोग है जिसे हम पनामा बिल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल बिल्ट जो होता है केला में ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जो बिल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा

0: होता है खेत में, इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उकठा रोग का लक्षण दिखाई देगा, और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
1: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
0: जी, हैं। जी जी जी वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे, जो सीगा टोका है, वो सीगा टोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगा टोका। तो इसके जो लक्षण होते हैं, पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो पत्र लांछन केला का रोग होता है, जिसे हम सीगा टोका रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे, और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है, इसमें हम किसी स्टिकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएं जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगा टोका को उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया, और किसान भाइयों अब एक मैं पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है, पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे, बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता है।
1: तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया, तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उकठा रोग है? उकठा रोग से जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सीगा टोका, ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा, वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह 2-3 रोग का हो गया, एक और है श्याम बड़ रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है, तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर तने के ऊपर इस तरह से जो ऊपर भाग होता है ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है, तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम हो जाता है या खराब कर देता है, और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। अच्छा। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है कि खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पर कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्याम बड़ रोग है इससे भी केला की फसल को बचाया जा सकता है।
1: कापर ऑक्सी क्लोराइड
0: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो उसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है, लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्ष होता है, उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं पेंटालोनिया टाइग्रो नर्वोसा होता है,

0: ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत, एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवाओं के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडाक्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पे छिड़काव 2 बार कर देंगे, तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो खत्म हो जाएगा, तो जो वंची टॉप रोग है अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने, और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं, और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा, प्रिस्क्राइब किया, तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा, और सुनते रहें उन्नत कृषि। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
1: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही

0: बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
0: सेहतिया भैया ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
1: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
0: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
1: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
0: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
1: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
0: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
1: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जाँच करानी चाहिए।
0: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
1: हाँ, किसी को भी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए भले लक्षण हो या ना हो।
0: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नज़दीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
0: और भैया ये इलाज कितना लंबा चलता है?
1: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
0: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
0: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, गलत फहमियाँ ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
0: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
1: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीवी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीवी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
0: भैया कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
1: यह भी गलत है, टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, जवान, बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
0: भैया ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये

0: भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
1: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है जैसे बुखार, मलेरिया, डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
0: भैया, और जो लोग इलाज कराते भी हैं उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते हैं।
1: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है, इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
0: भैया, लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
1: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है। जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रतिमाह, पोषण सहायता भी मिलती है।
0: पर भैया, कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
0: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
1: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
0: और भैया, टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
1: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
0: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
1: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज़्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज़्यादा दवाइयाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक हैं और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
0: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
1: हाँ आरजे उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीबी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
0: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
1: हाँ उमा बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाई, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों, याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जाँच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। खांसी खो खो खांसी।

0: बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: साथियों, आपने सुना टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि

किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

नमस्कार किसान भाइयों, लॉकडाउन का समय है, विगत एक साल से हम इसे जूझ रहे हैं। ऐसे में खेती जो है कभी रुकती नहीं है, तो हमने भी जो सलाह है वो न रोकने का फैसला किया और हर सलाह हम आपको डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो समय है, समसामयिक समय है, वो है धान की बिजाई के लिए। तो खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो धान की जो बिजाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन के लिए उनको अलग अलग बीजों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या हम लगाएं, हमारी ज़मीन ऊंची है, हमारी ज़मीन नीची है। साथ ही किसी को महीन धान, किसी को मोटा धान, किसी को सुगंधित

0: धान, इस तरह से ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बिजाई के समय कौन सा किस्मों का चयन करें जिसको कि दर हमें अच्छा जाए, जिसका कि हमें आगे चल करके उसकी क्वालिटी अच्छी मिले। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम आज हैं हम डॉक्टर सत्येंद्र जी के साथ। ऋषभ, आपका स्वागत है हमारा FM ग्रीन के इस प्रोग्राम में, और साथ ही यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। साथ ही श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारा FM ग्रीन का जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस लिंक से क्लिक करके आप रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि जो जिसमें कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादातर किसान करते हैं कि जिसमें दर ज़्यादा जाए, तो ऐसे में एक आइडियल कंडीशन के लिए एक बेहतर जो वैरायटी है वो कौन सा आप सजेस्ट करते हैं?
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने सुना, अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है। खरीफ में जो हमारी फसलें हम लोग लगाते हैं, बिहार में जो फसलें लगाई जाती हैं, किसान भाई जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उनमें धान सबसे प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या के लिए धान जो है वो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक बिहार में खेती योग्य कृषि भूमि की बात है, तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल पे, लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे धान की खेती बिहार में की जाती है। और सभी जिलों में लगभग धान की खेती होती है। तो इसमें जहाँ तक किस्मों के चयन की बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। बीज को, अगर आपके पास अच्छा बीज है, तो बीज के केस में बीज के लिए कहा गया है कि बीज कृषि का आधार है। तो कृषि, अगर हमारे पास बीज अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन वहीं से शुरुआती दौर में ही हमारा, हमें डिसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम ये कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपज जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी। बाकी उसके बाद जो खेती की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उन पे वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए बहुत सारी किस्में हैं जो संस्तुत हैं, और वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए हैं। तो हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए किस बात करेंगे। अगर हम देखें तो धान के केस में उनकी पकने की अवधि को लेके और जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसके प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे हम लोग स्पेशली धान की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगात किस्में जिनको हम बोलते हैं, जो कि कम दिन में पक जाती हैं, जो लगभग 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, वो अगात किस्में होती हैं। और इनको, इन किस्मों को किसान भाइयों को चाहिए कि जो ऊपरी ज़मीन है, जो जहाँ पे पानी नहीं जमता है, पानी कम जमता है, ऐसी ज़मीन पे इन किस्मों को लगाएं। इसके साथ साथ कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं, जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है और ज़मीन उर्वर है, उस जगह पे मध्यम अवधि की किस्मों को किसान भाई लगाएं। उनमें ये किस्में लगभग 135-40 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ज़िले हमारे यहाँ हैं जो जहाँ पे पानी देर तक रहता है, तो वहाँ हम कम अवधि की किस्में वहाँ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो लंबी अवधि की किस्में हैं, ज़्यादा देर से पकने वाली, लगभग 150-155 दिन में पकने वाली किस्में हैं, वो लगाई जाती हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको देर तक पानी उपलब्ध रहता है, वैसी जगह पे वो लंबी अवधि की किस्में लगानी चाहिए। तो हम अब इनको एक एक करके इन पे बात करेंगे अलग अलग किस्मों की। तो अगात किस्मों में मैं बात करूं तो सबसे पहले एक किस्म है प्रभात। तो प्रभात जो किस्म है वो लगभग 95 से 100 दिन में

होकर तैयार हो जाती है। ये अवधि जो फसल की जो अवधि बोली जाती है वो बीज से बीज तक की होती है, यानी जब आप बिजाई करते हैं खेत में उस दिन से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं, काट के घर पकने के बाद फसल को काट रहे हैं उस टाइम तक की ये अवधि दिनों में ये गिनी जाती है। तो ये 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 30 से 35 कुंटल उपज आराम से किसानों को मिल जाती है। तो इसके अलावा आगात किस्म में ऊपरी ज़मीन के लिए दूसरी किस्म है सहभागी धान। सहभागी धान किस्म में मैं बता दूं, जो प्रभात ये किस्म मैंने बताई, इसका धान थोड़ा मोटा होता है और ये चूड़ा के काम में स्पेशली आता है। इसी तरह से जो सहभागी धान है उसका भी धान थोड़ा मोटा होता है, गहरे सुनहरे रंग का होता है और ये किस्म भी 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है और इसमें इसकी उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है सहभागी धान किस्म की कि इसमें जो सूखा सहन करने की क्षमता के लिए इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है, तो वैज्ञानिकों ने इसमें जीन्स डाले हैं जिससे कि वो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ तक सूखे की बात है धान के लिए, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में बाढ़ के लिए और उसके बाद जब पुष्पन का समय आता है, फूल आने का समय आता है, तो उस स्टेज पे सूखे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर ऐसी हमारी भूमि है जहाँ पे हमें लगता है कि शुरुआत में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें किस्मों का उस हिसाब से चयन करना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर ऐसा लगता है कि पुष्पन के समय, फूल आने के समय पे हमारा सूखा पड़ने की संभावना है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी जगह पे वैसी किस्मों का चुनाव करें जो कि सूखा सहन करने वाली हो, क्योंकि जो सूखा सहन करने वाली जो किस्में मैं बता रहा हूँ वो पुष्पन के समय ही स्पेशली उनमें ये ताकत होती है कि वो कम पानी की स्थिति में भी खड़ी रह सके। तो इसमें सहभागी धान जैसे मैंने बताया, इसके बाद एक किस्म है शुष्क सम्राट। ये किस्म भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 35 से 40 कुंटल इसकी उपज आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सबोरदीप एक किस्म है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसका दाना लंबा होता है, लंबा पतला दाना है और बहुत ही अच्छा इसका चावल बनता है। इसकी जो अवधि है ये किस्म 110-115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा राजेंद्र भगवती एक किस्म है जो मुजफ्फरपुर की तरफ के जो किसान हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी, राजेंद्र भगवती, तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं। ये भी 110-115 दिन की किस्म है और लगभग 40 कुंटल उपज इसमें आसानी से मिल जाती है। इसका दाना भी लंबा पतला होता है। इसके अलावा मध्यम कुछ किस्में हैं जो मध्यम आगात श्रेणी में आती हैं। तो मध्यम आगात श्रेणी वाली है जो 115 से लेके 125 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसी किस्में हैं। और उसमें एक किस्म बहुत ही अच्छी मैं बताऊं आपको, नई विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, सबोर हर्षित धान। तो मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सबोर हर्षित धान जो है एक बार आप ज़रूर लगाएं। ये नई किस्म है, क्योंकि किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई आप लोग जो नई किस्में हैं उनको ज़रूर, जो भी आपकी परंपरागत किस्में हैं जो आप लगाते आ रहे हैं उनके अलावा आप नई किस्मों को ज़रूर अपने यहाँ ट्राई करें। तो ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में नहीं लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में लगा के देखें, उसी भूमि की जो श्रेणी है जैसे

0: जैसी आपकी प्रकृति है भूमि की, खेत की, उस हिसाब से ही यूज करें, लेकिन नई प्रजातियों को जरूर यूज करें। तो इसी क्रम में सबोर हर्षित धान बहुत ही अच्छी एक नई प्रजाति है और ये लगभग 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है, जैसे जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है, इसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके अलावा इसी श्रेणी में, मध्यम अगात श्रेणी में एक किस्म है सबोर अर्धजल, लंबे पतले दाने की ये किस्म है। सबोर अर्धजल भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और इसका ये भी सूखा सहन करने की भी क्षमता इसमें है। इस किस्म को हम सीधी बुवाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी उपज 40-45 कुंटल आसानी से मिल जाती है, 120-125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
1: तो ये थे किसान भाइयों की जो आपने भी जो बताया कि जो 110 से के बराबर जो है दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्म है, ये डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी जानकारी दे रहे हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग से ही हैं। तो हम अगले भाग में बात करेंगे कि किसान भाइयों की हम बीजों के चयन में और क्या क्या सतर्कता अपनाएं। इस भाग के लिए हम इतना ही आज के लिए हम रख रहे हैं। अगले भाग में हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर होंगे बीजों के बारे में नई नई जानकारियों के साथ।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानते हो लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहां रहते थे उनका एक्सेस वहां खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसके एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके

घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा, आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है, तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है, और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किनके साथ हैं। ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपकी लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, यह आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें। और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें, ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही हम हमारे किसान भाई हमारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, और आप सभी जानते हैं कि इसका प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए अभी कितना ज़रूरी है। आज जो प्रदूषण जो चारों ओर फैल रहा है, उसका एक कारण फसल अवशेष को जलाना भी है। तो दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई के बाद अगली फसल जैसे कि गेहूं बुआई संभव नहीं होने के कारण किसान भाई अक्सर फसल अवशेषों में आग लगा देना ही ठीक समझते हैं, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हम बहुत सारी बात जो है आज इंजीनियर पंकज कुमार सर से जानेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाई फसल अवशेष को जलाने की बजाय और कुछ करें और हमारे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो। तो क्या कुछ करें हम जो ये सारी चीज़ें, तो आज मैं आपको बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र से आज इंजीनियर पंकज कुमार सर हमारे साथ हैं और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: तो पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी या पर्यावरण को क्या क्या हानि पहुँचता है?
6: देखिए, फसल अवशेषों को जलाने में मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु केचुआ आदि मर जाते हैं
5: जी।
6: साथ ही साथ जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम से कम है और भी जलकर नष्ट हो जाता है
5: जी।
6: फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और अगर हम नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 टन पुआल जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी आप बता दें हमारे श्रोताओं को।
6: देखिए, 1 टन पुआल जलाने से वातावरण में जो नुकसान होता है वो जैसे कि 3 किलोग्राम पार्टिकुलर मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। पुआल जलाने से मानव स्वास्थ्य को होने वाले जो नुकसान होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, आंखों में जलन, नाक में तकलीफ, गले में समस्या।
5: तो श्रोताओं, आपने जाना कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और ये सारी बीमारी जो है आजकल आम हो चुकी है, और इसका एक कारण भी है कि हमारे जो किसान भाई जो है पुआल जलाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण फैलता है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल जो है हमारे श्रोता

0: जाना चाहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक टन अगर हम पुआल नहीं जलाते हैं तो उसे अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं जलाने की बजाय, तो कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं हमारे मिट्टी को, वो भी बता दें।
1: एक टन पुआल नहीं जलाकर अगर उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो उसमें जो निम्नलिखित हम जो अभी बता रहे हैं
0: जी,
1: जैसे कि नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, पोटास 60 से 100 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 किलोग्राम हमको मिलता है।
0: तो ये कुछ पोषक तत्व जो है ना, आपको सर ने बताए कि ये सारे मात्रा में मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक सवाल और आता है कि अगर हम पुआल नहीं जलाना चाहते हैं और उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई उपयोगी कृषि यंत्र भी मौजूद है?
1: हाँ, इसके लिए उपयोगी यंत्र बहुत सारे हैं। जैसे कि आप अगर आपको पुआल को मवेशी के लिए अगर उठाना है तो स्ट्रॉ बेलर का प्रयोग करें।
0: अच्छा।
1: अगर आपको उसी में मिला देना है, जो कि हम आप पहले भी फायदा बताए हैं कि क्या क्या फायदा होता है, तो उसके लिए आप हैप्पी सीडर का प्रयोग करें
0: जी।
1: अगर स्ट्रॉ रीपर से आप उठा सकते हैं जो भूसा बना सकते हैं, रोटरी मल्चर जिसे है कि उस पुआल कंबाइन हार्वेस्टर से कटे हुए पुआल को फिर से काट करके छोटा छोटा टुकड़ा में खेत के ऊपर बिछा देना। कंबाइन हार्वेस्टर में SMS और सुपर SMS लगवाना।
0: अच्छा।
1: जैसे SMS का मतलब होता है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, और सुपर SMS में होता है कि हम वहीं जहां पर कंबाइन हार्वेस्टर का जहां पर पुआल गिरता है वहीं एक थ्रेसर लगा करके हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके खेत में बिछा देना। इससे हमारा जो हैप्पी सीडर मशीन है उस पर थोड़ा लोड कम पड़े, इसी को हम सुपर SMS करते हैं
0: जी।
1: अब स्ट्रॉ बेलर जो होता है, इसके उपयोग से खेतों में फसल अवशेष को उठाने में हेतु काम में आता है। तो हैप्पी सीडर धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करने के लिए उपयोग में आने वाला एक कृषि यंत्र है। यह पुआल या पराली को खेतों से बिना निकाले गेहूं की सीधी बुआई करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई करने से फसलों का अवशिष्ट पराली खेतों में ही रह जाती है, जिससे किसानों को फसलों के अवशिष्ट और पराली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका निपटारण के लिए किसान पराली में आग लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हैप्पी सीडर यंत्र का निर्माण किया गया है। रोटरी मल्चर से आप पहले भी हम बता चुके हैं कि आप पुआल को छोटे छोटे टुकड़े में करके आप वहां पर मल्च कर सकते हैं, और थोड़ा कंबाइन हार्वेस्टर के बाद जो आप हैप्पी सीडर चलाएंगे, हैप्पी सीडर को चलाने में जो सावधानियां होती है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि हैप्पी सीडर मशीन को चलाने से पहले आप ध्यान दें कि ट्रैक्टर डबल क्लच होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी भी मशीन को चलते हुए अगर PTO से पावर देते हैं तो आपको डबल क्लच ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सिंगल क्लच रहेगा तो जब भी आप ट्रैक्टर को रोकेंगे, ट्रैक्टर रुकते ही हमारा उस पर जो ब्लेड चल रहा है, जो हमारे ट्राइन पर ब्लेड चल रहा है, वो भी रुकता है, और बार बार रुकने से मशीन में गड़बड़ी आ सकती है। इसीलिए आप डबल क्लच का प्रयोग करें, और PTO का जो स्पीड है, जो वहाँ पर जो हमारा शाफ्ट पर स्पीड आना चाहिए, वो 540 के लगभग होना चाहिए। इसमें आपको अच्छा कैपेसिटी और इफिशेंसी मशीन का मिलेगा। तो ये और हैप्पी सीडर में जो PTO जहाँ लगाते हैं वहाँ पर एक गियर वाइल रहता है, उसका भी लेवल आपको बीच बीच में मापते रहना चाहिए कि वो मिनिमम से कम, न्यूनतम से कम ना हो, और जो उसके ऊपर जो ब्लेड है तो ब्लेड में थोड़ा सा धार होना चाहिए, और जहाँ जहाँ वायलिंग करने की का है वहाँ वायलिंग, और जहाँ पर बैरिंग है वहाँ ग्रीस गन से ग्रीसिंग समय समय पर करते रहें। जी,
0: तो जो भी बातें यहाँ पर सर ने आपको बताई हैं उन निर्देशों का अगर आप पालन करते हैं तो आप आराम से उन यंत्रों का उपयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं।

0: तो और कुछ जानकारी सर आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों, आपको एक हम संदेश देना चाहेंगे कि फसल ये जो आपको यांत्रिकरण से जो फसल अवशेष प्रबंधन का जो मशीन अभी उपलब्ध है उस पर सरकार ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है। लगभग 80-90% तक सब्सिडी उस पर दे रखा गया है ताकि किसान उसको सहूलियत से ले सके और जो खेतों में जो आप पुआल जलाते हैं उसको ना जला करके आप अपने खेतों में उसका सही प्रबंधन कर उसको उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं।
0: जी, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 MHz FM ग्रीन। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज बड़ी इब्राहिमपुर ग्राम में हूं और आज हमारे साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे प्रशांत कुमार, जो कि स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही रहना होता है इनका और ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। तो प्रशांत जी, आप हमें ये बताएंगे कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर आप पब्लिक को क्या जानकारी दे सकते हैं?
6: मनुष्य द्वारा खाए गए सभी चीज़ें पोषण के रूप में काम करती हैं, जैसे दाल, सब्जी, चावल, मांस, मछली इत्यादि सभी पोषण के रूप में कार्य आते हैं।
5: जी, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग?
6: पोषण को हम अपने जीवन में हर एक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे मसूर दाल, फल, सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि।
5: जी, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
6: अगर सही से पोषण आहार ना ले तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी, डायबिटीज इत्यादियों का संक्रमण बढ़ जाता है।
5: और भी कोई समस्या हो सकती है अगर सही से पोषण?
6: हो सकती है, रतौंधी हो सकती है, बौनापन हो सकता है, बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
5: जी, महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
6: महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, थकान, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं।
5: अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
6: बच्चे को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर उसके साथ। शारीरिक विकास में वृद्धि नहीं होगी, बच्चे बौनेपन के होंगे, खून की कमी, रतौंधी बीमारी, ये सब बहुत सारी संक्रमण और रोग प्रतिरोध की क्षमता घट जाती है सर।
5: जी, तो अगर आदमी को सही से पोषा आहार लेना है तो क्या व्यक्ति क्यारी अपनी थाली का

0: योग कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल कर सकता है।
0: तो अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं जो कि व्यक्ति या समुदाय सही से क्या कहते हैं अपना पोषण ग्रहण कर सके और वह स्वस्थ रह सके।
1: देखिए अपनी क्यारी अपनी थाली ये बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक सरकारी सामुदायिक अभियान है जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। और यह कार्यक्रम अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों पे चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी। इस योजना के तहत स्कूलों में या घर के आसपास आंगनवाड़ी के जितने भी अथी हैं वो सब इनकी जानकारियां दे रहे हैं। और इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा है बच्चों को फल, मतलब मनुष्यों को फल, सब्जियां, हरेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज ज़्यादा कोशिश करें ये सब खाने की, जिससे लोग तंदुरुस्त रह सके।
0: जी तो आज आपने देखा कि प्रशांत कुमार ने पोषण के बारे में और साथ साथ अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में भी अच्छी जानकारियां दी। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम और अपना कीमती ज्ञान को प्रदान किया। धन्यवाद।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूँ और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हैं यह जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
7: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
6: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
7: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, ऐसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं। हो सकता
6: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
7: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल वल, फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
6: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
7: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
6: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
7: वो उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है महिलाओं को, उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है।

0: हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे वो जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग जैसे एनीमिया, रतौंधी, सब ये सब जैसे ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
1: तो अगर मान लिया जाए ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
0: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा नाम मानव है।
1: जी तो मानव जी आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएँ।
0: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, तो जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
1: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
0: हाँ।
1: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
0: वो अपने बारे वो क्या करे अगर जो वो नहीं कर सको, अगर जो उनके पास अपना जमीन नहीं है तो वो दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
1: नहीं अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है। ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें।

0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं खास विषय और गर्मा मूंग की हम बात करते हैं इस समय। तो गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के वैज्ञानिक आप सभी को देंगे। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू अनु जी।
0: मूंग में कौन कौन से कीट लगते हैं, पहले तो इसकी जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
2: मूंग में जैसे हम मूंग लगाते हैं तो मूंग में मुख्यतः जो है वो फली बेदक है, सफ़ेद मक्खी है, फिर उसमें हरा फुदका कीट है, थ्रिप्स है, बहुत सारे कीट हैं, जो पॉड बग हैं जो अभी इस समय बहुत तेज़ी से जो लग रहे हैं, फिर उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी है जो मोज़ेक वायरस फैलाती है, तो इन तमाम तरह के कीट हैं, लाल बालदार सुंडी है, बालदार सुंडी है, ये सब कीट मूंग में लगते हैं
0: जी। अब कौन कौन सी बीमारियां इसमें लगती हैं?
2: बीमारियां मुख्यतः एक बीमारी है जो जड़ का सड़न बोलते हैं, जड़ सड़ जाती है और पत्तियों में भी उसके मतलब सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। फिर सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एक ब्राउन कलर का, एक जैसे सरसों के दाने की तरह उसमें वो हो जाते हैं, लीफ में स्पॉट पड़ जाता है सरसों के दाने की तरह, वो बीमारी है। एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मैल्यू है, तो ये सब बीमारियाँ उसमें गर्मा मूंग में लगती हैं
0: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी के समय में कौन कौन से कीट लग सकते हैं इसमें?
2: तो अभी के समय में जो हम देख रहे हैं कि फूल कुछ फूल लगते जा रहे हैं और उसमें पॉड भी लग गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रकोप में है, जो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, तो वो है आपका फली वेदक कीट और इसका फली वेदक कीट के बाद फली बग, जो फली वृक जिसको बोलते हैं, वो फली बग, उसमें अभी ये दो तरह के कीट बहुत तेज़ी से गर्मा मूंग में लगते हैं
0: जी। कौन कौन सी बीमारियां इस समय की बात अगर हम करें तो लग सकती?
2: इस समय की बीमारियां जो हमने बताया पहले आपको कि जो सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, पाउल्ड्री माइल्यू है, ये अभी ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा जैसे 10%, जैसे हम कोई एक एरिया लेते हैं, अगर उसमें देख रहे हैं कि दिखने लगा है कि मुझे पाउडरी पाउडरी टाइप का दिखने लगा है, तो उसमें उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है
0: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी जो गर्मा मूंग में जो कीट लगेंगे तो उनकी रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए?
2: गर्मा मूंग में कीट अभी जो मुख्यतः है वो पॉड बग और फली बोरर है, तो इनको हम मैनेज जनरली पहले से अगर हम कुछ उपचार करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो पाए हैं और अभी ज़्यादा उसमें लग रहे हैं, तो हम जो पॉड बग है, जो फली बग जिसको बोलते हैं, उसका जो सिम्टम है वो क्या करता है कि फली के अंदर, जैसे फली के अंदर जो दाना होता है, तो उसके फली से, फली के ऊपर बैठ के उसमें अपना मुखांग उसके अंदर डाल के और उसके दाने से रस चूस लेता है, तो वो फली ख़राब हो जाती है और पिचक जाती है, उसमें कोई दाना नहीं पड़ता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग उसमें क्यूनाल फॉस एक दवा है 25 EC में जो आता है, तो 2 ml प्रति लीटर में उसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप पॉड बग को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
0: और इस समय जो रोग लगते हैं उनकी रोकथाम कैसे करें?
2: इस समय जो रोग लग रहे हैं, हाँ, जो रोग मैंने बताए हैं आपको कि सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है और पाउडरी माइल्यू है और ये सब हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम, एक पाउडर आता है बाविस्टिन के नाम से आता है, तो उसको 1 ग्राम पानी में हम मिलाते हैं, 1 ग्राम पानी में मिला के, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के, और हम प्रति हेक्टेयर की वजह से उसको छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है।
0: तो यहाँ पर कीटों की बात हो गई, यहाँ पर खासतौर पर हमने गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन की बात की थी, लेकिन आपने रोगों के बारे में भी जाना, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीटों से रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने गर्मा मूंग को बचा सकते हैं, तो यहाँ तक ही ये बातें थी। अगले दिन हम आप सभी को एक और विषय लेकर आएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।

0: पकवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या AMM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और AMM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
3: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
4: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
3: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
4: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
3: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
4: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
3: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम किस फूल की बात करेंगे।
4: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
3: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
4: बिल्कुल।
3: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
4: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
3: जी।

0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
1: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
1: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
1: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
1: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
1: जी,
0: अभिमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है।
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी,
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और

0: गाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क,
3: होशियार,
1: समझदार,
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का

0: जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में

0: लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था

0: सारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो दुर्गा माता की,
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: क्या बात कही है?
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की जय। माता की जय। चलो चलो।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साम जी, साम जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ।
4: मैं जा रहा हूं।
1: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें?

तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फायदेमंद होगी। आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि, आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, मृदा विज्ञान विभाग, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं।
3: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाविना अजोली नाम का एक नील हरी शैवाल पाया जाता है। भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है।
2: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
3: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की, जो कि पाई

0: जाती हैं। उसमें है एजोला कैरोलिनियाना, एजोला फेलिकुलाइड्स, एजोला मैक्सिकाना, एजोला माइक्रोफिला, एजोला पिन्नाटा, एजोला रुब्रा। लेकिन देखिए, पहले एजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब एजोला निलोटिका सामान्यता नहीं मिलता है। तो ये जो छह प्रजातियां हैं, ये छह प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही छह प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहां के वातावरण के हिसाब से जो एजोला माइक्रोफिला है, यह सबसे बढ़िया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन एजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रुब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो एजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करता है, खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का देखा गया है।
1: पोषक मान क्या है एजोला का?
0: देखिए, अब एक चीज है कि एजोला, मैंने कहा ही कि उच्च पोषक मान वाला है, इसमें 25-35% प्रोटीन है। अब देखिए, 25-35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा, मछली, मुर्गा, इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज्यादा प्रोटीन वाला है। तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है। जहां तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4-5% तक पाया जाता है। फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है। कैल्शियम भी 67 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है। गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम। लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है। तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीज 102 मिलीग्राम पाया जाता है। सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं।
1: जी, अगर एजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
0: देखिए, ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चूंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरी शैवाल पाया जाता है, तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें, लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, तो हम देखे हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है। तो यदि एजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए, तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है। धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रिकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग ना करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में, खास करके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
1: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में एजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
0: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना एजोला में। यदि हम देखें अजोला को, तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को

0: पैदा कर सकते हैं यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहां शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8 से लेकर 15.6% तक, यानी 8 से 16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि 1 kg सुबह 1 kg शाम यदि हम खिला देते हैं, और आपका मान लीजिए गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि 300 लीटर दूध यदि उत्पादन कर रहा है तो उसके हिसाब से किसान को काफी हजारों रुपए का फायदा उसको हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ देखिए इसका आप जो उपयोग है वह आपको मुर्गी पालन में भी कर सकते हैं, बकरी पालन में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि बकरी पालन में जब आप करेंगे उसमें ज्यादा मात्रा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देने से 10% से ऊपर यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको उसको डिसेंट्री होने की संभावना होती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। मुर्गी में तो आप 25% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना आप दाना दे रहे हैं उसका 25% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है। कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, यह हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है? अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% से 5.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक मान लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम 1/4 तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। पोटास ही हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
0: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 cm से लेकर 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 cm का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे, यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए, तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जा सकता है, मिलाया जाता है,

0: जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है, एक से डेढ़ केजी जो गोबर है उसको पानी में 10-15 लीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहें हफ्ता 10 दिन के बाद। तो आप इस ढंग से करेंगे, कारण ये है जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है, और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भैया इतना ज्यादा यदि हमको अजोला वहां पर चाहिए धान के लिए, वहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए, वहां पर आपको करना यह है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10 मीटर × 2 मीटर का या 10 मीटर × 1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, और उसमें आप अजोला डाल करके और उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजोला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका 1/10 हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया रोपा हुआ, तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया, और जितना आपने फॉस्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया, और 15 से 21 दिन तक जो पानी का स्तर है 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे तो देखेंगे कि पूरा खेत अजोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए, अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा, और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए, तो वहां पर हरेक 15-20 दिन के बाद आप 1/3 पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए, और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सबौर में आइए, हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान

0: अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा, लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बिल। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है।

0: लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: नमस्कार मैडम।
4: मैम, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन, या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं, वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
6: जी, ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए, बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद, बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफी बढ़ जाती है।
4: तो मैम, FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
6: जी, इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
4: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपए किलो मिलता है, वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपए किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाए तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
6: जी, यही तो पूरा खेल है। फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
4: जी मैम, तो

0: मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
0: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
1: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की, तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
0: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
1: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
0: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
1: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगा

0: कर किसान अपनी फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा, बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें।
0: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
0: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाई मेथो 8 30 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा

को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बगानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बगानों में लीची है उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है।

आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी, या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं, या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए, और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा, और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा, और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा, और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहां पे पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए,
भले ही वो थोड़ा लंबा हो, पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी

क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा। और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को खत्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे जरूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की, यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है, यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है।
पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है।

0: सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं अधिक फलन के लिए अमरूद के बागों में छत्र प्रबंधन कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इस बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी, आप हैं SMS हॉर्टिकल्चर KVK सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू उमा। नमस्कार किसान भाइयों।
0: मैम आपसे सबसे पहला सवाल की छत्र प्रबंधन है क्या?
5: अमरूद में मुख्यतः लोग अमरूद को अभी तक हमारे किसान जो अमरूद है बागवानी फसल में घर के पिछवाड़े तक ही रखे थे, लेकिन अभी व्यवसायीकरण का समय है, अमरूद की लोग सघन बागवानी लगाते हैं। जो दूरी अनुशंसित की गई है उस दूरी से कम दूरी पर जब अमरूद को लगाया जाता है तो उसको सघन बागवानी कहते हैं। तो जब सघन बागवानी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाना, फलन के उपयोग के लायक बनाना, ज्यादा से ज्यादा कलों को क्रिएट करना। तो जब बाग आम अमरूद के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है,

0: के 2 साल तक उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, प्लांट की संरचना को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट को हम अपने पौधों को अपने अनुसार काटते छाटते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि उसका जो पेरीमीटर होता है, ऊपरी परिधि जो होती है, वो 2 मीटर का हो जाए और जो उसका केंद्र वाला भाग हो वो खुला रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो। तो जब अमरूद की सघन बागवानी लगाते हैं, कम दूरी पे लगाते हैं, और अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई तो अमरूद का बगीचा नहीं जंगल हो जाएगा, और हमेशा उसमें सूट जो होते हैं कल्ले ही आते रहेंगे, फलन कम होगा। तो इसके लिए समय समय पर उसकी कटाई छटाई अति आवश्यक।
1: मैम, हमने क्षत्रप प्रबंधन के बारे में जान तो लिया, लेकिन हमें इस काम को कब करना चाहिए?
0: अमरूद में 3 फलन होता है, मृग बहार जो अभी हमारे यहाँ अमरूद के फलों में लगा हुआ है, मृग बहार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फलन होता है, और बहुत ज़्यादा फलन होने से जब मृग एक ग्रुप में रहता है तो कभी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारा मृग एक साथ रहते हैं, मृग बहार। दूसरा जो फलन होता है वो अक्टूबर में होता है, जिसको अम्बी बहार कहा जाता है, और जब तीसरा फलन होता है इसका फरवरी मार्च में होता है, जिसे शरद बहार कहते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो अमरूद रहता है उसमें अमरूद में एक फूल लगता रहता है, हमेशा अमरूद में एक फूल दो फूल आपके पौधों के अनुसार लगा रहेगा, उसमें छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसमें धीरे धीरे धीरे फूल आने की प्रक्रिया चलते रहती है और उसमें फल आने की प्रक्रिया चलते रहती है। तो अमरूद में कटाई छटाई जो मुख्यतः किया जाता है वो मई के अंत में पहला होता है, दूसरा होता है अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक कर सकते हैं, तीसरा होता है जनवरी के अंत और फरवरी तक आप कर सकते हैं। आप कौन सा फलन लेना चाहते हैं उस पे मुख्यतः निर्भर करता है। अगर आप इसको फल तोड़ाई के बाद, हमारे यहाँ 3 फलन नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, जब इसमें नवंबर से लेकर के जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है तो उसमें पौधों का जो बढ़वार है वो धीमा हो जाता है और फलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम लोग को बिहार में कंडीशन में ये 1 फलन नहीं तो 2 ही फलन हमारे किसान ले पाते हैं। इसके लिए कटाई छटाई फरवरी वाला कटाई छटाई मुख्यतः किया जाता है, और फरवरी के बाद आप अक्टूबर में काटते छाटते हैं। अगर इसको छत्रक बनाने के लिए हमारे किसानों को करना चाहिए तो मई में करना चाहिए, और फिर अक्टूबर में करना चाहिए, और अक्टूबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में करना चाहिए।
1: और मैम, कैसे करना चाहिए कटाई छटाई?
0: कटाई छटाई का एक खास प्रक्रिया है, जैसे आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जून के महीने में, तो अक्टूबर में इसको पहला कटाई करना है। कटाई करने में पहले नीचे से 50 सेंटीमीटर एकदम तना को साफ सुथरा कर लेना है, कोई उस पर कल्ला नहीं रहेगा। दूसरा करना है कि ऊपर से 4 तना को चयनित कर लेना है जो चारों दिशा में हो, या 5 तना को चयनित कर लेना है, और 5 तना को फिर आधे भाग से काट देना है, और कटाई के उपरांत इसको सबसे पहले सारी पत्तियों को हटा देना चाहिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटा भाग है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए, कटे भाग को उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तना के नीचे की तरफ ला करके उसको लेप को लगा देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का फफूंद का आक्रमण ना हो। और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए, और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
1: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
0: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई, उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन

बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बगानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बगानों में लीची है उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा. भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है. भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है. वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं. और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है. साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है. और हमारा

0: इस भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
0: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज से ही वो काफी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता

0: होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग परनीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने बहुत सारी बातें की है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया है पर आज हम बातें करने वाले हैं टीबी के बारे में। इसके पीछे खास वजह यही है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड टीबी डे को मनाने की शुरुआत क्यों की गई और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं और टीबी कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिथिलेश कुमार झा सर, आप हैं STLS। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कब इस वर्ल्ड टीबी डे मनाने की शुरुआत हुई थी?
1: 1882 में रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक के द्वारा जो है सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई। तब से लेकर के एक हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पर 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, SWC सेंटर हुआ, सदर अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर होते हैं वहाँ पर हम लोग जो है सो अनेक प्रकार की रैली, झांकियाँ और अनेक तरह के कार्यक्रम को चला करके या लोगों को बताते हैं कि टीबी क्या है।
0: सर इस साल वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है?
1: इस बार का स्लोगन है यस वी कैन इन टीबी, लीड बाय भारत, पावर्ड बाय पीपल ऑफ भारत। यह संदेश स्पष्ट करता है कि टीबी के खिलाफ जंग केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह जन आंदोलन बनना चाहिए, जिससे कि जो भी NGO हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबकी भागीदारी है कि इस बीमारी को समाप्त किया जाए।
0: बिल्कुल सर, लेकिन जब हम बीमारी को समाप्त करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस बीमारी को समझना चाहिए कि वो बीमारी है क्या। तो सबसे पहले बताइए कि टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है?
1: टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बलगम को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने पर जो है सो आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है।
0: और अभी हमारे क्षेत्र में टीबी की वर्तमान स्थिति क्या है?
1: अभी हमारे जो क्षेत्र में है लगभग में प्रत्येक PSC में लगभग 100 जांच होती है, जिसमें कि 5 से 7 टीबी पेशेंट जो है स्पुटम पॉजिटिव जो है सो मिलता है, जिसके कि फेफड़े की टीबी होती है और कुछ अन्य है जो कि लिम्फ नोड्स हुए शरीर के। सबसे बड़ा चीज़ है कि शरीर टीबी बीमारी किसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेफड़े की जो टीबी होती है उसको बहुत अच्छे से केयर करके जो है सो हम लोग दवा चलाते हैं।
0: मतलब टीबी जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में होता है ये सही नहीं है, वो किसी भी अंग में हो सकता है।
1: नहीं, 70% जो है फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, या लिम्फ नोड्स बन के या एब्डोमिनल कॉक्स हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जेनेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
0: अच्छा, तो सर टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कई बार लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, शायद हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानना चाहिए?
1: 2 सप्ताह से ऊपर खांसी हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा है, हेमोपोटाइसिस यानी कि बलगम के साथ में खून आ रहा हो, शाम के समय में जो है सो बुखार लग रहा हो, ऐसे परिस्थितियाँ में जो है सो हमें नज़दीक के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जांच एवं दवा की सारी व्यवस्था उपलब्ध है।
0: सर अभी आपने जांच की बात की तो किसी भी व्यक्ति को जांच कब करवानी चाहिए? उसे क्या, जैसे कि आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, तो और भी कोई ऐसे लक्षण जो समझ आए? तो कई बार हमें लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम की वजह से होगा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसे हम समझ कर जाँच करवाने जाते?
1: अभी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के नीचे स्तर से लेकर के मैंने JLMCS तक में जो व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम जो है सो खांसी हो जाए, बुखार हो रहा हो, भूख नहीं लगे, तो लगभग सारे जो है सो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जरूर लिख देते हैं स्पुटम 4 APऔर एक्सरे लिखने की व्यवस्था सब जगह उपलब्ध है।
0: और जांच के बाद अगर किसी को टीबी निकल जाता है तो उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं है, तो क्या इसका इलाज है और क्या टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? और अगर टीबी पूरी तरीके

0: जैसे ठीक हो सकती है तो कितना समय लगता है इलाज में?
1: टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, मात्र दवा प्रत्येक दिन खाना है, समय पर खाना है, और यह दवा 6 महीना की इलाज है। 6 महीना तक जो है सो निरंतर कुछ काम करें या न करें, लेकिन दवाइयाँ जरूर खाएं तो बीमारी समाप्त हो सकती है।
0: सर, कई बार होता है कि हम दवाई खाना शुरू करते हैं और हमें सुधार महसूस होने लगता है, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, हम महसूस करने लगते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, और ऐसे में मरीज बीच में दवा छोड़ देता है, तो अगर ऐसा वो करता है तो इससे क्या खतरा हो सकता है?
1: जो व्यक्ति बीच में दवाइयाँ छोड़ते हैं उसको जो ऐसो MDR होने की संभावना होती है, कि जो भी हम दवाइयाँ रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड या किसी जो दवाइयाँ खिला रहे हैं वो रजिस्ट जो है सो करेगा तो वह जो है सो पेशेंट को MDR होने की संभावना होती है। इसीलिए हमें दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, हमें 6 महीना तक दवाइयाँ पूरी तरह खानी है। उसके लिए सरकार या जो भी जन भागीदारी जिनकी है वो सारे लोग लगे हुए हैं कि हमें हर रोगी के लिए सुपरविजन की व्यवस्था है, पर्यवेक्षण की व्यवस्था है, उसके घर तक की जाने की व्यवस्था है। सब लोग जाते हैं और जाने के बाद उसे जो है सो मरीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं।
0: सर, ये भी मैंने सुना है कि अगर दवाई छोड़ दे तो ड्रग रेजिस्टेंट TB हो जाता है, तो ये अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट TB हो गया तो उसके बाद क्या किया जा सकता है?
1: उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था करके किया हुआ है कि मायागंज है, JLMCH जो है, JLMCH में भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहां पर जो है सो TRUNET, CVNET की जांच की व्यवस्था है, और वहां पर जो है जांच किया जाता है। जांच करने के बाद में उसमें भी 9 महीना की जो दवाइयां हैं वो सरकार के द्वारा जो है सो उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयां हैं।
0: तो मतलब दवाएं तो मुफ्त हैं ही, कई बार लोग इसलिए भी जांच नहीं कराते कि पैसे लग जाएंगे।
1: जो भी जैसे 6 महीना की दवाइयाँ देना, उसका जांच कराना, MDR है या नहीं है, दवा रजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी दवाइयाँ सरकार में उपलब्ध हैं, सारी जांच की व्यवस्थाएं सरकार में उपलब्ध हैं।
0: सर, MDR के बारे में आप बोल रहे हैं, MDR क्या है?
1: जो भी दवाइयाँ हम लोग जो खाते हैं, जिसमें कि 4 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं, रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड, जो दवाइयाँ चलती हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर पर जो है रजिस्ट कर जाती है। रजिस्ट का मतलब होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो है हम लोग जो है सो उसे सीविनेट करवाते हैं, उसके बाद रजिस्ट है एसोनियाजाइड या रिफाम्पिसिन, यदि रजिस्ट होता है कि उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर पर कोई काम नहीं कर रही है, तब हम लोग जो है सो उसे MDR के लिए जो है सो प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: क्या लक्षण होते हैं इस बारे में जान लिया, इलाज किस तरीके से है ये जान लिया, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि हम किसी भी बीमारी से खुद को बचा कर रखें, तो TB से बचाव के लिए आम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
1: जो भी TB मरीज हैं उसका जांच सभी समय पर होना, उसके परिवार के जितने फैमिली मेंबर हैं उसका भी जांच करवा लेना है। जो भी स्पुटम इधर उधर खखार जो फेंकते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी एक जाकर के घर के कोने के किसी सिरे में फेंकना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि किसी मरीज को यदि TB हो गया है तो उसके सारे परिवार का उसका जो है सो जाँच हो जाना चाहिए। जांच के लिए जो है सो फिर वही PSC में आना है, उसको जो है सो सारी जांच करानी है।
0: जांच में TB निकल गया, मान लिया कि घर वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम बाहर बताने से डरते हैं कि लोग भेदभाव करने लग, क्या ये सही है कि TB मरीज के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, या फिर उनके साथ उठने बैठने से भी किसी को TB हो सकता है, क्या ये सही है?
1: अब यह भ्रामक बिल्कुल गलत है कि TB मरीज के साथ में हम रहेंगे तो हमें TB हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं है। मात्र है कि उस TB मरीज को हमें 6 महीना तक सब लोग मिल करके दवा खिलानी है। जितना जल्दी हम लोग दवा खिलाएंगे उतना जल्दी जो है सो रोगी ठीक होगा। और ख़ास करके ये रखना है कि जो भी TB के मरीज के घर वाले हैं उसका जाँच जो है सो सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरी चीज़ है, जो कि निःशुल्क है।
0: तो एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक TB फैल सकता है?
1: TB फैल सकता है, कम से कम जो है सो 10 आदमी को जो है सो एक मरीज से फैल सकता है।
0: तो मतलब किस तरीके से, मतलब उसका जूठा हमने खा लिया?
1: जूठा कुछ नहीं है, उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जो बलगम है, वो जहाँ तहाँ यदि फेंक देगा तो फेंकने के बाद में शुरुआती दौर में 1-2 महीना बहुत जो है सो हम लोग हमारे सारे फैमिली को प्रिकॉशन के साथ में रखना है कि वो बलगम कहाँ फेंक रहा है, ये सब सारी सावधानी करनी होगी।
0: और सर पोषण से भी क्या टीबी का कोई संबंध है?

0: सबसे बड़ा चीज़ है पोषण, दवाइयाँ और दवाई और पोषण दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। पोषण के लिए सरकार ने घोषणा कर रखी है 6,000 रुपया जो है सो प्रत्येक मरीज को मिलता है 6 महीना में, यानी कि 1,000 पर महीना जो है सो सरकार के द्वारा जो है सो सरकारी योजनाएं में मिलता है। कुछ पोषण के लिए जो है सो खाना पीने की भी सामग्री जो है सो लोग देते हैं और वह रोगी को जो है सो दिया जाता है।
1: सर अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि टीबी कई प्रकार के होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है, तो टीबी कितने प्रकार का होता है?
0: टीबी प्रायः शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, बाल और नाखून छोड़ करके कहीं भी हो सकता है। टीबी मूलतः हमारे समाज में अभी 2 प्रकार का है, एक पुलमोनरी है, एक एक्स्ट्रा पुलमोनरी है। जो कि एक्स्ट्रा पुलमोनरी जो है सो क्या होता है कि ग्लैंड टीबी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट अटैक हो गया, यूट्रस में भी टीबी हो सकता है, और ग्लैंड टीबी हो गया, एब्डोमिनल कॉक्स हो गया, फिर बोन टीबी हो गया, बहुत सारी टीबियाँ हैं। लेकिन प्रायः 70% जो है सो हमारे फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है सो ये एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी होती है।
1: तो अभी आप योजना के बारे में भी बता रहे थे कि सरकार 6,000 रुपये देती है, तो इसके अलावा भी और कोई योजना है जो चलाई जा रही है टीबी मरीजों के लिए?
0: टीबी मरीजों के लिए जो है सो एक निश्चय पोषण योजना है, जिसके तहत में जो है सो भोजन प्लस 6,000 रुपया देने की जो है सो सरकार की योजना है। ये काफ़ी अच्छे वर्षों से चल रहा है, जो रोगी तक पहुँच भी रहा है।
1: और निक्षय पोषण के अलावा हमने निक्षय मित्र के बारे में भी सुना है।
0: जो भी रोगी किसी को दान कर सकते हैं, सबसे बड़ा दान है यह कि अब 5 रोगी, 10 रोगी, 1 रोगी, 2 रोगी जिस जो है वह जो है सो रोगी को जो है सो दान के रूप में जो है सो आप यदि 500 रुपया का कम से कम जो है सो से अनाज देना है और 6 महीना तक वह अनाज देना है। यह सरकार का जो है सो स्कीम है।
1: यानी कि अगर हम चाहें तो किसी टीबी मरीज की मदद कर सकते हैं, अगर हमारी नज़र में कोई है जो सक्षम नहीं है।
0: हाँ, सरकार को यदि आपकी इच्छा है कि हम टीबी मरीज को जो है सो गोद लिए हैं, तो उसको गोद लेने के बाद में उसे कम से कम 500 रुपया की जो है सो राशि का चावल का दाल, गेहूँ, सोयाबीन जो भी है या चना है, इस टाइप का, इस तरह का जो है सो भोजन उसे दे करके जो है सो सेवा आप टीबी मरीज का कर सकते हैं।
1: तो अगर कोई निक्षय मित्र बनता है तो क्या उन्हें किसी तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोत्साहन?
0: हाँ, वह जो है सो जिला डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल के द्वारा जो है सो उसे जो है सो सर्टिफिकेट दिया जाता है।
1: तो सर टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें।
0: टीबी मुक्त भारत जो है सो जो भी हमने बताया है इससे सारे जो है सो टीबी मुक्त भारत योजनाएं में है, जिसको कि हम लोग के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
1: और आज सर विश्व क्षय रोग दिवस है, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि
0: संदेश विश्व यक्षमा दिवस के अंदर दिवस पर हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मात्र जो भी रोगी हैं कहीं भी हैं वह कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके, और कुछ नहीं कहना है आपको, पुर्जा जैसे आप पुर्जा कटाते हैं, कटाने के बाद में वो उसके आप मात्र कह देंगे कि 2 सप्ताह से ऊपर खांसी है, उसके बाद आपको एक अतिथि के रूप में जो है सो आपका सम्मान के साथ में जो है आपका जांच करा देंगे, आपको दवाइयां दे देंगे, आपकी सारी देख रेख जो है सरकार के जो सहकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपकी मदद करेंगे।
1: सर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है, टीबी मुक्त भारत भी चलाया जा रहा है, तो एक और योजना है या कार्यक्रम कहें कि टीबी मुक्त पंचायत, ये क्या है?
0: टीबी मुक्त पंचायत है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि क्राइटेरिया के साथ में टीबी मुक्त पंचायत है, जो कि उसका जांच दर सालाना क्या है, उसको मैंने ये पोषण योजना का क्या हालत है, उसका जो है सो MDR की क्या स्थिति है, उसका जो है कॉलम है उसको पूरा करके यदि जो है वह उसमें जांच जो है सो कम से कम 30 जांच 1,000 की आबादी पर करनी है, और यदि उतना हो जाता है तो उस पंचायत को जो है सो पंचायत मुक्त माना जाएगा।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी लगा होगा, और ध्यान रखें कि अगर किसी को भी टीबी के लक्षण दिखें तो तुरंत जाकर जांच कराइए, और अगर किसी को टीबी हो गया है तो ऐसे में उनसे भेदभाव नहीं करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ परहेज करना है, और ख़ास तौर से ध्यान ये

0: परेशानियों को अपनाकर। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा

0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा जी।
2: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं, इसके बारे में आप पहले बताइए।
4: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनके प्रमुख कीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं, जिनको कि पत्तियां एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालुनालिस है। और उसके बाद एक गौल मक्खी आती है जिसको तिलकई मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ हॉपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं, इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफ़ेद मक्खी, बिहार हेरी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
2: तो मैम, अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
4: देखिए, अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं, सामान्य बात जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है ये बहुत छोटा होता है और इनके जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने

0: भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं और इनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं, जिससे कि क्या होती है, एक गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये काफी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जी पत्तों पौधों की जो कोमल सतहों हैं उन सतह होती है उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफेद मक्खी जो है वो बेमेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफी सफेद होते हैं और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाती है। सफेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है। तो पत्ती फुदका और ये सफेद मक्खी ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
1: मैम, कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुंचे हैं उनका लक्षण क्या होता है?
0: जी, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए ये लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी, जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधों की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वार बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बीज की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है, इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है, वो कम बनती है फलियां, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफ़ी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तेनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूस कर उसे बिल्कुल कमजोर बना देते हैं एवं इसमें क्या होता है, सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है। जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर ये बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
1: तो मैम, जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है, बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए और इसके अलावा जो फसल चक्र हैं उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुआई भी बहुत जरूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूंगी, इसमें हम करते क्या है कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं और जो खेतों में, इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक सबसे जरूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये खेतों में जरूर से जरूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले

0: चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफेद मक्खी एवं माहों को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं। इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है। और नीम बीज खली अर्घ 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे। ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% SC 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लुबेंडामाइट 480% SC 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से, एवं इसके अलावा क्लोरेन ट्रेनली प्रॉल 18.5% SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार भी फिर उससे अच्छी आएगी।
1: जी मैम, अगर निगरानी करेंगे तो कीटों के बारे में वो पहले पता लगा पाएंगे और जी उनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैम आपने बहुत उपयोगी बातें बताई और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वार्ता उन किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिनके खेतों में अभी तिल लगे हुए हैं, और अगर वो कीट प्रबंधन करेंगे तो जैसे कि आपने बताया बहुत आय में वृद्धि होगी उनकी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें खूब प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: तन लागे बूंदिया,
6: हाँ थोड़ा जान के बढ़े।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हियरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो।

जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दे, और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना

रही, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है। और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज़्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज़्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज़्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज़्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज़्यादा पानी हो या फिर दो बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है यानी कि एनेमिक है उन्हें भी PPH का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी PPH होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें PPH का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमज़ोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को PPH हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। वहीं सबसे ज़रूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज़्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या PPH से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है, कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना जरूरी

0: जरूरी है और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज का पालन करना भी जरूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी जरूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना जरूरी है। वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर PPH की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और माता का विशेष ध्यान रखें। और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम, स्वागत है आपका।
4: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों, क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसी बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान उस स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार

किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं, जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए, जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों, निमेटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करूंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में, ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा कार्यालय या फिर सह भंडार, जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है, या तो लेयरिंग से होता है, या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं नर्सरी में, यह घटक पौध और रूटस्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है, इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूटस्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500

500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है, वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1-1.5 महीना रखिए और फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयताकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें। तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है। जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है
वो तीन समय हम बुआई कर सकते हैं, एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो

0: अगस्त जुलाई अगस्त का महीना है जब वर्षा ऋतु होती है, और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है, या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सकें या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
1: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक

नेचुरल प्रोसेस है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफी ज्यादा मदद करती है, काफी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत जरूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो
इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर

का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए।

अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ खाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं,
होती हैं वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने

0: को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगे। लेकिन अगर आपके नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है। आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर, और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए। आपको परेशानी हो रही है, मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे, देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक

0: आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनके लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
5: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
4: तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
5: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया, जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
4: सर जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
5: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
4: सर जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप की पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
5: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कोमल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो

0: के ऊपर, तो ये फल छिदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में, लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग। तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं।

0: जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, Have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger.
4: Lion.
2: Yes.
4: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
4: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.

0: This was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय।
2: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
3: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
2: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
3: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
4: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
5: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
4: जी।
5: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
4: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
5: बिल्कुल,
4: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
5: जी मंत्री जी।
4: जी महाराज।

0: अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
2: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
0: जी,
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
3: जी,
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
4: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
4: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
4: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
6: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
4: लेकिन जरा होशियारी से।
6: जो हुकुम सरकार।

0: घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी
3: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश सारल जंग, मैं खुश हुआ। मोटा इनाम दिलवाऊंगा
2: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।

0: Chalo! Hey, chalo, isko! Chalo!
1: Chalo!
0: Chalo!
1: Chalo! Chalo!
2: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
3: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
4: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
5: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
4: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
5: ये नामुमकिन है।
4: Why?
5: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
4: yeah.
5: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
4: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
5: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
4: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
5: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम कर

अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है।

पीला मोज़ेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करेंगे खरीफ मौसम की सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या एवं प्रबंधन। और इस विषय को आज लेकर हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर भूपल नामदेव अधजाड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये निमेटोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: नमस्ते सभी को। निमाटोड एक प्रकार का राउंडवर्म है जो मिट्टी, पानी और पौधों सहित वातावरण में पाया जाता है। वे छोटे और पतले हैं जो बेलनाकार शरीर के होते हैं। सूत्रकृमि इसको हिंदी में बोलते हैं और निमाटोड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो निमाटोड अविश्वसनीय रूप से विविध है और पृथ्वी पर लगभग हर परिस्थिति तंत्र में पाए जा सकते हैं। कुछ निमाटोड फायदेमंद होते हैं, जैसे कि वो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का विघटित करने में मदद करता है, जबकि अन्य हानिकारक होते हैं और फसलों, जानवरों और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। निमाटोड परजीवी हो सकते हैं, पौधों की जड़ों या जानवरों के ऊतकों पर भोजन कर सकते हैं, या मुक्त रहने वाले मिट्टी या पानी में रह सकते हैं और बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों पर भोजन कर सकते हैं। निमाटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। वे पौधों की जड़ों पर भोजन करते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है, जिसके कारण फसलों की पैदावार में कमी आती है। निमाटोड मिट्टी में पाए जाते हैं और यह कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।
0: जी, अभी ये जो सूत्रकृमि यानी कि निमाटोड, ये फसलों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: निमाटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो पौधों के उनकी जड़ों, तनों और पत्तियों खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं, जिनमें अवरुद्ध विकास, पत्तियों का पीला पड़ना, मुरझाना और कम उपज शामिल है। निमाटोड सब्जियों, फलों, अनाज और दालों सहित सभी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ फसलें जो विशेष रूप से निमाटोड क्षति के लिए अति संवेदनशील होती है, उनमें टमाटर, आलू, भिंडी, खीरे, तरबूज, केले, खट्टे फल, अंगूर, चावल, गेहूं और छोले शामिल हैं।
0: बिहार राज्य की हम बात करें तो खरीफ मौसम में कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन यहाँ किया जा सकता है?
1: जैसा कि जानते हैं कि बिहार में व्यापक जलवायु परिवर्तन मौजूद है और इस क्षेत्र में वर्षा 900 से 1700 मिलीमीटर तक होती है। यह राज्य देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है। लगभग सभी सब्जी फसलों जैसे बैंगन, बेल, मिर्च, तंबाकू, टमाटर, कद्दू, तरबूज, खीरा, ब्रोकोली, भिंडी और अन्य जड़ों फसलें राज्य में व्यापक रूप से सफलतापूर्वक उगाई जाती है।
0: जी, खरीफ सब्जियों में कौन कौन से सूत्रकृमि नुकसान करते हैं और उसके लक्षण कैसे पता करेंगे?
1: वैसे तो बहुत सारे निमाटोड से जो इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जिसमें से मोर वैल्यूएबल है जो कि सब्जियों का जड़गांठ रोग, जिसको बोलते हैं मूल ग्रंथि सूत्रकृमि। इसका साइंटिफिक नेम है मेलाडोगाइम प्रजातिया। ये जो जड़ों पर विभिन्न आकार के गांठे बन जाना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का बौना रह जाना, पौधों का मुरझाना, पौधों को आसानी से उखड़ जाना, उत्पादन में प्रतिकूल गुणात्मक व मात्रात्मक प्रभाव इत्यादि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरा निमाटोड है गुर्दाकार सूत्रकृमि रोग, जिसको बोलते हैं रेनिफॉर्म सूत्रकृमि। ये आश्रयी फसलें होती है उसकी उड़द, लोबिया, मूंग, चना, मटर, टमाटर, बैंगन, अंगूर, पपीता, अरंडी आदि। पौधों की बढ़वार रुकना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का छोटा रह जाना, पौधों का मुरझाना, जड़ों पर छोटे छोटे भूरे रंग के चकते बन जाना, उत्पादन में प्रतिकूल गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव एवं राइजोबियम जीवाणु पर प्रतिकूल असर पड़ना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और

0: तीसरा है जड़ विकसित रोग, जिसको बोलते हैं जड़ विकसित सूत्रकृमि प्रोटिलेंकस प्रजाति। पौधों का बढ़वार में कमी, पत्तियों का पीला पड़ना, जड़ों पर काले एवं भूरे रंग के चकते का बढ़ना एवं पूर्णता क्षत विकसित हो जाना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं।
1: जी, सूत्रकृमि के कारण होने वाले सामान्य लक्षण क्या हैं उनके बारे में?
0: जैसा कि निमाटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, यह दूषित मिट्टी, पानी या पौधों के माध्यम से फैलते हैं। निमाटोड मिट्टी में पाए जाते हैं और कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जिससे इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। गेहूँ, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, परवल और धान को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर, किन्नू और अंगूर जैसे अन्य फलों वाली फसलों में भी निमाटोड पाया जाता है। निमाटोड के कारण जड़गांठ रोग, पुट्टी रोग, नींबू मुरझा रोग, जड़ सड़न रोग और जड़ फफोला रोग उत्पन्न होते हैं। निमाटोड पौधों की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। निमाटोड पौधों की जड़ों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों का मिट्टी से उर्वरक, पानी या पोषक तत्वों की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। निमाटोड के कारण जड़ों में गांठ बन जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधा नष्ट हो जाता है। जब पौधों में निमाटोड का प्रकोप होता है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे मुरझा कर सूखने लगते हैं। निमाटोड के कारण प्रतिवर्ष 60-80% तक फसल उत्पादन में नुकसान होता है।
1: जी, सब्जियों में जड़गांठ रोग से कैसे बचाव करें?
0: जैसे कि जड़गांठ रोग है, अगर उसको उससे अगर हमें बचाव करना है तो सबसे पहले हमें प्रत्यारोपित सब्जियों की पौधशाला को गर्मियों में 15 से 20 दिन तक पतली पारदर्शक पॉलीथीन से बुआई पूर्व तक ढक देना चाहिए। और पौधशाला यानी जिससे हमें नर्सरी बोलते हैं, पौधशाला में कार्बोफ्यूरॉन 0.3 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुवाई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। रोगग्रस्त खेतों में नीम, करंज, महुआ आदि की खली, जिसको हम लोग केक बोलते हैं, 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाएं। गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में दो से तीन गहरी जुताई करें। रोगरोधी किस्म जैसे टमाटर की है कर्नाटक हाइब्रिड, सिलेक्शन 120, हिसार ललित, रोनीत और मिर्च के है ज्वाला, गुच्छेदार, बैगन की वैरायटी है विजय, ब्लैक ब्यूटी, कच्चा बैगन, भिंडी IC 97 73 और IC 11 72 97 की बुवाई करनी चाहिए।
1: जी, इसके बाद गुर्दाकार सूत्रकृमि के बारे में आपने बताया था, तो इस रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे किसान भाई?
0: हाँ, अगर हमें गुर्दाकार सूत्रकृमि रोगी का प्रबंधन करना है तो उसके लिए 10% की मात्रा से नीम बीज गिरी अथवा कार्बोसल्फोम 3G दवा से 3% सक्रिय तत्व के हिसाब से बीजोपचार करें। रोगग्रस्त खेतों में नीम, करंज, महुआ आदि की खली 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए और गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 गहरी जुताई करें।
1: जी,
0: रोग रोधक किस्मों का प्रयोग करें, जैसे लोबिया की है C-152, V-16 और टमाटर में है सिलेक्शन 120, मूंग की फसलें है ML-62, ML-70, ML-80 और मटर की है DDR-39, DDR-40।
1: जी, जड़ विक्षत रोग से फसल का बचाव कैसे करना चाहिए?
0: इसके लिए भी हम नीम, करंज, महुआ, सरसों आदि की खली का 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की मात्रा में प्रयोग करें। गर्मियों में 2-3 गहरी जुताई करें और कार्बोफ्यूरॉन कणों का 1-1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
1: जी, फसलों में सूत्रकृमि का अगर जैविक नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे?
0: कुछ पौधों के अर्क जैसे नीम का तेल और लहसुन में नेमाटिसाइडल गुण पाए जाते हैं, जिसका उपयोग फसलों से नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
1: जी,
0: फसलों के चारों ओर आवरण फसलें जैसे कि गेंदा और सरसों की मिट्टी में निमा

0: छोड़ आबादी को कम करने के लिए लगाया जाता है। फसल चक्र अपनाना चाहिए, यह निमाटोड के जीवन चक्र को बाधित कर देता है और उनके खाद्य स्रोत को कम करते निमाटोड आबादी को कम करने में मदद कर सकता है। निमाटोड को नियंत्रित करने के लिए कुछ बैक्टीरिया, कवक और वायरस का भी उपयोग किया जाता है। फसलों में सूत्रकृमियों को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और जुताई के एक सप्ताह बाद जमीन में फिर से जुताई कर 10 क्विंटल नीम की खली प्रति एकड़ उपयोग करने के बाद ही फसल बोनी चाहिए। नीम की खाद का उपयोग उपज में 40% तक की वृद्धि करता है, फूलों में विकास में वृद्धि करता है, फलों की संख्या में वृद्धि करता है और फलों को अधिक सुखद और चमकदार बनाता है और साथ में ही फलों का आकार बड़ा हो जाता है। 1 से 2 साल के पौधों में 1 किलो और 3 से 5 साल के पौधों में 2 से 3 किलो पौधों की जड़ों के पास एक ट्रे बनाकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दे और पानी दे। इसके अलावा घुलनशील नीम का तेल ड्रिप द्वारा भी डाला जा सकता है
1: जी। और अगर रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे फसलों में सूत्रकृमि का?
0: उसके लिए हम लोग एक बायर कंपनी का जो वेल्लम प्राइम है जिसको बोलते हैं कि फ्लूपायरम 34.48% में आता है SC, दवा का प्रयोग 40 से 425 मिली प्रति 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ ड्रेंचिंग या ड्रिप के माध्यम से उपयोग करें। इस दवा का उपयोग चिपके एजेंट के साथ करें। यह दवा जड़गांठ रोग यानी रूट नॉट निमेटोड का तेज प्रभावी और लंबी अवधि तक नियंत्रित करती।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज खरीफ मौसम की सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या एवं प्रबंधन के बारे में, और आशा करते हैं कि आज के इस वार्ता से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये जो सब्जियों में सूत्रकृमि आपको दिखते हैं, उनके लक्षण, रोग के लक्षण और साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है। करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर

पाले का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है। और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीजें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीजें करने की इच्छा नहीं हो रही है। आपके अंदर उन चीजों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं, या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं, या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे। लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है, या फिर कोई बात है ही नहीं, फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से, आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं, या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है, या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है, और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर
ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझ

पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत है। और अगर आप संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय जरूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं, तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है। तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो

0: ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहे और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। लेडीज फर्स्ट। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है सोयाबीन की। हम बात करें सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं, तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
1: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसकी खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वही पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी।

0: इस प्रकार किसान भाइयों आप फसल चक्र अपना सकते हैं और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए, सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS 335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली, 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकीली होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS 5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH 93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम, दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH 97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH 95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख्य 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरण एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की एक किस्म, 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोट तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
0: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: ये सस्क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी, भारी, उपजाऊ, अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के

लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें, तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उथली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्लोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है।
फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार एक दो हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी

0: के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदलकर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलो या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रवाहित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं मैंने विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोब्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या एसपी 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्लोरोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग के प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मैथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजीम 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 PPM 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थायमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और

0: सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको, और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने, और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको मिल गई है, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है, और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें, और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले, और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें, और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले, और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें, या फिर डाईमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लगाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए

को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश।

0: वर्मा
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का
0: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
0: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
0: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है, कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं एक कारण और भी है, अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी अजीत जी रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओ ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमेह माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
8: माँ, माँ, लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ,

0: माँ माँ माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
1: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
1: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र,
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का, तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
0: माँ,
3: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
3: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा।
1: अच्छा। रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
4: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
4: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
4: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था। इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
4: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थी।
5: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
6: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं।

0: ही उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
1: जी साहब, जी साहब।
0: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
1: चलो साथियों।
2: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की!
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: खतरे में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे,

0: का भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज बातें करने वाले हैं हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। और आप सभी को पता है किसान भाई, आप सभी चाहते हैं कि आपके संपूर्ण क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार हो। तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आप सभी के पास एक अच्छा प्रबंधन नहीं उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज इनसे हम बातें करेंगे इसी प्रबंधन के बारे में, यानी कि हमारा जो आज का जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। तो सबसे पहले तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM है क्या?
2: सबसे पहले बिहार के किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आज का जो टॉपिक है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। तो जो पोषक तत्व तो हम दो या दो से अधिक सोर्स से देते हैं, तो वहाँ पर हम उसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं। जैसे हम पोषक तत्व तो जो है उसकी पूर्ति के लिए, फसल में पूर्ति के लिए हम नीम के खली का प्रयोग करते हैं, भूरी खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, केक्स का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो हम किसी दो सोर्स, जो हमारी सोर्स हैं, जो

0: उसके दो से अधिक को हम जब एक साथ मिला करके प्रयोग करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है और जो उसकी जो उपयोग क्षमता है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो मृदा का जो भौतिक रासायनिक और बायोलॉजिकल अवस्था है वो बेटर होता है। अल्टीमेटली जो क्या होता है, जो मृदा स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो दो से अधिक सोर्स को हम एक साथ जब मिला करके देते हैं तो उसको हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जब दो पोषक तत्वों को मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है,
0: सोर्स जो है,
1: हाँ, सोर्स उन्हें मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जिससे कि फसलों को और भी ज्यादा पोषण मिलता है। तो सर अब ये बात हो गई कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, और इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपसे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्यों किया जाए।
0: जैसा कि आज की जो हमारी मृदा स्वास्थ्य है वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। अगर हम बात करें 1950 की, तो हमारे जो स्वास्थ्य मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी वो 1.2% थी, लेकिन करंट में क्या है जो है ये मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो घट करके 0.3% या उससे कम रह गई है। इसका वजह क्या है कि हम दिन पर दिन उच्च उत्पादन वाली फसलों को लेते गए, लेकिन हम उसमें जो खाद का प्रयोग है उसको कम करते गए, अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करते गए। तो ये जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक स्रोत वाले खाद हैं, जैसे हमारा हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरित शैवाल है, अजोला है, फसल अवशेष है, केक्स है, जो खलियां हैं, इनका भी प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो मृदा की जो सस्टेनेबिलिटी है, मृदा की जो लंबी अवधि तक उत्पादन करने की क्षमता है वो बनी रहे और मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
1: सर आपने यहाँ पर अभी हरी खाद के बारे में कहा, तो हम जानना चाहेंगे कि हरी खाद किस तरीके से किसानों की मदद कर सकता है इस प्रबंधन में, या फिर इसका जो महत्व है वो किस तरीके से यहाँ किसानों को।
0: जी हाँ, जो हरी खाद है, हरी खाद देखा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रदान करने का एक सोर्स है, और हरी खाद के द्वारा हम सबसे कम खर्च में एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हरी खाद में हमें जो हरी खाद की फसलें हैं, जैसे आपका ढैंचा है, सनई है, मूंग है, और भी जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के लिए हमें करना क्या होता है कि फसल की बुआई से 2 महीना पहले, जो हमारा मुख्य फसल है धान की, हम बुआई करने जा रहे हैं या रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 महीना पहले हमें हरी खाद को जो है खेत में बुआई करना होता है। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं ढैंचा की, क्योंकि ढैंचा जो है एक बहुत ऐसी फसल है जो दलहनी होते हुए जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो जलमग्न कंडीशन है, फ्लडिंग कंडीशन है, वहाँ पर भी ढैंचा आसानी से हरी खाद के रूप में हो जाता है। और जो है जो इसको हम करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, और सिंपल जो है जुताई करके बरसात का जो फर्स्ट बार पानी मिलता है या हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, तो हम 15 मई के आसपास ही हम जो है इसकी खेतों में बुआई करते हैं। या हमारा जो गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई समाप्त हो जाए, खेत हमारा खाली होता है, तुरंत हम हल्का सिंचाई करके, या अगर बरसात हो जाती है किसी कारणवश, तो हम तुरंत उसी नमी पर ढैंचा की बुआई करते हैं। और हमें ध्यान देना होता है कि जब ढैंचा में जो है फूल आने की स्थिति होती है, या 50 से 55 दिन का जब हो जाता है, एक अच्छी बढ़वार हो जाती है 5 से 6 फीट की, उसी समय हम मिट्टी पलटने वाले हल से, चाहे वो ट्रैक्टर ड्रॉन हो या बुलक ड्रॉन हो, मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसको जमीन में मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे जो है 15 से 20 दिनों में ये ढांचा जो है जमीन में धीरे धीरे गल सड़ जाता है, और अच्छी तरह सड़ने के बाद, अर्थात पलटने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही हमें धान की रोपाई करनी होती है। क्योंकि अगर हम ढैंचा को जमीन में अच्छे से मिला देते हैं और तुरंत अगर धान की बुआई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ढैंचा हम पलट दिए होते हैं तो वो जमीन से जो है थोड़ा सा 15 दिन तक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए वो जमीन से नाइट्रोजन लेता है, तो फसल का बढ़वार रुक जाता है और कभी कभी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम इसको लगभग जब ढैंचा हमारा 45 से 50 दिन का होता है, उस समय हम इसको जमीन में मिला देते हैं, और जमीन में मिलाने के बाद इसके 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से उसमें वो सड़ गल जाए, और जमीन में मिलाने के कम से कम 15 से 18 दिन बाद ही, या यूं कहिए 15 से 20 दिन बाद ही हमको मुख्य फसल धान की रोपाई करनी होती है। और देखा जाए तो जो ढैंचा है, ढैंचा 2 प्रकार का है, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सिस्मिनिया रोस्टाटा और सिस्मिनिया एक्विलेटा। जो सिस्मिनिया रोस्टाटा है, ढैंचा है, ये जो है न्यूडूल, जो इसकी जड़ें होती हैं, इस जड़ों में आप देखेंगे गुलाबी रंग का गांठ बनता है, और उस गुलाबी रंग के गांठ में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है आवास करता है, और वही राइजोबियम जो है गांठों में रहते हुए जब राइजोबियम मरता है तो जमीन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में देता चला जाता है। जो वातावरण में हमारे

0: 70% नाइट्रोजन है उसको जमीन में ला देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जनरली जो है ढांचा बोने के लगभग 25 से 28 दिन बाद उसकी जड़ों में ये रजुबियों वाले पिंक कलर की जो है गुलाबी रंग की गांठें बनना शुरू होती हैं। तो 28 दिन के बाद ही वो गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 से कम 50 दिन तक वो गांठें बनती जाती हैं, संख्या उनका बढ़ता जाता है, और इस तरह से लगभग लगभग 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है फिक्स कर लेता है। जबकि हमको धान में जनरली 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात अगर सुगंधित धान है तो केवल हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं, और अगर हमारा हाइब्रिड धान है तो 120 किलोग्राम देते हैं। तो देखा जाए तो सुगंधित धान की उत्पादन हम केवल ढांचा की ग्रीन मैन्योरिंग करके, हरी खाद के प्रयोग करके ही हम सुगंधित धान का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको हाइब्रिड धान लेना है या हाई यील्डिंग धान लगाना है तो हमें लगभग लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है अलग प्रकार के सोर्स से देना होता है, जो उसको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे मजे की बड़ी मजे की बात यह है कि जब हम ढांचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो 80 किलोग्राम तक तो नाइट्रोजन देता ही है, लेकिन साथ में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, पोटास तथा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे है जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इन सभी को भी वो जमीन में दे देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जमीन में जो हमारे फसल उत्पादन के लिए माइक्रो और माइक्रो पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं लगभग, उनका एक वेल बैलेंस कॉम्बिनेशन में ये पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जो है हमारे जो मिट्टी की जो भौतिक अवस्था है वो तो सुधर ही रही है, केमिकल अवस्था जो है, रासायनिक अवस्था सुधर रही है, साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल जो हमारे मृदा में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो 2-3 साल अगर हम ढांचे का प्रयोग खेत में करते हैं तो जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुधर जाता है, और हम जो है अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्पादनता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो सर ने अभी बताया हमें कि हरी खाद का इस्तेमाल, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन एक बात सर मैं आपको बताऊं कि अगर जो किसान है, आपसे पूछना भी चाहूंगी और हमारे किसान भी आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद क्या इस महंगाई के इस दौर में क्या हरी खाद उनके लिए अच्छा सोर्स माना जाएगा अगर महंगाई के नजरिए से देखा जाए तो?
0: ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज देखिए जो हमारा भारत सरकार है वो जनरली 75% सब्सिडी पर आप किसान भाइयों को फर्टिलाइजर देती है, अर्थात जितना हमारे देश में 20 से 22 मिलियन टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उस सभी फर्टिलाइजर पर 75% तक सब्सिडी देती है। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट पर ओवरऑल कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है। पहले हम जो आज से 1950 से पहले खेती करते थे, हर साल जो है किसान भाई लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे खेतों में, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन 4 गुना से 5 गुना बढ़ चुकी है तो हरी खाद के लिए अब किसान भाइयों के पास समय नहीं मिल पाता है, वो लगातार इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं जिससे वो धीरे धीरे हरी खाद को भूल गए हैं, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सॉइल मृदा का जो स्वास्थ्य है वो इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इतना खराब हो चुका है कि आज हरी खाद की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो लगभग लगभग जो फसल उत्पादन में 3/4 फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है वो हरी खाद से पूरी होती है। और हरी खाद से हम बताएं सबसे सस्ता जो है स्रोत है, हरी खाद जो है पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे सस्ता स्रोत है। आपको करना क्या, आप देखिए एक हेक्टेयर के लिए आपको करीब 30 से 35 किलोग्राम ढांचा लगाना पड़ता है। अब ढांचा लगाने के बाद उसको 50 दिन पर सीधे जमीन में इनकॉर्पोरेट करना है, तो अब 50 किलो ढांचे का कीमत जो है आपका 1500 रुपया से ऊपर नहीं हो पाता है, अर्थात देखा जाए तो केवल एक बोरी DAP के बराबर हमारा खर्च हो रहा है और उससे हमको करीब 10 बोरी DAP के बराबर का लाभ मिल रहा है, तो हम क्यों ना उस लाभ को लेना चाहें। हमें सच कहिए तो जो हमारा ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री से फर्टिलाइजर मिलता है उसके प्रयोग को हम जीरो कर सकते हैं। अच्छा। अगर लगातार हम ढांचे का प्रयोग करें, क्रॉप रेसिड्यू का प्रयोग करें, जो फसल अवशेष है उसका प्रयोग करें, भूरी खाद का प्रयोग करें, अजोला का प्रयोग करें, नील हरित शैवाल का प्रयोग करें, और जो हमारी केक्स हैं जो उसको हम केक्स विभिन्न प्रकार के हैं इन सब का प्रयोग करें, मतलब जो पोषक तत्व के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्रोत हैं, इन सभी का एक साथ समन्वित प्रयोग करें तो हो सकता है हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उसके प्रयोग को हमें जरूरत ही न पड़े, तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है एक स्वस्थ फसल के उत्पादन की कामना कर सकते हैं, और आज उसी की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखिए कि सब जगह जो है जो हमारा प्रोड्यूस मिल रहा है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर द्वारा प्रोड्यूस है, जिससे हमको विभिन्न प्रकार के बीमारियां और रोगों का सामना करना पड़ रहा है। आज पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा वो लोग उपयोग करते हैं,

0: जिससे वहां देखिए जो ग्राउंड वाटर, आपको बता दें कि जितना हम नाइट्रोजन डालते हैं उसका केवल 30 से 35% भाग ही पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी 60 से 65% भाग जो है विभिन्न प्रकार से नष्ट हो जाता है। 15 से 17% जो है ऊर्ध्वाकरण द्वारा वो ऊपर उड़ करके नष्ट हो जाता है, 25 से 30% लीचिंग ग्लासेस द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, भूमिगत जल में चला जाता है और उसी भूमिगत जल को हम पीते हैं। तो आजकल पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जल है वहाँ पर नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो वहाँ आप देखेंगे कि बच्चों में जो है नीला पीला होना, उनका कलर जो है नीला होता है जब जन्म लेते हैं, बहुत से बच्चे नीले कलर के जन्म लिए होते हैं, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और ये जो है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो आज की तो सख्त जरूरत है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और अपने बजट को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार हरी खाद का उपयोगिता ओवरऑल देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम कम खर्च में कम बजट में हरी खाद को अच्छे से अपना करके अपने मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तथा पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रति हेक्टेयर 8 से 10 हजार रुपया खर्च होता है फर्टिलाइजर में, उसमें हम तीन चौथाई भाग तक कटौती कर सकते हैं, अर्थात करीब 8 से 10 हजार रुपया हम बचा सकते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के द्वारा जो हम राइस में देते हैं, धान में देते हैं। अगर हम हरी खाद देते हैं तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपया हम अलग से बचा लेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ने अभी हम बताया कि जो हरी खाद है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है हमारे किसान भाइयों के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि 50 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 1500 रुपये लगभग खर्च होते हैं, और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के जो हानिकारक जो तरीके हैं क्रियाओं के बारे में सर ने बताया, और बच्चों में जैसे कि बीमारियाँ फैल रही है और युवाओं में और जो बुज़ुर्ग लोग हैं सभी में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। और अब हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जब किया जाए तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सर, तो ऐसे कुछ बातों के बारे में बताएंगे आप जिसका ध्यान खास तौर पर हमारे किसान भाई और बहन रखें।
0: देखिए, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हम किस फसल के लिए समेकित पोषक तत्व देने जा रहे हैं। जैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जो है धान में करना है, तो धान के लिए जो हमारा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, अगर हम हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी लगाते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसको हम बेस मान लेते हैं, उसको हम विभिन्न प्रकार के स्रोत हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमको सबसे चीपेस्ट सोर्स हरी खाद है, तो अब हम हरी खाद देते हैं तो जनरली अगर एक अच्छी फसल है हरी खाद की तो 80 किलोग्राम तक जो है ढैंचा या सनई के द्वारा हम अगर हरी खाद दे रहे हैं तो 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ढैंचा में एक प्रजाति और है जैसे सिस्बनिया रोस्टाटा कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें जड़ में भी गांठ बनती है और तना में भी गांठ बनता है, दोनों में राइजोबियम रहता है। तो सिस्बनिया रोस्टाटा जो ढैंचे की प्रजाति है इससे करीब 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स रहता है। तो आप देखिए, अगर हम सिस्बनिया रोस्टाटा को ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारा 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। उसी रेशियो में 0.2% उसमें फास्फोरस भी होता है और 0.4% तक जो है पोटास भी होता है। तो देखा जाए तो धान के लिए जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास चाहिए सिस्बनिया रोस्टाटा के केवल ग्रीन मैन्योरिंग से ही अकेले जो है ढैंचा की सिस्बनिया रोस्टाटा की जो ढैंचा वाली प्रजाति है केवल इससे हमारा अकेले जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, हमें अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिस्बनिया एक्विलेटा प्रयोग करते हैं जो केवल जड़ों में गांठें बनती हैं तो केवल उससे 80 किलोग्राम तक मिलता है नाइट्रोजन, तो बाकी हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है 40 किलोग्राम वो अलग से देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ध्यान ही देना होगा मुख्य रूप से कि हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट डाल रहे हैं। जैसे हरी खाद डाल रहे हैं तो हरी खाद से हमारा कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या सूक्ष्म पोषक तत्व ये सब जमीन को मिल रहा है। फिर उसके बाद फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके आधार पर हम दूसरी खाद चाहे फसल अवशेष है चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसके माध्यम से बाकी फुलफिल करेंगे। वैसे अमूमन देखा जाए तो जो हमारा अब तक का रिकमेंडेशन है, जनरली अगर हमारे पास हरी खाद या ऑर्गेनिक खादों की कमी है तो हम क्या करते हैं, 75% भाग जो है हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं और 25% भाग जो है पोषक तत्व का वो है वो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक स्रोत हैं जो कार्बनिक स्रोत हैं फर्टिलाइजर के खाद के उससे देते हैं, चाहे हरी खाद के रूप में दे दें या भूरी खाद के रूप में दे दें, चाहे नीले सरवाल से दे दें या अजोला से दे देते हैं या फसलों से दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हरी खाद और ये सब विभिन्न प्रकार के जो

0: कार्बनिक खाद है, इनकी उपलब्धता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो है अधिक से अधिक मात्रा इनसे दिया जाए, बचा हुआ मात्रा जो है वो फर्टिलाइजर के माध्यम से दिया जाए, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उससे दिया जाए।
1: तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि अगर आप नाइट्रोजन, पोटास या जो भी सूक्ष्म जीव पोषक तत्व हैं, आप अपने मिट्टी को या खेत में जो मृदा है आपकी, आप उसमें डाल रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी कितने परसेंट में या फिर कितने प्रतिशत वो उसे कंज्यूम कर रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर हरी खाद है तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया आपको। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, और आपको बता दूँ किसान भाइयों की हाल ही में एक अनुसंधान में पाया गया है कि समेकित पोषक तत्व जैसे कि गोबर की खाद या हरी खाद या फसल अवशेषों के भूसे द्वारा कुल पोषक तत्वों के 50 से 75% में फसल प्रणाली की उपज में वृद्धि हुई है, और इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए आप इस पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन INM का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अपना सकते हैं। आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपने हरी खाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद के अलावे क्या कुछ ऐसे कार्बनिक खाद हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
0: जी हाँ, जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया, हरी खाद जो है एक सबसे सस्ता स्रोत है, सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट है आजकल बहुत आसानी से मिल जा रहा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास विभिन्न फसलों के अवशेष हैं उनको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, और जो हमारे पास खलियां हैं जैसे कि पहले हम लोग के पास नीम की खली हुआ करती थी, महुआ की खली हुआ करती थी, मूंगफली की खली हुआ करती थी, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया गोबर की सड़ी हुई खाद, चूंकि हम बात कर रहे हैं गोबर की सड़ी हुई खाद की, किसान भाई लोग अक्सर क्या करते हैं गोबर की कच्ची खाद डाल देते हैं खेत में, तो उसे क्या होता है कच्ची खाद में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे दीमक और कटवर्म का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कृपया आप लोग से अनुरोध होगा हमारा कि आप गोबर की खाद जो भी है 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल जो भी आपके पास उपलब्ध है, वैसे तो अमूमन जो है कम से कम 10 से 15 टन डालना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना उपलब्ध नहीं है, आप 10 क्विंटल भी अगर खेत में डालते हैं तो बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। उसका कलर जब भूरे रंग का हो जाए सड़े हुए गोबर का, उसको पका दे गड्ढे में, जो है अच्छे से डिकम्पोज करिए, अच्छे से सड़ाइए, और सड़े हुए गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। देखा गया है कि गोबर के खाद में लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटास होता है। तो आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हम इतना क्विंटल अगर दे रहे हैं तो कितना केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमारी ज़मीन को मिल रहा है, बाकी मात्रा आप जो है बर्मी कंपोस्ट से भी दे सकते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट भी क्या है, जनरली जो हमारा कछुआ है अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम अधसड़े गोबर पर रिएक्ट करा करके उसे हम बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह दानेदार जो है मटेरियल, वो कछुआ चूंकि इसको खाता है और खाने के बाद कास्टिंग करता है, तो जो चाय की पत्ती जैसा गंधहीन जो है दानेदार बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, और बर्मी कंपोस्ट में जनरली 2% तक नाइट्रोजन, 1 से 1.5% तक फास्फोरस और इस तरह से लगभग 1.5% तक पोटास भी होता है। देखा जाए तो बर्मी कंपोस्ट FYM मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है पोषक तत्व रखता है, साथ ही साथ बर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि फसल की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट चूँकि महंगा पड़ जाता है, मार्केट में 6 से 7 रुपये किलो है, तो इसका प्रयोग आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ता है, आप अपने घर पे ही बर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं और तैयार करके अपने खेतों में डाल सकते हैं, धान है या विभिन्न प्रकार की जो महंगी सब्जियां हैं उनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल अवशेष है, हम जनरली देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे फसलें हैं चाहे रबी की फसलें मक्का हो या गेहूँ हो, इसको हम लोग आग लगा करके जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि एक साइड में जो है हमारे पास जो है जो मृदा की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और पोषक तत्व जो क्रॉप रेसिड्यू में जो अवशेष में पोषक तत्व होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण का बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है और जो कि हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बेहतर होगा कि जो रेसिड्यू है जो फसल के अवशेष हैं उसको हमेशा समय ज़मीन में ही इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, और उसको जो है ज़मीन में जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ज़मीन में जोताई करके मिला देते हैं,

0: तो धीरे धीरे सड़ गल जाता है और फसलों को एक अच्छी प्रकार का पोषक तत्व देता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जनरली 3/4 भाग जो है 75-80% भाग जो है जो पोषक तत्व तो जमीन से पौधा लेता है उसका 75-80% भाग जो है जब हम उसके डंठल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जमीन में मिलाते हैं तो 75-80% भाग वापस जमीन को मिल जाता है। अर्थात जो आपका पोषक तत्व तो जमीन से लिया गया है उसका 75-80% तक जो है वापस जमीन में मिल जाता है अगर हम उसके रेसिड्यू को जलाने के बजाय हम उसको जमीन में मिला देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रेसिड्यू का भी जो फसल अवशेष है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करें, उसको जलाएं नहीं, उसको जमीन में ही इनकॉर्पोरेट करें तो उससे भी कुछ पोषक तत्व तो जो है आपको रिवर्स वापस मिल जाते हैं और भूमि का जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहती है, जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं वो बने रहते हैं जिसे हम सॉइल फ्लोरा और फौना कहते हैं वो भी जो है जमीन में अच्छे कंडीशन में मेंटेन रहते हैं। तो इससे किसान भाइयों आपके जो मृदा का स्वास्थ्य दिन पर दिन ईयर आफ्टर ईयर जो है मेंटेन होता जाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए जो हमारे समेकित पोषक प्रबंधन है इसमें हमें फोकस करना है आज के डेट में कि हम अधिक से अधिक जो है ऑर्गेनिक स्रोत के ऑर्गेनिक जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग करें, जैसे हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरी सवाल है, सड़ी हुई गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है और जो कुछ खलियां इत्यादि हैं उनका भी प्रयोग करें। एक हमने बात कहा भूरी खाद, भूरी खाद हम धान जो धान की रोपित धान है उसमें नहीं कर सकते, केवल जो धान की हम सीधी बुआई करते हैं उसी समय हम ढैंचा 30 किलो ले लेते हैं और 30 kg जो है धान ले लेते हैं और सीड ड्रिल के द्वारा तैयार खेत में हम सीधे बुआई कर देते हैं तो धान और ढैंचा साथ साथ चलते हैं। उसके बाद जब 30 दिन का हो जाता है धान तो उसमें हम 2,4-D डाल करके 650-650 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D का लेते हैं और छिड़काव कर देते हैं या कोई दूसरी हर्बिसाइड जो धान में प्रयोग की जाती है उसका हम प्रयोग कर देते हैं तो ढैंचा जो है वहीं गल करके मर जाता है और धीरे धीरे जमीन में वो मिल करके एक अच्छा जो है हरी खाद भूरी खाद का के रूप में वो पोषक तत्व प्रदान करता है और साथ साथ जो मृदा का टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस किया रहता है, जो मृदा की भौतिक और रासायनिक और जैविक अवस्थाएं हैं उनको सुरक्षित रखता है और मृदा स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। इस प्रकार से आप जो है हरी खाद हुआ, भूरी खाद हुआ, नीलहरी सवाल हुआ, अजोला केक्स यानी खलियाँ तथा फसल अवशेष का प्रयोग करते हुए साथ में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करके आप अपनी फसल को तथा मृदा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया अभी कि जो कार्बनिक खाद है इसके रूप में आप जो गोबर खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही रवि फसल के जो अवशेष हैं उसे बिल्कुल ना जलाएं बल्कि उसे जो अपने खेत में अगर आप गाड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हरी खाद, भूमि खाद, उजोला का इस्तेमाल करके आप अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आज आप सभी के साथ यहाँ पर हमारे उन्नत कृषि प्रोग्राम में थे डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी और इन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों और बहनों को। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और आप लोग सभी लोग को नमस्कार।
1: तो अगली बार अगले प्रोग्राम में अगले विषय के साथ अगले चर्चा के साथ फिर से हाजिर रहूंगी मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% और दोपहर में 20-25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा

चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें। और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की

इंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्ने हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है, और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी जरूरी मिनरल्स है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है, और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है।

आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा, या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है। तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी।
तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।

कि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में, और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
2: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
1: संक्रमण होने
2: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
1: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है।
2: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
1: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज़्यादातर देखा जाता है,
2: ज़्यादातर पाया ही जाता
1: और
2: है।
1: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है,

0: गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है,
1: अच्छा,
0: और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
1: और गला
0: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
1: और सर एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
0: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
1: तो इसके लक्षण क्या?
0: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांग वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
1: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं। तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
1: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
0: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है, और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है, और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
1: उनको नुकसान होता है,
0: दूध में काफी कमी आ जाती है, और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है, और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज

0: ते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं, और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
1: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
0: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
1: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
0: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो, और ऊँचे स्थान पर रखें। वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वह नमी की कमी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
0: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग है और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
1: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
0: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। तो बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ, अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
1: अच्छा।
0: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
1: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो

0: आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
1: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
0: जहां पर सभी पशु,
1: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहां का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
0: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
1: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है,
0: अच्छा,
1: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
0: कृमिनाशक दवा
1: बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
0: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो है वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
1: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडीन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडीन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो

0: वहां पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव। हाँ। तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते हैं,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की, जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें। और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले। और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव

ही करे जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति

घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें। और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले। और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थक

थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ. हेलो नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 और ये है एफएम ग्रीन. उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. और आज एक हर रोज की तरह एक और आज खास विषय हमारे बीच. जी हाँ, आज का विषय है खरीफ मक्का की उन्नत खेती. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं एसएस मंडल. मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेसर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में और पौधा प्रजनन विभाग में कार्यरत हैं ये. और मैं आपको बता दूं कि मक्का विशेषज्ञ हैं, इसलिए आज मक्का के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी सर से. तो सर, सबसे पहले मक्के की अच्छी खेती के लिए हमें भूमि कैसी चयन करनी चाहिए?
1: कि मक्का इस तरह डाइवर्सिफाइड है, मतलब इसकी इतनी विविधता है कि हर एक तरह की मिट्टियों में उपज जाता है. लेकिन इसके लिए विशेष तरह की मिट्टी है जो अभी के लिए होना चाहिए, जो खास करके ये मौसम है, खरीफ है, इस मौसम में जल जमाव की समस्या होती है. तो ऐसी भूमि का चुनाव करें कि जहाँ पर कि जल में, भूमि में जमाव नहीं, पानी का जमाव नहीं हो. और पानी का जमाव होने से पौधे में वृद्धि नहीं होती है. और खास करके उस समय जिस समय ये परागण की अवस्था में होते हैं और मोचा निकलने की अवस्था होती है, उस समय पौधों में जल का जमाव हो जाता है. तो उस समय परागण और मोचा निकलने का जो अंतराल है यह बढ़ जाता है, और जिससे उपज क्षमता बहुत ही प्रभावित हो जाती है. इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि भूमि और मिट्टी का ऐसा चुनाव करें जहाँ की पानी का जमाव नहीं हो.
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि भूमि का चयन आपको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ की पानी का जमाव ना हो. और इसके बाद सर, मक्के की खरीफ फसल के लिए खेत की तैयारी हमें कब और कैसे करनी चाहिए?
1: देखिए, खेत की तैयारी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है हम गर्मी के दिनों में इसकी निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें. और गर्मी में करने से ये फ़ायदा होता है कि जब मिट्टी को जोता जाता है तो उसकी नीचे वाली परत ऊपर चली आती है, जिससे जो खरपतवार के जड़ें हैं उसमें बीमारी के जर्म हैं या कीट पतंग हैं वो ऊपर चले आते हैं और उसका नाश हो जाता है. और ये सब पौधे के वृद्धि में लाभदायक होते हैं
0: जी.
1: और मिट्टी जुताई के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई मिट्टी के लिए अच्छी मानी जाती है.

0: तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए, गर्मी से ही आपको निकाई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। सर अब बुआई की बात करते हैं, तो बुआई हमें किस समय और कैसे करनी चाहिए?
1: कि हमारा प्रदेश मक्के के लिए इस तरह मतलब सुटेबल है, अनुकूलित है कि हम यदि प्रतिदिन मक्का बोएं तो प्रतिदिन हम मक्का काट सकते हैं, लेकिन इस मौसम के लिए खास है खरीफ के लिए कि इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक करने से उपज अच्छी आती है।
0: 15 जून से 15 जुलाई तक अगर आप करते हैं तो अच्छी उपज आपको मिलेगी इस समय। और सर मकई फसल उपजाने के लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी इस समय कितनी हो और बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ कितनी हो?
1: बीज की मात्रा तो हम लोग बोलते हैं कि 8 से 10 किलोग्राम होना चाहिए। यह 8 से 10 किलोग्राम इसलिए होता है कि हम लोग जो ज़्यादातर मक्का बुआई करते हैं वो हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड चूँकि वो मादा जो पौधा है उस पर उत्पन्न होता है, तो उसकी जो साइज है उसका आकार छोटा होता है। यदि छोटे आकार का है मक्का तो उसकी मात्रा कम लगेगी, यदि बड़े आकार की मक्का है तो उसकी बीज ज़्यादा लगेगी। इसीलिए बोलते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये प्रति एकड़ इसकी मात्रा है, और इसको बोते हैं हम लोग 60 से 60, पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर, और अभी के सीजन में पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इससे उपज अधिक आती है।
0: इसके साथ ही मकई के बेबी कॉर्न की बात करते हैं, तो इसके लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही सर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
1: हाँ, यहाँ पे हम लोग ये समझ लें कि बेबी कॉर्न कोई अलग से मक्का नहीं होता है, बेबी कॉर्न ये सामान्य मक्का है, बट इसके साथ खासियत है कि इसकी तुड़ाई हम लोग उस समय करते हैं जिस समय कि भुट्टे से मोचा निकलने को ही होता है, और इसमें ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं कि जिसमें कि एक पौधे में 3 से 4 भुट्टे तक आते हों। तो इसमें होता है कि पहले भुट्टे को तोड़ लेते हैं तो दूसरा भुट्टा आता है, दूसरे को तोड़ लेते हैं तो तीसरा आता है, और तीसरे को तोड़ लेते हैं तो चौथा आता है। क्योंकि इसमें हम लोग इसको घना लगाते हैं, तो घना लगाते हैं तो इसकी बीज दर जो नॉर्मल मक्का है, साधारण मक्का है, उससे ज़्यादा होती है, और इसकी मात्रा होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, और इसकी पंक्ति से पंक्ति के बीज की दूरी हम लोग 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। इसमें होता है कि जो अभी के सीजन में हम मक्के को जो बेबी कॉर्न के रूप में लगाएंगे, ये मात्र 45 से 55 दिन के अंदर हमारा ये कट जाएगा। चूँकि ये बहुत जल्दी कटता है, तो इसमें यदि हम लोग प्रति एकड़ पौधे की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं तो ये सीधा उपज को प्रभावित करता है।
0: तो सर साथ ही साथ स्वीट कॉर्न के बारे में भी जानकारी दे दें।
1: हाँ, स्वीट कॉर्न मक्के में भुट्टे का उपयोग हम लोग ग्रीन कॉब उसको बॉयल करके उबाल करके खाने के लिए करते हैं, तो इसमें बीज की मात्रा 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ रखते हैं, और इसकी बुआई 75 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच, कतार से कतार के बीच करते हैं, और पौधे से पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। इसको भी हम लोग हार्वेस्टिंग कटाई भुट्टे की तुड़ाई कर लेते हैं जिस

0: में दाना भर जाता है, पकने के पहले कर लेते हैं और उसी समय इसकी मार्केटिंग होती है या उसको हम लोग खाने के काम में लाते हैं।
1: तो ये तो बातें हो गई हैं स्वीट कॉर्न की, और साथ ही साथ पॉपकॉर्न के लिए बुआई की कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
0: कि पॉपकॉर्न किसान भाई आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कि एकदम पूरा लावा हो जाता है, मक्के को भूजते हैं तो पूरा का पूरा लावा होता है, उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं। तो आपको अनुभव होगा कि इसके दाने बहुत छोटे होते हैं, तो जिस तरह दाना का साइज होगा उसी हिसाब से बीज दर का निर्धारण होता है। क्योंकि इसका दाना छोटा होता है इसलिए इसकी बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, और इसको लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर पे बोते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: तो सर अगर मकई के चारे की बात करें तो मकई के चारे के लिए बुआई के लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की जरूरत होगी, और साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए इसमें?
0: कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि मक्का को हम चारे के रूप में लें, तो चारा का रूप में लेने का मतलब है कि हमको जो बायोमास है मक्के का, यहाँ दाना का प्रोडक्शन नहीं है, मक्के का पौधे का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो उस पर निर्भर करता है कि हमें चारा कितना मिलेगा। तो चारे को हम लोग घना बोते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधा मिल पाए, और चूँकि मक्के में कल्ले नहीं निकलते हैं तो इसीलिए हम लोग जितना बीज डालेंगे उतने ही पौधे बनेंगे। और यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधा मिले, तो हम लोग यहाँ पर बीज दर ही बढ़ा देते हैं, और चारे के लिए मक्के का बीज दर हम लोग लगाते हैं 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लगाते हैं, और 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की रखते हैं।
1: तो इस प्रकार से मकई के चारे के लिए बीज की मात्रा सर ने आपको बताई, और सर मकई की बुआई कैसे करें ये भी बता दें किसान भाइयों को।
0: कि मकई की बुआई पंक्ति में करने से एक पौधे को दूसरे पौधे के बीच की दूरी पर्याप्त होती है, जिससे पौधे को उचित मात्रा में नमी, पोषक तत्व, हवा मिल पाता है। तो हम लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं 60 सेंटीमीटर जो दाने के लिए मक्का उगाते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 25 सेंटीमीटर, और इसकी बुआई करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम मक्का वैसी जगह बोएंगे जहाँ पानी नहीं लगे, और बुआई के तुरंत बाद हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि कहीं पे हमारे खेत में तो पानी लगने की गुंजाइश तो नहीं है, यदि वैसी है तो हम लोग वहाँ पे जल निकासी का व्यवस्था करते हैं।
1: तो सर जीरो टिलेज के बारे में हमने सुना है कि इसे खेती की जाती है, तो मक्के की खेती में जीरो टिलेज तकनीक क्या है उसके बारे में बताएं सर।
0: जीरो का साधारण अर्थ ही है कि जीरो मीन्स कुछ नहीं, और टिलेज मीन्स जुताई। यदि हम खेत में कुछ भी जुताई ना करें, हम बुआई के लिए खेत की बिल्कुल जुताई ना करें और उसमें लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज में होता है, जीरो टिलेज मशीन आती है, उसमें हम लोग खाद और बीज डाल देते हैं, और दोनों अलग अलग गहराई पर गिरता है बीज और खाद, और उसी मशीन से हम लोग बुआई कर देते हैं, तो इसको जीरो टिलेज बोलते हैं
1: जी।
0: लेकिन यहाँ जीरो टिलेज में है कि लगाने के पहले खरपतवार का नियंत्रण जरूरी होता है, उसको कर लेते हैं।

0: सर इस मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे हम, जीरो टिलेज मशीन के बारे में।
1: जीरो टिलेज मशीन साधारण ड्रिल की तरह होता है, इसमें टाइन चाकू की तरह होता है और इसमें खाद और बीज अलग अलग गिरते हैं और ये ट्रैक्टर चालित होता है।
0: तो इस तरीके से आपने जाना जीरो टिलेज मशीन के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात होता है कि लाभ क्या मिलेगा अगर हम जीरो टिलेज से मकई की खेती कर रहे हैं। तो
1: देखिए, जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने से जो हम ईंधन लगाते हैं जुताई करने में, वो ईंधन का बचत हमारा होता है 60-70% बच जाता है। और ये आप जानते हैं कि ईंधन जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और यदि हम 60-70% ईंधन कम करते हैं तो ये तय है कि हम लोग 60-70% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं, इससे प्रदूषण कम होता है। और जब हम जीरो टिलेज से खेती करते हैं तो इसमें खरपतवार कम उगता है, यदि हम शुरू में नियंत्रित करके लगाते हैं पौधे को, और इसमें नमी की मात्रा बनी रहती है और हमको इसमें पानी की मात्रा भी कम पड़ता देना पड़ता है। और इस विधि से हम 10 से 15 दिन में पहले फसल लगा सकते हैं, जो कि हमारा 10 से 15 दिन खेत की तैयारी में लगता है, वो हमारा यहाँ पे तैयारी में समय नहीं लगता है, उसकी हमें बचत हो जाती है। और साथ साथ ही जो हमारा आर्थिक लाभ है, इससे 2,000 से 2,500 प्रति हेक्टेयर बच जाता है, हमारा लागत कॉस्ट बच जाता है।
0: रीस तकनीक के बारे में सर हम जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती में रीस तकनीक क्या है और इसे बुआई कैसे कर सकते हैं।
1: कि रीज मेड़ हुआ, और मेड़ पर बुआई इस मौसम में ख़ास तौर से बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मेड़ पर यदि हम बुआई करते हैं तो हमारा पौधा जल जमाव, उसके जड़ क्षेत्र में जल का जमाव नहीं होता है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि यदि हमको पानी भी देना पड़े तो हम एक मेड़ को छोड़ करके दूसरे मेड़ में ही भी पानी दे दें तो हमारा काम चल जाता है, जिससे हमारा पानी की मात्रा, सिंचाई की मात्रा आदि लगती है।
0: तो इस तरीके से सर मक्का की बुआई के बारे में जानना चाहिए, किस दिशा में मक्का की बुआई करें।
1: कि मक्का की बुआई पूरब से पश्चिम की पंक्ति में करना चाहिए, इससे सूर्य का प्रकाश हर एक पौधे को अच्छी तरह मिलता है। और हम जानते हैं कि जो भी पौधे उत्पन्न करते हैं वो जमीन से लेते हैं और सूर्य की गर्मी से लेते हैं, वही उनका उस उत्पाद है। यदि सूर्य की गर्मी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो उसकी उपज क्षमता अधिक होती है।
0: ज़रूरी होता है कि हम प्रजातियों के बारे में जानें, अगर हम मक्का की बुआई कर रहे हैं सर तो कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां होंगी, उसकी जानकारी दें।
1: वो मक्का, खरीफ के मक्का के लिए हम लोग की एक प्रभेद है जिसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ही विकसित किया है, सबौर शंकर मक्का 1। इसकी उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह 80 से 85 दिन में हो जाता है, क्योंकि इसकी उपज की अवधि बहुत कम लेता है, इसलिए यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए भी अति उपयुक्त है, क्योंकि यह बाढ़ आने के पहले ही

0: फसल है, अच्छी फसल लेने के लिए HM4 VL बेबी कॉर्न 1 ये सब उन्नत प्रभेद हैं। इसमें तोड़न की क्षमता 3 से 4 तक होती है और इसमें जो हरे चारे का जो बेबी कॉर्न का दूसरा उपयोग है कि बेबी कॉर्न को तोड़ने के बाद हार्वेस्ट करने के बाद जो फसल बच जाता है तो उसको हरे चारे के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी भी उपज क्षमता इसमें अधिक होती है।
1: मीठी मक्का की अगर हम उपज करना चाहते हैं तो इसकी अच्छी उपज के लिए कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: तो मीठी मक्का स्वीट कॉर्न है जिसको हम लोग उबाल कर खाते हैं, तो इसके लिए इसकी उन्नत प्रभेद हैं माधुरी, प्रिया, HSC 1, ये सब इसकी उन्नत प्रभेद हैं।
1: और वहीं अगर चारे की बात करें तो उसके लिए कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: देखिए, चारे में हमारा उद्देश्य रहता है कि हमको बायोमास, पौधे की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब बड़े पौधे हों जिससे हमको चारे की मात्रा अधिक हो, तो इसके लिए वैसी प्रभेद चुनी जाती है कि जो कि बहुत लंबी हो और पौधे की मोटाई भी ज़्यादा हो, तो उनमें से आता है, इस कैटेगरी में आता है अफ्रीकन टॉल J1006, प्रताप चेरी 6, ये सब इसकी उन्नत प्रभेद हैं।
1: और अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कब करनी चाहिए?
0: सिंचाई का सीधा संबंध है वो पौधे, आप लोग देख के किसान भाई खुद जानते होंगे कि पौधा कब पानी मांग रहा है, और आपको लगे कि पौधे को पानी देना है तो सिर्फ खेत को भिगाने का कोशिश करिए, खेत को डुबाने का कोशिश नहीं करिए। होता क्या है, जितनी ज़रूरत पौधे को होगी उतना ही पानी लेगा, और आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो आपका पानी का नुकसान होगा। और यदि आपने मक्के को मेड़ पर बोई हुई है तो एक मेड़ छोड़कर दूसरे मेड़ में पानी दें तो पानी की मात्रा आपको आधी लगेगी। यदि आपने जीरो टिलेज से की हुई है तो वहाँ तो कम मात्रा पानी की लगती है, और इसके अलावा उसमें पानी का संरक्षण भी होता है, तो जिस समय ज़रूरत हो उसी समय डालें। और ख़ास करके जो क्रिटिकल स्टेज है, जो पौधे जिस समय इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मक्के की घुटने की अवस्था होती है, उस समय पानी ज़रूर डालें यदि ज़रूरत हो तो। यदि देखें कि पत्तियां उसकी रॉल कर रही हैं, मुड़ रही हैं, सूख रही हैं, तो ये उसको पौधा को पानी मांगने का एक तरीका है, उस समय हम डालें। और दूसरा, जिस समय धनवाली निकलता है, मोचा निकलता है, वो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है वो पानी का, उस समय यदि हम पानी नहीं डालेंगे तो नर मंजरी है और मोचे का बीच का जो दूरी है, मतलब समय है, वो बढ़ जाएगा।
1: जी।
0: नर मंजरी में पराग बनता है और जो भुट्टा निकलता है उसमें सिल्क निकलता है जिससे परागन होता है, तो हम उस समय पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि उस समय पराग ही नहीं बने और परागन नहीं हो तो दाना बनने की जो क्रिया है ये बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।
1: तो सर, अगर कीट पतंगों की हम बात करें तो मक्का पौधे में जो ये कीट पतंगे हैं वो पत्तियों पर धब्बेपन बनाते हैं और साथ ही पत्तियों के साथ साथ पौधे के तने को भी नष्ट कर देते हैं और पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं, तो इसका उपाय क्या है?
0: देखिए, मक्के में जो मुख्यतः कीट लगता है वो तना छेदक कीट है, और ये पत्तियों में ही अंडे देते हैं और जो उसका गाभा है उसी में घुस कर रहता है और उसको खाता है। तना छेदक कीट को, कीट के नियंत्रण के लिए हम लोग फ्यूराडान का 8 से 10 दाने, दानेदार दवा है, इसको किसी बोतल में छेद करके इस दानेदार दवा को रख लेते हैं और प्रति पौधे 8 से 10 दाने

0: डाल देते हैं। और चूंकि ये दवा सिस्टेमिक है, पूरे सिस्टम को जहरीला बना देता है मक्के को, तो उसमें कहीं भी कीट छुपा हुआ हो तो उसकी मौत हो जाती है और हमारा फसल बच जाता है।
1: जी सर, फॉल आर्मी वॉर्म का नियंत्रण कैसे करें?
0: हाँ, ये फॉल आर्मी वॉर्म अभी के समय में बहुतायत पाने वाला, पाए जाने वाला कीट है। और जो इसे जो नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, यदि किसान भाई इसको छोड़ दें, दो तीन दिन में ही आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। और इसमें जो वयस्क पौधे हैं, इसके उड़ने की क्षमता है, एक रात में 105 किलोमीटर तक भी चला जा सकता है, इतने मतलब ज़्यादा ये खतरनाक हैं। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है, कुछ दवा हैं ऐसी जिससे पूरी तरह ये नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए है इमामेक्टिन बेंजोएट का आधा ग्राम एक लीटर पानी में हम घोल करके इसको छिड़काव कर दें तो ये पूरी तरह से कीड़े नष्ट हो जाते हैं और हमारा फसल बच जाता है।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर आपने खरीफ में मक्का की उन्नत खेती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, तो आशा करते हैं कि इसे ज़रूर लाभ मिलेगा आपको मक्का की, अगर आप खेती कर रहे हैं तो। अगले दिन एक नए विषय के साथ फिर हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखिएगा 90.8 FM ग्रीन पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें

0: अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
1: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
0: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं। अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा? देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
1: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
0: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए, यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
1: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
0: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है,

0: गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है। HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने? इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं। सच तो धीरे धीरे समझ में आता है। बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है। इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
1: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
0: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है: वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
0: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए

0: सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
2: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
1: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
2: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
1: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
2: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
2: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
2: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस,

0: स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
1: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
2: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
1: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: हेलो नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, वैसे मार्च के बाद यूँ कहें तो आम के जो मंजर हैं वो या फिर फरवरी के बाद भी आप कह सकते हैं, फरवरी में भी कह सकते हैं कि आम के मंजर हमें दिखने लगते हैं। और इसी समय खास देखभाल जो हमारे आम के बागों की है वो हमारे किसान भाई शुरू कर देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना होता है कि आम के इन कीटों से उन्हें कैसे बचाया जाए, तभी जो

0: फल हैं वो हमें प्राप्त हो पाएंगे। तो इस विषय को लेकर जी हाँ आज हम बात करेंगे आम में लगने वाले कीटों के बारे में और उनका नियंत्रण हम कैसे करें, इसके बारे में सारी जानकारी आज हमें मिलेगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कलमेश, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट DKAC किशनगंज से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को उन कीटों के बारे में बता दें जो प्रायः देखे जाते हैं आम के जो बागवान है उसमें देखे जाते हैं, आम के फलों पर देखे जाते हैं, जिसकी वजह से आम जो है बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके बारे में बताएं।
1: सारे किसानों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आजकल जो है आम का सीजन शुरू हो गया है, और जैसे कि हम जान रहे हैं भागलपुर के आसपास के अंदर भी और इवन भागलपुर पुणे इस हर जगह पे जो है आम का बगान बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, और इसके अंदर जो है आप देखेंगे 4-5 कीट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे पहले आप यदि देखेंगे तो एक मंजर के ऊपर जो एक कीट लगता है उसको कहते हैं हम हॉपर
0: जी,
1: और उसके बाद एक आता है हमारा फलमक्खी, जो देर से अभी जो मंजर स्टेज में आता है वो हॉपर है, लेटर स्टेज में जब आपका फल लगने लगते हैं उस समय आपका एक फलमक्खी भी आता है, और उसी समय जो है या उसकी बीच में मतलब जब छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं आम के जो फल होते हैं उस समय जो एक आता है
0: मिलीबग, जिसे कहते हैं जी
1: दहिया कीट भी कहते हैं, मिलीबग कहते हैं उसको, वो भी एक बड़ा इस रीजन में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक और कीट जो है आपका स्टेम बोरर है, थोड़ा सा पुराने जो पेड़ जहाँ पे है जिसके अंदर ये कीट जो है आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पूरा पेड़ को ही नुकसान पहुँचाता है।
0: अच्छा,
1: तो इनके अंदर जो हम देखेंगे पहले सबसे पहले जो अभी आम का जो मंजर के ऊपर जो है आप देखेंगे
0: मंजर
1: के समय में जो कीट लगते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है एक हॉपर है। ये क्या करता है जी, मैंगो मिली मैंगो
0: हॉपर ये दिखने में कैसा होता है उसके बारे में?
1: दिखने में आप देखिए ये कीट जो है आपको बहुत ही छोटे छोटे कीट है, जैसे कि मच्छर टाइप का लगता है, छोटा छोटा मच्छर से भी छोटा लगता है, कभी कभी देखने को दूर से आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, नजदीक में आपको देखना पड़ेगा। और ये पूरा मंजर के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, रस को चूसते हैं, रस को चूसने वाले कीट है, चूस चूस के क्या करेंगे उसके अंदर से आधा अपना खुद यूटिलाइज कर लेंगे, फी लेंगे, और उसके बाद आधा जो है थोड़ा सा ये अपना एज ए यूरिनेज कर मतलब पेशाब करके निकाल देते हैं, जिसके चलते आप देखेंगे आम के पेड़ के मंजर के आसपास देखेंगे तो बहुत सारा चींटी भी आपको देखने को मिलता है। चींटी मिलती है इसका मतलब है कि ये कीट जो है आपका इधर
0: इसका
1: प्रकोप इस पेड़ के ऊपर है, आसपास है। तो उस समय क्या होगा, चींटी क्या करती है, चींटी इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ले जाने के लिए मदद करती है, और इंटर्न ये कीट क्या करता है, ये कीट जो उसको शुगरी सिक्रेशन को यूरिनेट मतलब पेशाब करके जो है वो देने से उसके अंदर क्या है शुगर रहता है, शक्कर रहता है, तो वो चींटी को भी काम आ जाती है, इसीलिए चींटी जो इसके आगे पीछे घूमती रही, दोनों के अंदर जो मित्रता है एक तरीके से,
0: मतलब एक तरीके से देखा जाए कि हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं अगर चींटी अगर किसी पेड़ के पास आसपास दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये कीट आपके बागों में है अभी और आपके फल पर लग सकते हैं।
1: इधर मैं थोड़ा सा ये बताऊं मंजर के आसपास यदि आपको ज्यादा दिखेंगे हां जी तो उस समय के आपको आसानी से इसको पहचान सकते हैं, बहुत ही छोटा सा कीट है, ब्लैक कलर का होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो इवन काला काला होने लगता है, पत्ती भी काला काला जब ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो उस समय पत्ती भी थोड़ा सा काले रंग के होने शुरू हो जाते हैं।
0: तो ये तो बात हुई हॉपर की, और उसके बाद आपने एक बताया था डॉक्टर साहब
1: तो इसके नियंत्रण भी मैं इसी समय
0: नियंत्रण
1: ताकि जो इसको पूरा कर लेते हैं, इसके लिए आपको मार्केट में इमिडा क्लोप्रिड करके एक दवा मिलता है,
0: अच्छा,
1: जिसको आपको मंजर आने से 15 दिन पहले और मंजर आने के बाद 15 दिन मतलब 15 एक बार फर्स्ट आज मान लीजिए आज के बाद 15 दिन के बाद फिर से एक दो स्प्रे यदि करते हैं वो भी 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के इसको देते हैं तो इसको बहुत हद तक जो है हम लोग कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है और ये जो है आप कर सकते हैं, 2 बार करना पड़ेगा आपको,
0: 15 दिन पहले मंजर के 15 दिन पहले आने के और 15 दिन बाद
1: जी उस समय वो इसको आसानी से आप बहुत हद तक कर सकते हैं, ताकि जो है यदि इसको उस समय नहीं कर पाते तो बहुत सारा फल जो है छोटा छोटा लगने से पहले ही पूरा जो है नीचे झड़ जाएगा
0: जी। उसके बाद एक और कीट
1: जी, उसके बाद जो है आप दूसरा कीट आप देखेंगे, एक तो स्टेम बोरर की बात मैं कह रहा था, स्टेम बोरर का एक स्टेम बोरर मतलब जो पूरा जो ट्रंक होता है उसका जो पेड़
0: था
1: हाँ, तो उसको जो है उसके अंदर जो बार्क जो कहते हैं हम बाहर से जो बार्क कहते हैं बार्क के अंदर बैठ के खाता रहता है, आपको बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत बार, तो ये बाहर अंदर बैठ के खाता रहता है और पूरा छेद करते हुए एक गुफा बना लेता है अंदर,
0: खोखलापन
1: जी, खोखला बनाते चलेगा और उसी के अंदर जो है, और एक खास करके जो पुराना जितना पेड़ होता है

0: बागान के अंदर जो आप देखेंगे जितना भी पुराना पेड़ होता है उसके अंदर इसका प्रकोप जो ज्यादातर देखने को मिलता है, नए पेड़ के अंदर ये उतना ज्यादा नहीं करता है। बट आप उस तरीके से दिखता है तो आपको उस समय क्या करना है, उसको बार को हटा के आप पर्टिकुलरली वो कीट जो है आपको दिखाई पड़ता है हटाने के बाद, तो उसको किल करना पड़ेगा मैन्युअली।
1: अच्छा
0: जी, तो उस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ क्योंकि ये अंदर रहता है तो आप बाहर से स्प्रे करेंगे तो भी काम नहीं होगा,
1: नहीं करेगा जब तक वो अंदर तक ना जाए।
0: और वैसे ज्यादा पुराना है तो मेन है कि जो है हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं कि ये वाला पेड़ को आप हटा दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है उससे दूसरे पेड़ को भी ज्यादा नुकसान होता है, हो जाता है। उसी को रिप्लेस करके आप नया पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पे तो वो अच्छा तरह ग्रो हो पाएगा
1: जी।
0: जो तीसरा हमारा मेन इसके अंदर कीट आता है वो उसको कहते हैं हम लोग पल मक्की।
1: पल मक्की जी,
0: जी पल मक्की जो है आपको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो ये जो है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है जो कि बहुत सारा सब्जियों के अंदर भी आता है और ये फल के अंदर भी आते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये कीट क्या करते हैं, ये भी एक तरीके से इसके अंदर जो है जैसे ये अंडा जो इसका स्टेज होता है ये जहाँ पे सड़ने वाले आम होते हैं या सड़ते हुए जो जहाँ पे मान लीजिए पेड़ के ऊपर से आम नीचे गिर गया, गिरने के बाद हम लोग उसको उठा के मतलब ये नहीं करते हैं, वहीं पे पड़ा रहता है।
1: हाँ।
0: तो जैसे ही वो उसके अंदर क्या होता है ये इसके लिए बहुत अच्छा फूड है जो फल मक्की के लिए ये सबसे ज्यादा, और जो है उसके अंदर जो क्या होता है सड़ते हुए और इसको जो है ज्यादा अच्छा लगता है,
1: सड़े हुए फल
0: जो और ज्यादा अच्छा लगता है इस चीट को। जैसे ये इस तरीके से का मिलता है तो उसके अंदर जाके अंडा दे देते हैं, जैसे अंडा हो जाता
1: होते जाते
0: हाँ जी उसके अंदर एक और इवन ये अच्छा फ्रेश फ्रूट्स को भी ये अंडा दे देते हैं उसके अंदर भी डैमेज करते हैं, और इनको थोड़ा सा सड़ते हुए मिल गया तो और ज्यादा इनको फेवरेबल है एक तरीके से, ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे ये। तो उस तरीके से क्या होगा ये इनका थोड़ा सा वो भी पोस्टर जो है ना बहुत ज्यादा शार्प रहता है, ये बहुत ज्यादा तेज जो है डैमेज करके फल के अंदर ये करते हैं, उसके अंदर क्या होगा तुरंत जो है बाहर का इन्फेक्शन जो आ जाता है, इन्फेक्शन आने से क्या होगा वो जल्दी जल्दी सड़ना शुरू करेगा, सड़ना शुरू हो तो इसके अंदर जो एक छोटा सा पिल्लू रहता है आपने देखा होगा बहुत बार जो है जब भी आप आम काट के देखते हैं काते हुए तो उसके अंदर एक छोटा सा पिल्लू टाइप का आपको दिखाई पड़ता है ऊपर नीचे करता रहता है, तो ये इसी फल मक्की का ही कीट है जो लार्वल स्टेज कहते हैं हम लोग उसको। तो ये इसके अंदर रहता है तो उसको जो है आप कुछ दिन इसके अंदर पांच स्टेजेस होते हैं, पांच जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप जो है फल से नीचे गिर जाता है मिट्टी के अंदर चला जाता है, इसका प्यूपल स्टेज जो है मिट्टी के अंदर रहता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं इसको नियंत्रण के अंदर तो पेड़ के नीचे थोड़ा सा बीच बीच में आपको हल्का सा मिट्टी को खोदना पड़ेगा ताकि जो है जितने भी ये प्यूपा नीचे गिरा हुआ है या मिट्टी के अंदर है तो वो जो है एक्सपोज हो जाए सनलाइट को या कोई बर्ड्स को ताकि वो उसी समय डैमेज को मतलब उसको डैमेज कर सके
1: खा ले या फिर
0: जी। उसके बाद जैसे ही बड़ा होके जब मक्की आ जाती है फल मक्की ये जो है फिर अलग अलग फ्रूट के ऊपर ये जो है डैमेज करते करते करते पूरा बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है सारे फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसे भी कीट है, इस कीट के चलते हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट भी जो है निर्भर है, मतलब इस फ्रूट फल में के चलते हमारा बहुत सारा आम जो है दूसरे देश में जाने से भी रोका जाता है,
1: मतलब ये बर्बाद कर देते हैं जिस
0: इतना बर्बाद करते हैं क्योंकि ये जो है कीट दूसरे देश में कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है।
1: अच्छा।
0: बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब उनके यहाँ है नहीं तो इसको आने से रोक देते हैं, हमको ये आपका ये आम नहीं चाहिए, बहुत बार ऐसे केसेस हुआ है हमारे आम गया है वहाँ से वापस भी आया है या नॉन कंप्लायंस के जरिए, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही कीट एक कीट आपको देखने को मिलता है वो वहाँ से इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए जो है ये कीट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको रोकना जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको नियंत्रण के लिए भी मैं एक दो चीज़ जैसे एक पता है वो मिट्टी को थोड़ा सा नीचे खोदना एक तो वो मेथड है, दूसरा मेथड जो जितने भी आपका आम गिर जाते हैं नीचे उनको हम कोशिश करें कि जो है जितना भी उनको है तो निकाल निकाल के एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर उसको बंद कर दे ताकि जो है इसको
1: सड़े हुए आम सड़े, ना ऊपर
0: जितने भी नीचे मान लीजिए ऊपर से नीचे गिर गया तो एक दो दिन के बाद तो सड़ना
1: है जी।
0: तो मेन है कि आप जितने भी नीचे गिरा हुआ है वो सारे आम को जो है निकाल के एक जगह पे मिट्टी के अंदर उसको गड्ढा खोद के गाड़ दें तो उससे क्या होगा आपका बहुत हद तक भी ये कीट जो है इसको आहार नहीं तुरंत आहार मतलब फूड हुआ वाला नहीं मिलेगा, जिससे भी थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। और आजकल बहुत सारा फेरोमोन ट्रैप्स भी है अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं इसको नियंत्रण के लिए
1: जी।
0: और इसके अलावा कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स है जैसे कि डाइमिथोवेट।

0: और आपका इमिडाक्लोप्रिड भी इसके अंदर काम करता है, डाइमेथोएट है, इसको भी आप लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर डाल के छिड़काव करने से बहुत हद तक इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी। सर एक और चौथे किस्म के कीट के बारे में आपने बताया था,
0: एक जो है मीली बग एक करके आता है, दहिया कीट भी कहते हैं इसको। ये कीट जो है अभी आपका मान लीजिए जैसे कि मंजर आने के स्टेज और अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में ही ये कीट क्या करता है, मिट्टी के अंदर से रहता है, बाजू में वीड मतलब खरपतवार के अंदर ये रहता है जगह जगह पे। तो जैसे ही आम के अंदर थोड़ा सा फल लगने लगते हैं,
1: अच्छा,
0: तो ये कीट क्या करता है धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है, अभी जैसे तापमान बढ़ेगा,
1: हाँ।
0: तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे टहलते टहलते जमीन के ऊपर टहलते टहलते टहलते पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। ये नीचे से ही आता है, ऊपर कहीं नहीं रहता है, ना ही ये उड़ पाता है।
1: अच्छा।
0: ये नीचे जमीन से चढ़ते चढ़ते चढ़ते पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा,
1: चींटियों की तरह।
0: जी, चींटियों की तरह चढ़ते चढ़ते, और ये ऊपर जाके पूरा जहाँ पे जो नरम पत्ती है, नरम ये होता है जो पौधा का पोर्शन होता है, उस जगह पे जाके ये भी रस को चूसने लग जाते हैं। ये रस को चूसने जैसे लग जाते हैं, बहुत सारा पल जो लग रहे होते हैं या अभी भी लगे हुए हैं, वो सब जो है अपने आप गिरने लग जाते हैं, पूरा आपका नीचे गिरने लगते हैं। ये इस तरीके से आपको कीट जो नुकसान पहुंचाता है,
1: नुकसान पहुंचाता है जी।
0: तो इसको जो है आपको देखेंगे तो आपको बहुत दूर दूर से पता चल जाएगा कि सफ़ेद कलर का पूरा जो इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग कहते हैं हम लोग इसको, पूरा एक तरीके से सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना दिया इस कीट के ऊपर, तो उस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। और ये पूरा ग्रुप में ही रहता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको झुंड में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कीट जो इस तरीके से रस चूस के बहुत सारा नुकसान पहुँचाता है। ये कीट जो है हमारे यहाँ इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा हम लोग पाए गए हैं बहुत बार। इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत बार कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने के लिए, डाइमेथोएट जैसे बताया वो भी इसके ऊपर काम करता है। इसके ऊपर बेस्ट एक तरीका हम लोग एक और देखे हैं, ट्रंक के ऊपर जो है, स्टेम के ऊपर जो है हम लोग एल्यूमिनियम फाइल को एक गोल करके लगा देते हैं ताकि जितने भी नीचे से इसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हों कीट वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे, ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी होने से क्या होगा, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा
1: जी।
0: तो इसको इस तरीके से आपको सारे पेड़ के अंदर जहाँ जहाँ आपको ये देखने को मिलता है इस तरीके की, तो आप उस पेड़ का जो ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर पूरा गोल करके एक एल्यूमिनियम फाइल आता है, तो एल्यूमिनियम फाइल को आप थोड़ा सा उस पेड़ के ऊपर लगा देंगे, या नहीं तो आपको बहुत बार ये भी हो सकता है ग्रीस जो मिलता है जो गाड़ियों में लगती है, तो उस ग्रीस को भी आप लगा सकते हैं, एक पूरा 3 या 4 सेंटीमीटर का एक जो है बड़ा पूरा गोल करके लगा देंगे, तो वो जब भी ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करेगा उस ग्रीस के अंदर वो फंस जाएगा, उसका पाँव जो है उस ग्रीस के अंदर फंस जाएगा, तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। इस तरीके से इस कीट को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको चार तरह के इन कीटों के बारे में, जो प्रमुख कीट जो लगते हैं आम के फलों पर, मंजर पर, तो अलग अलग स्टेज है इन कीटों का लगने का, और उनके बारे में कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं वो भी बताया इन्होंने, साथ ही आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उनकी भी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दिया। और आशा करते हैं कि अभी इस मौसम में इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है, और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25

प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें। और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले। और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डाले। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन।

सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती है तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम जरूरी हैं, जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी, आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये जरूरी है, तो कुछ जो जरूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, इससे आपका वक्त जाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकाले। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना जरूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में

हम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर के लोग समझें, खास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए, किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गए घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं, और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझें और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए ज़रूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें,
ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी

जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गए होंगे कि बिल्कुल परेशान होंगी, तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है।

0: गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दे। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीजों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कराती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं, और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ अनु, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धान की बात करते हैं हम। जी हाँ, धान में हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि कैसे बुआई करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, DSR के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन आज कुछ उर्वरक की बात करेंगे हम। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान में जैविक उर्वरक का महत्व। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर AK झा, मृदा वैज्ञानिक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं को आप जैव उर्वरक के बारे में बता दें कि ये क्या है।
1: देखिए, जैसे नाम बताता है, जैव उर्वरक यानी जीवित पदार्थ जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सके उसको आप जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, या एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, या एजोस्पर्म की बात करते हैं, या अजोला की बात करते हैं, या BGA की बात करते हैं, ये सब के सब जितने हैं सब के सब जीवित पदार्थ हैं और उर्वरक की तरह पोषक तत्व इनको देने का काम करते हैं, इसीलिए इसको जैव उर्वरक कहा जाता है।
0: जी, मतलब पोषक तत्व देते हैं। और साथ ही साथ ये जो जैव उर्वरक हैं, क्या धान में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किया जाता है तो किन किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
1: अभी जैसे मैंने नाम बताया कि धान के केस में यदि आप देखें तो धान के केस में आप जो प्रयोग करते हैं एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके नाइट्रोजन प्रदायक की बात करें जो नाइट्रोजन देता है तो उसमें आप एजोस्पर्म प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ जगहों पर एजोटोबैक्टर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर से बढ़िया आपको एजोस्पर्म होगा तो एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस यदि आपको प्रदान करना है तो आप PSB का प्रयोग कर सकते हैं, ये बीज में जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है, वैसे तो सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल ये भी 30-40 kg नाइट्रोजन की बचत करता है, तो नील हरित शैवाल का भी प्रयोग धान के केस में किया जाता है। और एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिस पर करता है, अजोला बड़ा ही फायदे की चीज है, तो ये अजोला का भी प्रयोग आप इस खेती में कर सकते हैं।
0: जी, अजोला का प्रयोग इस खेती में किया जाता है तो क्या इससे क्या फायदा मिलेगा धान की खेती में सर?
1: देखिए, अभी तक लोग ये कहते थे कि अजोला के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है 30-40 kg, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शोध करके देखा कि नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फोरस भी, पोटास भी, ये सब की बचत करता है। क्योंकि इसमें देखें तो नाइट्रोजन इसमें 4.5% के बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास भी इसमें 2.5% से लेकर 4.5% तक इसमें पोटास भी पाया जाता है, 1% के आसपास इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका यदि आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या डुअल क्रॉपिंग के रूप में करते हैं तो जो कुछ भी आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास धान को दिया उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और आधी मात्रा कर देने के बावजूद भी आपके उपज में कोई कमी नहीं होगी। यदि मान लीजिए 5-6 हजार रुपये का खर्चा करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, यानी 2-3 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपको बचत हो जाता है यदि आप अजोला का प्रयोग करते हैं तो ये फायदा है।
0: ठीक है, मतलब जो है आई जो है उसमें बचत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसमें बचत हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और अजोला का प्रयोग कैसे करना चाहिए,

0: जरूरी बात है जाना।
1: अभी आपने कहा कि हमें बचत हो जाता है, बचत ही नहीं होता है, आज जरूरत है टिकाऊ खेती की।
0: बिल्कुल,
1: टिकाऊ खेती के लिए उसमें कार्बन को देने के काम की जरूरत है। और यह जो पौधा है ये हरा पौधा है, और हरा पौधा है तो ये वातावरण से कार्बन को लेकर के आपकी मिट्टी में डालता है, क्योंकि कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है, या आपकी मिट्टी में होना चाहिए 0.75% के ऊपर, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में देखेंगे तो कहीं 2% 0.2% 0.3% 0.4% ऐसे ऐसे है। जबकि 0.5% के नीचे यदि जैविक कार्बन है आपकी मिट्टी में, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि यह निम्न है, लो है। 0.5 से 0.75% के बीच में है तो इसको कहते हैं कि मध्यम है, और 0.75% के ऊपर है तो कहते हैं उच्च है। और ये कार्बन जो है आपके सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक गुण का क्या मतलब, यानी कि जल धारण क्षमता कितनी बढ़िया है, वायु संचार कितना बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में जो हमारा पोषक तत्व तो लॉस कर जा रहा है, तो वह पोषक तत्व तो हमारा लॉस कैसे नहीं करे, वह कैसे हमारे मिट्टी में बचा हुआ रहे। जैसे आप जिंक ही यूज करते हैं, वह आप देखते हैं कि बह के चला जाता है, वो लीच हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, वह कैसे नहीं हो, उसका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे हो, तो ये सारी चीजें कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी बात हमने कहा जैविक गुण, तो जैविक गुण का मतलब होता है कि उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या कितनी अच्छी है। अब आज आपके मिट्टी में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्नोमाइसिस सबकी संख्या घटती जा रही है, यदि उसमें कार्बन है तो उसकी संख्या ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाएगी, और साथ ही साथ जो उस जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके लिए खाने का भी काम वो देगा, तो इसीलिए उसकी संख्या अच्छी होगी, तो ऐसी स्थिति में वह आपको ज्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन को बढ़ाइए यदि टिकाऊ खेती चाहते हैं, क्योंकि हमको इसी पीढ़ी की नहीं सोचना, आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मुहैया कर सके, हमारी खेती टिकाऊ बनी रहे, यह ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने में आपको ये जो हमने अजोला का नाम लिया, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जितना भी हरा पदार्थ है ये वायुमंडल से कार्बन को लेकर के ट्रैप करके ये सॉइल में डालने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफी फायदेमंद चीज है, तो इसका प्रयोग तो किसान भाई जरूर करें। दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग हम कैसे करें,
0: कैसे करें?
1: तो दूसरा इसका प्रयोग करने की बात ऐसा है कि अजोला का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो दो ढंग से धान के खेत में कर सकते हैं, एक तो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा डुअल क्रॉपिंग के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना लीजिए, और 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना करके, खास करके जहां पर पानी आपका रुकता है, बरसात के दिनों में तो वैसे भी खेत में पानी रहता है, कोई समस्या नहीं है, तो जब भी 3-4 हफ्ते के बाद आपको धान की रुपाई करनी है तो उसके पहले ही आप इसको क्यारी बना लीजिए, और क्यारी बना करके आप पानी है ही खेत में या बोर्डिंग के पास कीजिए, जहां पर पानी यदि घटने लगे तो आप बोर्डिंग से पानी दे सकें, वो क्यारी बना करके उसमें आप 5 से 8 किलो गोबर को 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोल करके उस गोबर के घोल को आप पूरे क्यारी में छिड़क दीजिए, और छिड़क करके उसमें आप कुछ अजोला डाल दीजिए, 4-5 किलो आप अजोला डाल दीजिए, वह अजोला जो छोटे क्यारी में हम बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो ले जा करके वहां पर डाल देंगे। अब क्या है कि 3 हफ्ते तक आपको पानी का स्तर 2-4 इंची बरकरार रखना पड़ेगा, वह 2-4 इंच पानी उसमें यदि बरकरार है, और SSP ये हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 से 2.5 ग्राम SSP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यह छिड़कते रहिए, जिसे बढ़वार और तेजी से हो, ये आप कर देंगे तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरा आपका भर जाएगा, और अजोला कम से कम एक क्यारी से लगभग 1 क्विंटल तो आपको अजोला मिल ही जाएगा, जो आपने 4-5 किलो डाला था, क्योंकि अजोला बढ़ता बड़ा तेजी से है, 2 से 5 दिन में ये अपने बायोमास को दूना कर लेता है, तो आपको तेजी से बढ़ जाएगा। अब उस अजोला को आप जैसे हरी खाद ढेंचा पलटते हैं उसी ढंग से आप खेत की जुताई के समय मिला दीजिए, तो यह तो एक तरीका है, लेकिन इसमें मात्रा ज्यादा चाहिए, इसमें 10 टन/हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है। और दूसरी जो बात हमने कहा डुअल क्रॉपिंग, मान लीजिए उतना अजोला आपके पास नहीं है तो धान को रोप दीजिए, रोप देने के बाद जब वो 1 हफ्ते का हो गया उसी समय आप सिर्फ 1 टन/हेक्टेयर के हिसाब से वह अजोला को डाल दीजिए, और धान में पानी वैसे भी चाहिए, धान में पानी आप 2-4 इंच पानी आप मेंटेन रखिए, और जो आप फास्फोरस डालते हैं, जो भी उस फसल के लिए डालते हैं, उसमें कम से कम 10-15-20 किलो ज्यादा SSP/हेक्टेयर के हिसाब से आप बढ़ा करके डाल दीजिए। अब क्या होगा

0: तीन हफ्ते में पूरा आपके खेत में कवर कर लेगा। उसके बाद पानी को थोड़ा कम कर दीजिए या अपने आप यह जो है क्या कहते हैं आपको मिट्टी पकड़ लेगा और मिट्टी में चला जाएगा। और इसकी खासियत क्या है अजोला का कि यह मिनरलाइजेशन बड़ा तेजी से होता है, इसका खनिजन बहुत तेजी से होगा, तो उसमें जो कुछ उस अजोला में पोषक तत्व है वो पौधे को मिलने लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आप डालते हैं किसी फसल में, वह नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा आपको आधी ही डालनी पड़ेगी जितनी आपने मात्रा डाली है। मान लीजिए एक धान आप यहाँ बिहार के कंडीशन में करते हैं तो 100 केजी आप उसमें डालते हैं नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस, 20 केजी पोटास, तो इसकी मात्रा को आधी कर दीजिए और अजोला जो है क्या कहते हैं आप डालते हैं तो आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, साथ ही साथ हमको उर्वरक पर होने वाला खर्चा भी बचेगा। यदि मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपया आपको खर्चा हो रहा है तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपया उसमें खर्चा होगा, यानी 2-2.5 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर की बचत भी होगी और मृदा का सेहत भी ठीक ठाक होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा ये है
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में, साथ ही अजोला कैसे फायदा दिलाता है धान की खेती में, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आप जैव उर्वरक जितना ज्यादा हो सके आप उपयोग करें और अजोला भी बिल्कुल फायदेमंद है आपकी खेती के लिए।
0: एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी बात दिमाग में आ गई। हमने कहा था कि यदि आप जो स्पाइरलम यूज करना चाहते हैं या पीएसबी यूज करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये यदि प्रयोग करना चाहे तो वो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें देखिए सीधी सी बात है, जो स्पाइरलम आप सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें यदि मिलाते हैं तो आपकी ज्यादा मात्रा उसमें डालनी पड़ती है। तो आपको सीधा करना क्या है कि आप ये जो मान लीजिए आपका कोई, क्योंकि उसमें भाई बिचड़ा बहुत वो करते हैं, बिहन लगाते हैं ना आप, तो उसमें जो है आप एक केजी मान लीजिए आपने लिया ये जो स्पाइरलम या पीएसबी ही, और उसको आप डुबा दीजिए और डुबा करके उसके जड़ को डुबा रहने दीजिए 10-15 मिनट और 10-15 मिनट के बाद प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई किसान भाई पीएसबी प्रयोग करना चाह रहे हैं या जो स्पाइरलम भी प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप पीएसबी से उपचारित करें, बाद में आप जो स्पाइरलम से करें, ये चीज उसका तरीका होगा। और यदि आप बीजीए का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीजीए का जो पपड़ी टाइप का वो आता है वह आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मैं इसकी भी मात्रा की बात थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता था
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: CIET NCERT presents ऑडियो बुक कौशल बोध, टेक्स्ट बुक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर ग्रेड 7,
4: पेज नंबर 25, प्रोजेक्ट 2, स्कूल हैबिटेट गार्डन। देयर इज अ QR कोड गिवन ऑन द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पेज फॉर एडिशनल रिसोर्सेज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। This project will help you learn about providing suitable conditions for groups of animals to live and thrive. You will create a habitat garden in your school to attract different groups of animals, birds, mammals, insects, reptiles, etc., by providing them with shelter, water, food, and space. As part of the project, you will be able to identify needs of animals, design and develop the habitat garden, make provisions for the needs of animals, maintain the habitat garden, observe the animals in the habitat garden. Figure 2.1 is given, creating a habitat for animals in the school. Some children are creating a habitat garden in this picture. Some of them

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए

डाइमेथोएट 30 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है, ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಋಷಿ.
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन और मैं हूं ईश्वर चंद्र. आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिससे कि सभी किसान भाइयों का सरोकार जरूर रहता है. जी हां, विषय है खेती की मशीनों का सही इस्तेमाल एवं देखभाल. और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि महाविद्यालय कनीय वैज्ञानिक हैं. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा एफएम ग्रीन में.
2: थैंक यू.
1: तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इनको हर सीजन में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, खेती की मशीनों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं,

0: एवं इस्तेमाल के उपरांत तो उनका देखभाल कैसे कर रहे हैं, तो इस विषय पर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि मशीनों का उपयोग करने के बाद उसे जैसे तैसे किसान बंधु छोड़ देते हैं। खेती में उपयोग होने वाले मशीनों को जबकि ज़्यादा देखभाल की जगह पानी से लगा ही रहता है। चूँकि इनमें अधिकतर पुर्जे घूमने वाले होते हैं, अतः इनका थोड़े थोड़े दिनों में साफ सफाई करते रहना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई मशीनों को किराए पर भी चलाते हैं, अतः थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल और ध्यान देने पर इन मशीनों को उम्र भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास जो भी मशीन है या जो भी वो मशीन किराए पर लेके आए हैं उसका सही इस्तेमाल करें, उसको ज़रूरत के हिसाब से उसका देखभाल करें। कुछ प्रमुख मशीनों जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा, उनमें हैं जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, रोटावेटर है, जीरो टिल फड़ी, सीड ड्रिल है, नैपसैक स्प्रेयर है और रिपर है। इन सभी मशीनों के बारे में मैं आज जानकारी देना चाहूँगा।
0: जी, तो किसान भाइयों, आपको इन मशीनों के बारे में जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही इसके इस्तेमाल के उपरांत इनके रख रखाव और इसमें जो मेंटेनेंस का जो एक पार्ट है वो आपको बताया जाएगा ताकि आप खुद से इसको मेंटेन कर पाएं। तो सबसे पहला जो हम मशीन की बात कर रहे हैं वो कल्टीवेटर है। डॉक्टर साहब, इस कल्टीवेटर का रख रखाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत होती है, ये ज़रूर हमारे किसान भाई को बताएँ।
1: किसान भाइयों, कल्टीवेटर में आमतौर से सभी नट और बोल्ट को जांच करना चाहिए जिससे कि वे हमेशा टाइट रहें। जब भी आप काम करने जाएं तो उस मशीन की सभी नट और बोल्ट को जांच कर लें। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हर एक दिन कार्य प्रारंभ करने से पहले ही इसकी जांच कर लें। दूसरा है, फाल होते हैं जैसे कि कल्टीवेटर में, तो उनके घिस जाने पर उसको पलट देना चाहिए, या अगर पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं तो उनको हम नए फाल से बदल लेने चाहिए। फिर एक दिन जैसे आपका काम खत्म हो गया तो प्रतिदिन कार्य समाप्त करने के बाद तथा यंत्र के उचित भंडारण हेतु यंत्र की पॉलिश की जानी चाहिए और जहाँ जहाँ सतह है उन पर ग्रीस लगाना चाहिए जिससे कि यंत्र में जंग न लगे। जहाँ जहाँ पर भी चांस है कि जंग लगने का है, इसको बनता है, वहाँ पे आप ग्रीस लगा दें। फिर ऑपरेटर को मशीन के विवरण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। जो भी मशीन उसको चला रहा है उसको उस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो टूटे हुए भागों या कुछ घिसे हुए भागों को पुनः कार्य प्रारंभ करने से पहले ही ठीक कर ले। अन्यथा होगा क्या कि जैसे ही वो खेत में लेके कल्टीवेटर को जाएगा तो 50 तरीके के प्रॉब्लम उसको आने लगेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि काम करने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दें। साथ ही साथ
0: जी, तो ये तो हो गई बात कि इनका रख रखाव कैसे करें। अब हम सावधानियों की तरफ आते हैं कि कल्टीवेटर के इस्तेमाल में, इनके प्रयोग के समय इनमें क्या क्या सावधानियां रखें।
1: किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई करते समय फालों के बीच की दूरी निश्चित रखें। अदरवाइज क्या होगा कि दो रो जो बनेगा वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यानी कि दूरी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और फालों की गहराई भी बराबर होनी चाहिए। मतलब फालों के बीच, दो फालों के बीच की दूरी और फालों की जो गहराई है वो बराबर होनी चाहिए हर जगह। खेती के जो लिए जो ज़रूरी है, आपको खेत का तैयारी तो करना ही होगा, तो वो करते समय लाइनों के बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि खेत बिना जुता हुआ रहे। मतलब लाइन जो बना रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा दूरी ना रहे, नहीं तो होगा क्या कि बीच का बहुत सारा इलाका जो है बिना जुता हुआ ही छूट जाएगा। फिर है खाद हुआ या उर्वरक, जब हम डालेंगे तो उस समय हमको क्या करना है कि यह ध्यान रखना है कि उर्वरक जो है सूखा हो और भुरभुरा हो, है ना। यदि गीला होगा तो बेकार हो जाएगा, यदि भुरभुरा ना हो तो उसको आपको सुखा लेना होगा पहले। उर्वरक डालने के लिए यंत्र में लगने वाले भाग में प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ यंत्र से अगर आप कोई निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि लाइनों में बोए हुए पौधे हम नष्ट ना करें। तो जब भी आप किसान बंधु कल्टीवेटर को यूज़ करें तो जो मैंने अभी आपको बताया है क्या क्या रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए मशीन से संबंधित, और जब भी कल्टीवेटर को यूज करें तो क्या क्या सावधानी, उसके अलावा भी कोई दूसरा मशीन को यूज कर रहे हो कल्टीवेटर से करने के बाद, तो हमको उस पर भी सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए।
0: जी, तो ये तो बात हो गई कल्टीवेटर के रख रखाव और सावधानियों की। अब हम आते हैं अगला जो मशीन है वो हैरो। तो डॉक्टर साहब, हैरो जो है उसका रख रखाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इनमें

0: सावधानियों की भी जरूरत है।
1: हैरों में दिए गए ग्रीस निपल द्वारा अच्छी तरह ग्रीस भर देना चाहिए, जिससे कि हैरो बिना किसी आवाज के चल सके, सुगमता के साथ चल सके। और ऐसा अगर होता है तो हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की भी कम जरूरत पड़ती है हैरो जब चलाते हैं उस समय। फिर पर्याप्त लुब्रिकेंट के लिए ग्रीस की इतनी मात्रा डालनी चाहिए कि बेयरिंग के दोनों तरफ से ग्रीस निकलने लगे। इससे भी हमको सुगमता से चलाने में हैरो को सुविधा होती है। हैरो के सभी नट बोल्ट को कसे हुए होने चाहिए तथा इस यंत्र के सभी टूटे हुए भागों की या तो आप मरम्मत कर लें या तो अगर किसी यूज के लायक न बच गए हों तो आप उसे बदल दें। जब यंत्र को प्रयोग न करना हो तो जंग लगने वाले भागों को पॉलिश करके ही सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो आप रखरखाव के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक सावधानियों की बात है हैरो चलाने के बाद, तो हैरो के तहों के घिस जाने पर सभी भागों को ठीक प्रकार से समायोजित करके कस देना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। फिर हैरो चलाते समय ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई भी वर्कर ट्रैक्टर और हैरो के बीच नहीं हो, अन्यथा इसलिए खेती में जब भी अगर आप हैरो चला रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ आपका हैरो है, तो बीच में किसी को भी जाने की अनुमति ना दें। किसी को जाना नहीं चाहिए ट्रैक्टर और हैरो के बीच में।
2: जी, तो ट्रैक्टर और हैरो जब भी आप चला रहे हो तो उसके बीच में ना जाएं। हम ये कल्टीवेटर और हैरो के बारे में हम जान चुके हैं, इनके रखरखाव और सावधानियों के बारे में। अब हम अगले मशीन की तरफ आते हैं और ये मशीन है रोटावेटर, काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन। तो इसके बारे में डॉक्टर बताएं हमारे किसान भाइयों को कि इनके रखरखाव पर या फिर सावधानियों पर किन किन तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: यदि रोटावेटर के ब्लेड घिस गए हों तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। रोटावेटर को हमेशा ट्रैक्टर से के कम स्पीड पर चलाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी ठीक से भुरभुरी हो जाए। ट्रैक्टर के ज़्यादा आरपीएम पर रोटावेटर को नहीं चलाना चाहिए। रोटावेटर के बगल में लगे हुए गहराई नियंत्रक पार्ट होता है, उसको ठीक तरीके से एडजस्ट करके ही चलाना चाहिए। मतलब ठीक तरीके से समायोजित कर लेना चाहिए ताकि वो जो डेप्थ है वो एक तरीके का मेंटेन रहे, नहीं तो अलग अलग डेप्थ पर रोटावेटर चला जाएगा। फिर है कि घिसे हुए रोटावेटर ब्लेड का हमेशा पूरा सेट बदलना चाहिए, नहीं कि सिर्फ एक ब्लेड बदल दिए, एक ही घिसा हुआ था, वैसा नहीं करना चाहिए। उसके ब्लेड का पूरा सेट, हमेशा पूरा सेट ही बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रोटावेटर ब्लेड पर लगने वाले विभिन्न बलों का संतुलन बिगड़ सकता है। होगा क्या कि एक आप नया ब्लेड लगाएंगे और शेष पुराना तीन चार जो भी है पुराना, वो पुराना ही रह जाएगा। तो विभिन्न बलों का संतुलन उसमें बिगड़ सकता है और जिसके कारण ट्रैक्टर को अधिक क्षमता से कार्य करना पड़ता है, जिस कारण आपके जो ट्रैक्टर का है उसका तेल का खपत जो है बढ़ जाएगा। गियर बॉक्स के तेल के स्तर की जांच समय समय पर किया जाता रहना चाहिए और रोटावेटर के शक्ति संचरण में प्रयुक्त चेन गियर को भी समय समय पर उचित लुब्रिकेंट का उपयोग करके रखना चाहिए, जिससे कि रोटावेटर पुर्जों की एज या आयु जो है उसके कार्य क्षमता जो है बढ़ सके और मशीन में आवाज़ ना आए। ठीक है, इसके अलावा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रैक्टर को पीटीओ से जब हम रोटावेटर को जोड़ते हैं तो उसमें एक सैफ्ट होता है। ठीक है, उस सैफ्ट में एक सियर बोल्ट लगा रहता है जो अधिक लोड आने पर टूट जाएगा। इसीलिए यह सियर बोल्ट ट्रैक्टर के पीटीओ सैफ्ट की सुरक्षा के लिए जो कि लगा हुआ है उसको पे आप लगातार ध्यान रखे रहें। और यदि यह सियर बोल्ट अधिक लोड पर भी नहीं टूटता है तो ट्रैक्टर की पीटीओ सैफ्ट के टूटने की संभावना हो जाती है। अतः कृषक भाइयों को चाहिए कि खेत में रोटावेटर को ले जाते समय ही एक अथवा एक से अधिक सियर बोल्ट अपने पास रखें। अपने पास खुद किसान के पास रहना चाहिए या जो ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा है उसके पास ही होना चाहिए, जिससे कि अगर खेत में काम करने के समय में अगर सियर बोल्ट टूट भी जाए तो भी उसे आसानी से बदला जा सके। अब बात करते हैं रोटावेटर में जब हम चलाएंगे तो हमको कौन कौन सी और सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। तो खेत में रोटावेटर को चलाने से पहले इसके ब्लेड्स को ठीक से पहले आप देख लें टाइट है या नहीं। रोटावेटर को शील्ड को लगभग नीचे की तरफ झुका लेना चाहिए, जिससे कि कंकड़ पत्थर या तेजी के साथ जो भी हो बाहर ना आ सकें। ठीक है, अन्यथा इन पत्थरों के द्वारा दूसरों को चोट लगने की भी संभावना रहती है। अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी बनाने के लिए खेत में नमी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मिट्टी जो है हम कितना भी रोटावेटर चला लें कभी भी भुरभुरी नहीं होगी। जहाँ तक संभव हो नमी खेत में काम करने लायक होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा रोटावेटर क्या करेगा, मिट्टी तो काटेगा लेकिन भुरभुरा नहीं कर पाएगा। एक बात और है कि रोटावेटर के गियर बॉक्स और साइड

0: के जो पावर सिस्टम में लुब्रिकेंट के लिए एक चिन्ह दिया रहता है, वो वहाँ तक लुब्रिकेंट भरा रहना चाहिए गियर बॉक्स में, अन्यथा आपका रोटावेटर को ट्रैक्टर के साथ जब आप चलाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है खेत में जुताई के समय।
1: जी, तो ये रोटावेटर की बात हुई, और इस रोटावेटर का प्रयोग आप अपनी खेती में मिट्टी को भुरभुरी करने में आप लाते हैं, तो इसमें कई तरह की समस्याएं बिना रख रखाव के हो सकती है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, डॉक्टर सनोज जी ने जो बातें बताई, उसको आप गंभीरता से लें, और उसमें ग्रीसिंग और उसमें जो प्रॉपर जो तेल वगैरह डालने की जो प्रक्रिया है वो आप बार बार करते रहें और जांच करते रहें कि ये पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है। तो अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मशीन जो आज के दिन में काफ़ी प्रयोग में है और इसको लेकर काफ़ी प्रमोशन भी किया जा रहा है कि आप इसको लाएं। जी, ये है जीरो टिल फर्टिसीड ड्रिल। जी हाँ, ये जीरो टिल जो मशीन है इससे आप अवगत हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके रख रखाव में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं?
0: किसान भाइयों, जीरो टिलेज मशीन सभी जानते हैं, वैसे जीरो टिल फर्टिसीड ड्रिल है जिसमें कि हम जीरो टिलेज के साथ साथ फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मशीन को जो भी किसान इस्तेमाल करें तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण रख रखाव बिंदुओं पर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि बक्से में खाद भरते समय खाद कम या अधिक करने वाली पत्ती के नीचे वाली पत्ती जो होती है, एक दूसरी पत्ती होती है, वो बंद होना चाहिए तथा चलते समय केवल इस पत्ती को ही खोलना चाहिए। अधिक समय तक बक्से में खाद नहीं रहना चाहिए तथा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रखी हुई खाद में नमी ना आए और खाद का छिड़काव ठीक ढंग से हो सके। उर्वरक को बक्से में भरते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि खाद में ढेले ना हो, अन्यथा आपका जो फर्टिलाइजर जो डालना है खेत में वो कभी नहीं जा पाएगा। चलाते समय खाद बक्स का ढक्कन बंद ही रखना चाहिए तथा साधारण गति से ही चलाना चाहिए। आपको अपने ट्रैक्टर को, जो कि लगभग 3 से 4.5 या 4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, हैंडल को जनरल गति से घुमाना चाहिए, जैसे कि 30 से 40 चक्कर प्रति मिनट, क्योंकि हैंडल के चक्कर कम या अधिक होने से खाद के एक साथ छिड़काव पर असर पड़ता है। एक सा छिड़काव जो है आप नहीं कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं। खाद छिड़कने के पश्चात यंत्र को अच्छी प्रकार से साफ करके रखना चाहिए और बक्से में खाद नहीं होना चाहिए जब भी आप स्टोर करने जाएंगे, क्योंकि खाद क्या है, केमिकल है, वो आपके जो लोहे का बना होता है उसके साथ रिएक्शन करेगा और आपका डब्बा को, जो आपका खाद का बक्सा है, उसको ख़राब करेगा। खाद के बक्से में घूमने वाले पट पर आने वाले फर्टिलाइजर का रेट जो होता है का नियंत्रण फिट पट अथवा पट्टी की सहायता से किया जाता है। इसलिए उचित दर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मशीन में इसका कम या अधिक करने का प्रावधान हो, और ये प्रावधान रहता है किसान भाइयों को इसको चलाने का एक बार प्रैक्टिकल में फील्ड एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। ट्रैक्टर आगे चलने की गति जो है, मशीन को आगे चलने की गति भी खाद के छिड़काव की दर को प्रभावित करती है। अगर आप ट्रैक्टर को बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो ऑब्वियस है कि उतना फर्टिलाइजर जो आप डालना चाहेंगे वो नहीं डाल पाएंगे, और ये ट्रैक्टर की गति अधिक होगी तो एक सेटिंग पर मशीन द्वारा प्रति हेक्टेयर ऑब्वियस है कि कम खाद पड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप ट्रैक्टर की गति कम कर लेंगे तो क्या होगा, पट की पूर्व गति और बक्से से आने वाले खाद की दर वही रहने पर भी खेत में अधिक उर्वरक छिड़का जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैक्टर का स्पीड हमको 3 से 4 या बहुत से बहुत 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। अब जीरो टिलेज जो मशीन है इसका रख रखाव के बारे में मैंने अभी बात किया, कुछ सावधानियों पर भी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बीज भर खाद के बक्से हुए, खाद वाली सैफ्ट हुआ, खाद मापने वाली पत्ती है, इन सभी को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए जब भी आप खेत में किसी खेत में जा रहे हैं ये फर्टिसीड ड्रिल का यूज करने। बीज व खाद वाले सैफ्टों को फ्री घुमाओ देख लेना चाहिए, मतलब एक बार बिना बीज या खाद डाले वो आप देख लें कि वो फ्री में घूमता है कि नहीं, हाथ से चला करके। सभी चलने वाले भागों में ग्रीस तेल डाल देना चाहिए। प्लास्टिक की नलियां जब हम लगाते हैं जिससे कि बीज गिरता है या फर्टिलाइजर गिरता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नली में जो भी आपने यूज किया उसमें अधिक मोड़ ना आए। अगर ज़्यादा मोड़ होगा तो आपका पता चलेगा कि वो खेत में ना गिर करके बीज कहाँ रह गया, पाइप में ही रह गया, या फर्टिलाइजर आपका खेत में ना जाके वो पाइप में ही रह जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके वो सीधा रखना है पाइप को। मशीन के फाल हैं फसल के अनुसार उचित दूरी पर लगाने चाहिए। इसके लिए फालों में

0: लोहे के क्लैंप लगे होते हैं जिनको आप अपने हाथों से खिसका सकते हैं और इससे दो फालों के बीच की दूरी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बक्से में बीज व खाद डालकर एक बार समायोजन कर लेना चाहिए। समायोजन मतलब अगर खेत में हमको 100 kg प्रति हेक्टेयर के दर से कोई चीज़ डालना है तो हमको उस मशीन को अपने खेत से बाहर ही उसको समायोजित कर लेना है कि वो खेत में जब चलेगा एक पार्टिकुलर स्पीड पे तो 100 kg ही गिरेगा, ठीक है। अच्छे अंकुरण के लिए बीज एवं खाद को उचित नमी में ठीक अंतर व गहराई पर डालना अति आवश्यक है। अतः फालों की गहराई फसल के अनुसार कम या अधिक करने के बीच जो उसमें प्रोविजन है उसको भी आपको ध्यान में रखना है और फसल के अनुसार आप जो गहराई है उसको मेंटेन करें। खाद और बीज की मात्रा कम या अधिक करने वाले लीवर को आसानी से चलना चाहिए। उचित खाद और बीज की मात्रा पर समायोजन करने के बाद इसके नट को एक बार कस लेना चाहिए ताकि बुवाई के समय बीज और खाद जो है सारे खेत में एक तरीके से एक रेट पर पड़े, पूरा यूनिफॉर्मली बिजाई हो सके।
1: तो किसान भाइयों, जीरो टिल के बाद हम बात करते हैं नैपसेक स्प्रेयर के बारे में। ये नैपसेक स्प्रेयर जो है वो कई किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं छिड़काव के लिए, तो इसमें डॉक्टर साहब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई से लेकर इसका जो रख रखाव है और सावधानियां जो है वो जरूर हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर होता है, आजकल पावर चालित नैपसेक स्प्रेयर मार्केट में मिलता है। कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चला लेना चाहिए ताकि इसके अंदर जितने भी केमिकल हैं वो सब बाहर आ जाएं और ये अच्छे तरीके से साफ हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी नैपसेक स्प्रेयर के रख रखाव के लिए। फिर छिड़काव यंत्र को बाहर से भी साफ रखना चाहिए। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल इत्यादि ये सब को नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो कल को क्या होगा, अगर गलती से कोई भी धूल का पार्टिकल आपके मशीन के अंदर चला गया तो आप जब कल को स्प्रेयर यूज करेंगे तो वो धूल का पार्टिकल आपके उसी नोजल से निकलना चाहेगा और आपके नोजल को ख़राब कर देगा। दवा का घोल हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, कभी भी ऐसा ना करें कि बिना छाने ही दवा का घोल आपने स्प्रेयर में डाल दिया हो। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस जैसा ज़रूरत हो आप लगा कर रखें। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका होता है तो उसका स्पार्क प्लग को आप देखें, कार्बोरेटर को देखें और सभी पाइपलाइनों को एक बार साफ कर लें। इंजन के सिलेंडर को साफ रखना चाहिए और उसमें अगर पेट्रोल इंजन ही बेसिकली यूज होता है तो उसमें आप फिन्स देखेंगे तो उनको भी आप साफ रखें ताकि आपका जो इंजन जब चले तो उसे भी उसे हम लोग चूँकि एयर कूलिंग सिस्टम यूज होता है वो ठंडा होता रहे। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो उसे कपड़े अथवा रैक्सिन के बने कवर से ढक कर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम नैपसेक स्प्रेयर के चलाने में सावधानियों पर बात करें तो इनमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि रसायनों का छिड़काव प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, यानी कि सुबह में करें या तो शाम में करें, जब आप देखिए कि हवा मंद गति से चलती है उस समय करना है, अन्यथा रसायन अपने स्थान पर न गिरकर दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा और आपका पूरा पैसा भी बर्बाद होगा और जिसके लिए आप यूज कर रहे थे पौधे पर गिराने के लिए दवा वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही यदि छिड़काव बहती हवा में ही करना पड़े तो काम करने वाला व्यक्ति क्या करे, हवा की उस दिशा में चलना चाहिए जिसपे दवा जो है हवा के साथ फसल पर गिरे, न कि उस व्यक्ति के ऊपर, यानी कि हवा के विरुद्ध दिशा में आपको नहीं चलना है, ठीक है। और जो भी आदमी छिड़काव कर रहा है तो अपने नाक मुंह आदि ये सब ढक के कपड़े से ढक कर ही छिड़काव करे। उचित ये होगा कि रसायनों से सुरक्षा हेतु उपलब्ध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि दस्ताने हैं, मास्क है, चश्मा है, इन सबों का यूज करें। जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधित सुझावों को ध्यान में रखकर उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। फिर है छिड़काव समाप्ति के पश्चात अपने हाथ और चेहरे को पहले साफ पानी से और उसके बाद साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि कुछ रसायनों की साबुन से प्रतिक्रिया होने से शरीर में जलने की संभावना रहती है। इसलिए किसान बंधु ध्यान रखें कि पहले साफ पानी से अपना चेहरा हाथ वगैरह धोएं, उसके बाद ही साबुन को यूज करें। विभिन्न प्रकार के रबर या फाइबर के वाशर सदैव अपने पास रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम खेत में अभी छिड़काव करने गए और वाशर खराब हो गया तो अब मार्केट जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अलग अलग साइज के रबर के या फाइबर के वाशर आपके पास होने चाहिए, जिस भाग से रसायन निकलता हुआ दिखे वहाँ का वाशर को तुरंत ही बदल देना चाहिए। तो
1: और एक

0: है कि कहीं भी आप मुंह से ढककर इन यंत्रों की जो बंद नलियों को खोलने का कोशिश करें तो ये बहुत ही गलत होगा। कभी भी ऐसा ना करें। इन सभी बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखें तो हमें आशा है कि किसान बंधु अपना जो पावर चालित नैपसैक स्प्रेयर है इसे आसानी से अपने खेती के समय यूज कर सकेंगे।
1: जी, तो किसान भाई नैपसैक स्प्रेयर के बारे में आप जाना कि कैसे आप सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करें और इनका रख रखाव करें। अब हम आते हैं जो मशीन है रीपर। तो ये रीपर जिससे आप कटनी करते हैं, कटनी यंत्र है, तो इसको आपको कैसे रख रखाव करना है, कैसे सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम आइए जानते हैं।
0: किसान बंधुओं को चाहिए कि यदि रीपर से कटाई एक जैसी ना हो रही हो तो ये उनको देखना है कि लेजर प्लेट कहीं से टूटा तो नहीं है, और यदि ऐसा हो तो उसको बदल लेना चाहिए। लेवल प्लेट एक होता है। यंत्र को चलाते समय सभी नट बोल्ट अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए और दोनों जो कन्वेयर बेल्ट लगे रहते हैं और स्टार व्हील आसानी के साथ बिना रिकॉर्ड के चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको रीपर को मेंटेनेंस करना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस कराना होगा, कहीं जाकर बनवाना होगा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो, और ये खेती में उपयोग होने लायक नहीं रहेगा मशीन तो। और अगर आपने रीपर को यूज किया है तो आपको कुछ कुछ सावधानियों पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि यंत्र के सभी घूमने वाले भागों में अच्छी प्रकार से ग्रीस अथवा तेल डालते रहना चाहिए। ये मैंने अभी आपको जो भी मशीनों के बारे में बताया उन सभी में बताया, जो भी घूमने वाले भाग हैं वहाँ पे आपको ग्रीसिंग या ऑयलिंग जरूरत के हिसाब से करते रहना है, ठीक है। फिर छुरों के धार को समय समय पर तेज करते रहना चाहिए, नहीं तो ये काटाई नहीं कर पाएगा। खेत में कार्य समाप्ति के पश्चात कटर बार की सफाई करना बहुत ही जरूरी है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो जंग लगने से भी बचा पाएंगे। रीपर का प्रयोग उन्हीं फसलों की कटाई के लिए किया जाना है जिनके बीच की कोई दूसरी फसल ना बोई गई हो। अगर आप कोई फसल काटना चाहते हैं और बीच में एक दूसरा फसल भी लगाए हैं तो वैसे केस में आप रीपर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर है कि यंत्र को काम करते समय इसके नज़दीक किसी भी मनुष्य को नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा मनुष्य के कपड़ों के ढीले होने के कारण अथवा नशा होने के कारण वह मशीन के साथ फंस सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इन प्रमुख बातों को अगर किसान बंधु ध्यान में रखें तो हमें आशा है कि उनके पास जो खेती की मशीनें हैं उनका वो सही इस्तेमाल कर सकेंगे और ज़रूरत के हिसाब से उस मशीन की देखभाल भी कर सकेंगे, ताकि जब भी उनको खेत में ले जाने की ज़रूरत पड़े उनकी मशीनें कभी भी उन्हें धोखा न दे, वो अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद
1: जी। तो ये आज जानकारी आप किसान भाइयों को डॉक्टर सनोज कुमार जी दे रहे थे कि खेती की जो खेती में प्रयोग होने वाले जो मशीन है उनका आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें और किन किन बातों का आप सावधानियों का ख्याल रखें। तो इसमें कुछ और बातें हैं मैं जोड़ देता हूँ किसान भाइयों, कि कृषि यंत्रों का जब आप प्रयोग कर रहे हों तो ऐसे में आप कभी भी ढीले यंत्रों का या फिर ऐसे जो कि पूरी अच्छी तरीके से मरम्मत नहीं है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आप जरूर इसको चेक करते रहें समय समय पर। साथ ही एक अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि किसी भी हालत में नशे की स्थिति में, जब कोई नशे की स्थिति में इसका संचालन न करे। हालांकि नशा ऐसे ही बुरी चीज है लेकिन किन्हीं ही परिस्थितियों में किसी भी कृषि यंत्रों का प्रयोग नशे की स्थिति में न करें, इससे आपको जानलेवा हो सकता है और इसमें कई दुर्घटनाएं सामने देखने को मिली है। डॉक्टर साहब, एक चलते चलते हम और इसमें जोड़ देना चाहेंगे कि ऐसे कृषि यंत्र जिनका प्रयोग साल में एक ही बार थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद जब किसान भाई उसे प्रयोग के लिए जाते हैं तो उसमें कई परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो आपने उनका मेंटेनेंस के लिए तो आपने बताया, इनकी जो रख रखाव करते हैं घर में रखते हैं या फिर खलिहान में रखते हैं तो उचित स्थान भी बताएं कि इन मशीनों को अगर स्टोर करना हो तो क्या खुले में रखना उचित है या कहीं ऐसे शेड वाले जगह पे रखें, इनको किस परिस्थितियों में रखना चाहिए ताकि अगले साल जो है वो इसका संचालन में दिक्कत ना हो।
0: किसान भाइयों को चाहिए कि एक मशीन का जैसे इस्तेमाल हो गया उसको अभी आपको स्टोर करना है तो अपने शेड में रखें और कुछ ऊंचे जगह पे रखें जी। जो कि जहाँ पे अगर कुछ बारिश आता हो तो बारिश का पानी वहाँ पे ना आ सके ऐसा। उसके बाद उसको ऊपर ढक के रखें और ढकने से पहले उसका अच्छे तरीके से ग्रीसिंग वार्निशिंग ये सब कर लें, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर लें, कोई केमिकल है तो उस मशीन से निकाल लें। अगर कहीं कोई जंग लगने की समस्या दिखती है तो ऐसा ना सोचें कि वहाँ पे हम ग्रीसिंग ना करें, उसको करके रखें, अच्छे तरीके से ढक लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला

0: बोला विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
0: जी।
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
0: जी।
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।

0: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक

0: कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
6: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
7: जी, हम तैयार।

0: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
1: वो क्या साहब?
0: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह है नंबर वन और यह है नंबर टू।
1: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
2: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
2: जय महाकाली, आयो गोरखाली। जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए।

0: वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब

मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। We'll be right back.

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। मैं भी मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
1: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल सकता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए

0: ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बैसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है।
0: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोलैसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम, अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
0: जी।
1: तो मैम, किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा, उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे छोटे उसको उसमें डाल दो

0: और आप आधे घंटे तो उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंद नाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडी बर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबो ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल दें कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हैं, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का

0: इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभकारी में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की।

0: डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
1: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियाँ आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
2: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
1: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
0: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे?
1: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
2: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
0: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
0: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
1: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
0: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
1: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो 1000 घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
0: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
1: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
2: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह

0: का जाल बहुत गहरा होता है, इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे। पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है, ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती है। और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत, यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है, अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
1: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा। अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया, यही तो होता है। और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें, हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा। अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं? कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
0: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में।

0: जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओ, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
1: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत।

0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
2: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
1: यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
0: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं, इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तक तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहां बैठी

0: एनएम बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
1: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
2: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
0: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
2: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
0: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
2: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करे।
0: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
1: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
0: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
1: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
0: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
1: पर तुमने पूछा ना?
0: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
1: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ

0: में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
1: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
2: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
0: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
1: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, एएनएम या डॉक्टर से पूछें कि एचपीवी वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
2: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
0: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
1: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
2: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
0: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
2: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है? अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
0: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
1: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दो, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा एएनएम से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चार, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। पांच, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छह, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सात, जो

0: सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत हैं। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही दो तरफ की होती है। व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल। और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते। उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर। तभी संदेश जीवित रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
2: सही कहा। पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए। दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं। सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहाँ पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावना है, क्या चुनौतियां आती है, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: आप है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
4: बेबी कॉर्न का काफी महत्व है। आज हम इस पे काफी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे

0: के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफी ज्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
0: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है, और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कढ़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा, जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं, तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं, मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोच

0: आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थीरम है, थीरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75:60:20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 केजी नाइट्रोजन एवं 20 केजी पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए, मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए, डिटैचिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई पिंक बोरर तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है क्योंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है, और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम तो बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है, और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुँचाएँ वहाँ पर भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवार की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए, और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरते और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डाले। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर

पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 सीसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 सीसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करेंगे खरीफ मौसम की सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या एवं प्रबंधन। और इस विषय को आज लेकर हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर भूपल नामदेव हथजाड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले

0: हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये निमेटोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: नमस्ते सभी को। निमेटोड एक प्रकार का राउंडवर्म है जो मिट्टी, पानी और पौधों सहित वातावरण में पाया जाता है। वे छोटे और पतले हैं जो बेलनाकार शरीर के होते हैं। सूत्रकृमि या सूत्रकृमि इसको हिंदी में बोलते हैं और निमेटोड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो निमेटोड अविश्वसनीय रूप से विविध है और पृथ्वी पर लगभग हर परिस्थिति तंत्र में पाए जा सकते हैं। कुछ निमेटोड फायदेमंद होते हैं, जैसे कि वो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का विघटित करने में मदद करता है, जबकि अन्य हानिकारक होते हैं और फसलों, जानवरों और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। निमेटोड परजीवी हो सकते हैं, पौधों की जड़ों या जानवरों के ऊतकों पर भोजन कर सकते हैं, या मुक्त रहने वाले मिट्टी या पानी में रह सकते हैं और बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों पर भोजन कर सकते हैं। निमेटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। वे पौधों की जड़ों पर भोजन करते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है, जिसके कारण फसलों की पैदावार में कमी आती है। निमेटोड मिट्टी में पाए जाते हैं और यह कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।
0: जी, अभी ये जो सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड, ये फसलों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: निमेटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो पौधों के उनकी जड़ों, तनों और पत्तियों खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं, जिनमें अवरुद्ध विकास, पत्तियों का पीला पड़ना, मुरझाना और कम उपज शामिल है। निमेटोड सब्जियों, फलों, अनाज और दालों सहित सभी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ फसलें जो विशेष रूप से निमेटोड क्षति के लिए अति संवेदनशील होती है, उनमें टमाटर, आलू, भिंडी, खीरे, तरबूज, केले, खट्टे फल, अंगूर, चावल, गेहूं और छोले शामिल हैं।
0: बिहार राज्य की हम बात करें तो खरीफ मौसम में कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन यहाँ किया जा सकता है?
1: जैसा कि जानते हैं कि बिहार में व्यापक जलवायु परिवर्तन मौजूद है और इस क्षेत्र में वर्षा 900 से 1700 मिलीमीटर तक होती है। यह राज्य देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है। लगभग सभी सब्जी फसलों जैसे बैंगन, बेल, मिर्च, तंबाकू, टमाटर, कद्दू, तरबूज, खीरा, ब्रोकोली, भिंडी और अन्य जड़ों फसलें राज्य में व्यापक रूप से सफलतापूर्वक उगाई जाती है।
0: जी, खरीफ सब्जियों में कौन कौन से सूत्रकृमि नुकसान करते हैं और उसके लक्षण कैसे पता करेंगे?
1: वैसे तो बहुत सारी निमेटोड से जो इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जिसमें से मोर वैल्यूएबल है जो कि सब्जियों का जड़ गांठ रोग, जिसको बोलते हैं मूल ग्रंथि सूत्रकृमि। इसका साइंटिफिक नेम है मेलाडोगाइन प्रजातिया। ये जो जड़ों पर विभिन्न आकार के गांठे बन जाना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का बौना रह जाना, पौधों का मुरझाना, पौधों को आसानी से उखड़ जाना, उत्पादन में प्रतिकूल गुणात्मक व मात्रात्मक प्रभाव इत्यादि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरा निमेटोड है गुर्दाकार सूत्रकृमि रोग, जिसको बोलते हैं रेनिफॉर्म सूत्रकृमि। ये आश्रयी फसलें होती है उसकी उड़द, लोबिया, मूंग, चना, मटर, टमाटर, बैंगन, अंगूर, पपीता, अरंडी आदि। पौधों की बढ़वार रुकना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का छोटा रह जाना, पौधों का मुरझाना, जड़ों पर छोटे छोटे भूरे रंग के चकते बन जाना, उत्पादन में प्रतिकूल गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव एवं राइजोबियम जीवाणु पर प्रतिकूल असर पड़ना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और तीसरा है जड़ विकसित रोग, जिसको बोलते हैं जड़ विकसित सूत्रकृमि प्रोटाइलेंकस प्रजाति। पौधों का बढ़वार में कमी, पत्तियों का पीला पड़ना, जड़ों पर काले एवं भूरे रंग के चकते का बढ़ना एवं पूर्णतः क्षत विक्षत हो जाना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं।
0: जी, सूत्रकृमि के कारण होने वाले सामान्य लक्षण क्या हैं उनके बारे में?
1: जैसा कि निमाटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यह दूषित मिट्टी, पानी या पौधों के माध्यम से

0: फैलते हैं। निमाटोड मिट्टी में पाए जाते हैं और कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जिससे इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। गेहूँ, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, परवल और धान को विशेष रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर, किन्नू और अंगूर जैसे अन्य फलों वाली फसलों में भी निमाटोड पाया जाता है। निमाटोड के कारण जड़गांठ रोग, पुट्टी रोग, नींबू मुरझा रोग, जड़ सड़न रोग और जड़ फफोला रोग उत्पन्न होते हैं। निमाटोड पौधों की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। निमाटोड पौधों की जड़ों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों का मिट्टी से उर्वरक पानी या पोषक तत्वों की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। निमाटोड के कारण जड़ों में गांठ बन जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधा नष्ट हो जाता है। जब पौधों में निमाटोड का प्रकोप होता है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे मुरझा कर सूखने लगते हैं। निमाटोड के कारण प्रतिवर्ष 60-80% तक फसल उत्पादन में नुकसान होता है।
1: जी, सब्जियों में जड़गांठ रोग से कैसे बचाव करें?
0: जैसे कि जड़गांठ रोग है, अगर उसको उससे अगर हमें बचाव करना है तो सबसे पहले हमें प्रत्यारोपित सब्जियों की पौधशाला को गर्मियों में 15-20 दिन तक पतली पारदर्शक पॉलीथीन से बुआई पूर्व तक ढक देना चाहिए। और पौधशाला यानी जिससे हमें नर्सरी बोलते हैं, पौधशाला में कार्बोफ्यूरॉन 0.3 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुवाई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। रोगग्रस्त खेतों में नीम, करंज, महुआ आदि की खली जिसको हम लोग केक बोलते हैं, 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाए। गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में दो से तीन गहरी जुताई करें। रोगरोधी किस्म जैसे टमाटर की है कर्नाटक हाइब्रिड, सिलेक्शन 120, हिसार ललित, रोनीत और मिर्च के है ज्वाला, गुच्छेदार, बैंगन की वैरायटी है विजय, ब्लैक ब्यूटी, कच्चा बैंगन, भिंडी IC 97 73 और IC 11 72 97 की बुवाई करनी चाहिए।
1: जी, इसके बाद गुर्दाकार सूत्रकृमि के बारे में आपने बताया था, तो इस रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे किसान भाई?
0: हाँ, अगर हमें गुर्दाकार सूत्रकृमि रोगी का प्रबंधन करना है तो उसके लिए 10% की मात्रा से नीम बीज गिरी अथवा कार्बोसल्फोन 3G दवा से 3% सक्रिय तत्व के हिसाब से बीजोपचार करें। रोगग्रस्त खेतों में नीम, करंज, महुआ आदि की खली 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए और गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में 2-3 गहरी जुताई करें।
1: जी,
0: रोग रोधक किस्मों का प्रयोग करें, जैसे लोबिया की है C-152, V-16 और टमाटर में है सिलेक्शन 120, मूंग की फसल है ML-62, ML-70, ML-80 और मटर की है DDR-39, DDR-40।
1: जी, जर विच्छेद रोग से फसल का बचाव कैसे करना चाहिए?
0: इसके लिए भी हम नीम, करंज, महुआ, सरसों आदि की खली का 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की मात्रा में प्रयोग करें। गर्मियों में 2-3 गहरी जुताई करें और कार्बोफ्यूरॉन कणों का 1-1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
1: फसलों में सूत्रकृमि का अगर जैविक नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे?
0: कुछ पौधों के अर्क जैसे नीम का तेल और लहसुन में नेमाटिसाइडल गुण पाए जाते हैं, जिसका उपयोग फसलों से नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
1: जी।
0: फसलों के चारों ओर आवरण फसलें जैसे कि गेंदा और सरसों की मिट्टी में नेमाटोड आबादी को कम करने के लिए लगाया जाता है। फसल चक्र अपनाना चाहिए, यह निमाटोड के जीवन चक्र को बाधित कर देता है और उनके खाद्य स्रोत को कम करते निमाटोड आबादी को कम करने में मदद कर सकता है। निमाटोड को नियंत्रित करने के लिए कुछ बैक्टीरिया, कवक और वायरस का भी उपयोग किया जाता है। फसलों में सूत्रकृमि को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और जुताई के 1 सप्ताह बाद जमीन में

0: फिर से जुताई कर 10 क्विंटल नीम की खली प्रति एकड़ उपयोग करने के बाद ही फसल बोनी चाहिए। नीम की खाद का उपयोग उपज में 40% तक की वृद्धि करता है, फूलों में विकास में वृद्धि करता है, फलों की संख्या में वृद्धि करता है और फलों को अधिक सुखद और चमकदार बनाता है और साथ में फलों का आकार बड़ा हो जाता है। 1 से 2 साल के पौधों में 1 किलो और 3 से 5 साल के पौधों में 2 से 3 किलो पौधों की जड़ों के पास एक ट्रे बनाकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दे और पानी दे। इसके अलावा घुलनशील नीम का तेल ड्रिप द्वारा भी डाला जा सकता है
1: जी। और अगर रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे फसलों में सूत्रकृमि का?
0: उसके लिए हम लोग एक बायर कंपनी का जो वेल्लम प्राइम है, जिसको बोलते हैं कि फ्लूपायरम, 34.48% में आता है SC, दवा का प्रयोग 40 से 425 मिली प्रति 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ ड्रेंचिंग या ड्रिप के माध्यम से उपयोग करें। इस दवा का उपयोग चिपके एजेंट के साथ करें। यह दवा जड़गांठ रोग यानी रूट नॉट निमेटोड का तेज प्रभावी और लंबी अवधि तक नियंत्रित करती।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज खरीफ मौसम की सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या एवं प्रबंधन के बारे में, और आशा करते हैं कि आज के इस वार्ता से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये जो सब्जियों में सूत्रकृमि आपको दिखते हैं, उनके लक्षण, रोग के लक्षण और साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो

उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं, या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं, या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती हैं और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है, और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन
फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं।

कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं। और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं, और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय जरूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं, तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है। तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें, और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और

0: भी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखे खूब ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। लेडीज फर्स्ट। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है सोयाबीन की। हम बात करें सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुवाई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है। इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
1: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीच प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए, तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार एक बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में एक बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इसे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब 1 किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में

0: গৌরব মোনেটা MSCS 13, ম্যাক্স 58, পুসা 16, পুসা 20, পুসা 24 কিস্মে ধীরে ধীরে প্রচলন মে আই। বিহার কে কিষানো কে লিয়ে জো কিস্ম জো অধিক মহত্বপূর্ণ হ্যায় উসকে বারে মে মে এক এক করকে বতা রহা হুঁ। এক পহলি কিস্ম হ্যায় পিকে 472, ইয়ে মোটে পিলে দানে ওয়ালে মধ্যম উঁচাই কে কিস্ম কা পৌধা সিধা হতা হ্যায়। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजाइक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS335, यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम, दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरण एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियाँ काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की एक किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोग तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना, कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये सस्क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी, भारी, उपजाऊ, अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े, रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि

भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 ग्राम किलोग्राम बीज का 24 आवर्स 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें, तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुक्त तत्व नेत्रजन फॉस्फोरस पोटास पोषण तत्व जैसे सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता तांबा लोहा ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बकर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन 60 किलो फास्फोरस 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्यूलोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर ट्रैक्टर बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद

0: बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रवाहित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है
1: जी। तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएँ, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है, तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोप्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग, वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्विनोलोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोवास 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। एक इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनेजिम 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 PPM 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा, वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थायमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है
1: जी। तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस

रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे। आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर और भी बातें होंगी। फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: पढ़ाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी

दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये

0: दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा।
1: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं एक कारण और भी है, अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओ ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक

0: वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
8: माँ, माँ, लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
9: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
9: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का, तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
8: हाँ माँ।
6: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा।

0: इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
0: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
3: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
3: अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोहो, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
3: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
3: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
4: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
5: जी साहब, जी साहब।
4: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
5: चलो साथियों।
3: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त।

0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज ये बातें करने वाले हैं हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। और आप सभी को पता है किसान भाई, आप सभी चाहते हैं कि आपके संपूर्ण क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार हो। तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आप सभी के पास एक अच्छा प्रबंधन नहीं उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज इनसे हम बातें करेंगे इसी प्रबंधन के बारे में, यानी कि हमारा जो आज का जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। तो सबसे पहले तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM है क्या?
2: सबसे पहले बिहार के किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आज का जो टॉपिक है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। तो जो पोषक तत्व हम दो या दो से अधिक सोर्स से देते हैं, तो वहाँ पर हम उसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं। जैसे हम पोषक तत्व जो है उसकी पूर्ति के लिए, फसल में पूर्ति के लिए हम नीम के खली का प्रयोग करते हैं, भूरी खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, केक्स का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो हम किसी दो सोर्स, जो हमारी सोर्स हैं, जो उसके दो से अधिक को हम जब एक साथ मिला करके प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी जो उपयोग क्षमता है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो मृदा का जो भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल अवस्था है, वो बेटर होता है। अल्टीमेटली जो क्या होता है, जो मृदा स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो दो से अधिक सोर्स को हम एक साथ जब मिला कर देते हैं, तो उसको हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जब दो पोषक तत्वों को मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है।
2: सोर्स जो है,
1: हाँ, सोर्स उन्हें मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जिससे कि फसलों को और भी ज्यादा पोषण मिलता है।

0: सर, अब ये बात हो गई कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, और इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपसे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्यों किया जाए।
1: जैसा कि आज की जो हमारी मृदा स्वास्थ्य है वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। अगर हम बात करें 1950 की, तो हमारे जो स्वास्थ्य मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी वो 1.2% थी, लेकिन करंट में क्या है जो है ये मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो घट करके 0.3% या उससे कम रह गई है। इसका वजह क्या है कि हम दिन पर दिन उच्च उत्पादन वाली फसलों को लेते गए, लेकिन हम उसमें जो खाद का प्रयोग है उसको कम करते गए, अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करते गए। तो ये जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक स्रोत वाले खाद हैं, जैसे हमारा हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरित शैवाल है, अजोला है, फसल अवशेष है, केक्स है, जो खलियां हैं, इनका भी प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो मृदा की जो सस्टेनेबिलिटी है, मृदा की जो लंबी अवधि तक उत्पादन करने की क्षमता है वो बनी रहे और मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
0: सर, आपने यहाँ पर अभी हरी खाद के बारे में कहा, तो हम जानना चाहेंगे कि हरी खाद किस तरीके से किसानों की मदद कर सकता है इस प्रबंधन में, या फिर इसका जो महत्व है वो किस तरीके से यहाँ किसानों को।
1: जी हाँ, जो हरी खाद है, हरी खाद देखा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रदान करने का एक सोर्स है, और हरी खाद के द्वारा हम सबसे कम खर्च में एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हरी खाद में हमें जो हरी खाद की फसलें हैं, जैसे आपका ढैंचा है, सनई है, मूंग है, और भी जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के लिए हमें करना क्या होता है कि फसल की बुआई से 2 महीना पहले, जो हमारा मुख्य फसल है धान की हम बुआई करने जा रहे हैं या रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 महीना पहले हमें हरी खाद को जो है खेत में बुआई करना होता है। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं ढैंचा की, क्योंकि ढैंचा जो है एक बहुत ऐसी फसल है जो दलहनी होते हुए जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो जलमग्न कंडीशन है, फ्लडिंग कंडीशन है, वहाँ पर भी ढैंचा आसानी से हरी खाद के रूप में हो जाता है। और जो है जो इसको हम करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, और सिंपल जो है जुताई करके बरसात का जो फर्स्ट बार पानी मिलता है या हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, तो हम 15 मई के आसपास ही हम जो है इसकी खेतों में बुआई करते हैं। या हमारा जो गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई समाप्त हो जाए, खेत हमारा खाली होता है, तुरंत हम हल्का सिंचाई करके, या अगर बरसात हो जाती है किसी कारणवश, तो हम तुरंत उसी नमी पर ढैंचा की बुआई करते हैं। और हमें ध्यान देना होता है कि जब ढैंचा में जो है फूल आने की स्थिति होती है, या 50 से 55 दिन का जब हो जाता है, एक अच्छी बढ़वार हो जाती है 5 से 6 फीट की, उसी समय हम मिट्टी पलटने वाले हल से, चाहे वो ट्रैक्टर ड्रॉन हो या बुलक ड्रॉन हो, मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसको जमीन में मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे जो है 15 से 20 दिनों में ये ढांचा जो है जमीन में धीरे धीरे गल सड़ जाता है, और अच्छी तरह सड़ने के बाद, अर्थात पलटने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही हमें धान की रोपाई करनी होती है। क्योंकि अगर हम ढांचा को जमीन में अच्छे से मिला देते हैं और तुरंत अगर धान की बुआई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ढांचा हम पलट दिए होते हैं तो वो जमीन से जो है थोड़ा सा 15 दिन तक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए वो जमीन से नाइट्रोजन लेता है, तो फसल का बढ़वार रुक जाता है और कभी कभी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम इसको लगभग जब ढैंचा हमारा 45 से 50 दिन का होता है, उस समय हम इसको जमीन में मिला देते हैं, और जमीन में मिलाने के बाद इसके 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से उसमें वो सड़ गल जाए, और जमीन में मिलाने के कम से कम 15 से 18 दिन बाद ही, या जो कहिए 15 से 20 दिन बाद ही हमको मुख्य फसल धान की रोपाई करनी होती है। और देखा जाए तो जो ढैंचा है, ढैंचा 2 प्रकार का है, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सिस्पनिया रोस्टाटा और सिस्पनिया एक्युलेटा। जो सिस्पनिया रोस्टाटा है, ढैंचा है, ये जो है न्यूडूल, जो इसकी जड़ें होती हैं, इस जड़ों में आप देखेंगे गुलाबी रंग का गांठ बनता है, और उस गुलाबी रंग के गांठ में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है आवास करता है, और वही राइजोबियम जो है गांठों में रहते हुए जब राइजोबियम मरता है तो जमीन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में देता चला जाता है। जो वातावरण में हमारे 78% नाइट्रोजन है उसको जमीन में ला देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जनरली जो है ढैंचा बोने के लगभग 25 से 28 दिन बाद उसकी जड़ों में ये रजुबियों वाले पिंक कलर की जो है गुलाबी रंग की गांठें बनना शुरू होती हैं। तो 28 दिन के बाद ही वो गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 से कम 50 दिन तक वो गांठें बनती जाती हैं, संख्या उनका बढ़ता जाता है, और इस तरह से लगभग 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है फिक्स कर लेता है। जबकि हमको धान में जनरली 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात अगर सुगंधित धान है तो केवल हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं, और अगर हमारा हाइब्रिड धान है तो 120 किलोग्राम देते हैं। तो देखा जाए तो सुगंधित धान की उत्पादन हम केवल ढैंचा की ग्रीन मैन्योरिंग करके, हरी खाद के प्रयोग करके

0: हम सुगंधित धान का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको हाइब्रिड धान लेना है या हाई यील्डिंग धान लगाना है तो हमें लगभग लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है अलग प्रकार के सोर्स से देना होता है, जो उसको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे मजे की बड़ी मजे की बात यह है कि जब हम ढैचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो 80 किलोग्राम तक तो नाइट्रोजन देता ही है, लेकिन साथ में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, पोटास तथा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे है जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इन सभी को भी वो जमीन में दे देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जमीन में जो हमारे फसल उत्पादन के लिए माइक्रो और माइक्रो पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लगभग उनका एक बेल बैलेंस कॉम्बिनेशन में ये पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जो है हमारे जो मिट्टी की जो भौतिक अवस्था है वो तो सुधर ही रही है, केमिकल अवस्था जो है रासायनिक अवस्था सुधर रही है, साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल जो हमारे मृदा में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो 2-3 साल अगर हम ढैचे का प्रयोग खेत में करते हैं तो जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुधर जाता है और हम जो है अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्पादनता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो सर ने अभी बताया हमें कि हरी खाद का इस्तेमाल, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन एक बात सर मैं आपको बताऊं कि अगर जो किसान है, आपसे पूछना भी चाहूंगी और हमारे किसान भी आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद क्या इस महंगाई के इस दौर में क्या हरी खाद उनके लिए अच्छा सोर्स माना जाएगा अगर महंगाई के नजरिए से देखा जाए तो?
0: ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज देखिए जो हमारा भारत सरकार है वो जनरली 75% सब्सिडी पर आप किसान भाइयों को फर्टिलाइजर देती है, अर्थात जितना हमारे देश में 20 से 22 मिलियन टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उस सभी फर्टिलाइजर पर 75% तक सब्सिडी देती है। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट पर ओवरऑल कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है। पहले हम जो आज से 1950 से पहले खेती करते थे, हर साल जो है किसान भाई लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे खेतों में, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन 4 गुना से 5 गुना बढ़ चुकी है तो हरी खाद के लिए अब किसान भाइयों के पास समय नहीं मिल पाता है, वो लगातार इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं जिससे वो धीरे धीरे हरी खाद को भूल गए हैं। लेकिन हमारी स्वास्थ्य सॉइल मृदा का जो स्वास्थ्य है वो इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इतना खराब हो चुका है कि आज हरी खाद की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो लगभग लगभग जो फसल उत्पादन में 3/4 फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है वो हरी खाद से पूरी होती है। और हरी खाद से हम बताएं सबसे सस्ता जो है स्रोत है, हरी खाद जो है पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे सस्ता स्रोत है। आपको करना क्या, आप देखिए एक हेक्टेयर के लिए आपको करीब 30 से 35 किलोग्राम ढैंचा लगाना पड़ता है। अब ढैंचा लगाने के बाद उसको 50 दिन पर सीधे जमीन में इनकॉर्पोरेट करना है, तो अब 50 किलो ढैंचे का कीमत जो है आपका 1500 रुपया से ऊपर नहीं हो पाता है, अर्थात देखा जाए तो केवल एक बोरी DAP के बराबर हमारा खर्च हो रहा है और उससे हमको करीब 10 बोरी DAP के बराबर का लाभ मिल रहा है। तो हम क्यों ना उस लाभ को लेना चाहें, हमें सच कहिए तो जो हमारा ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री से फर्टिलाइजर मिलता है उसके प्रयोग को हम जीरो कर सकते हैं। अगर लगातार हम ढैचे का प्रयोग करें, क्रॉप रेसिड्यू का प्रयोग करें, जो फसल अवशेष है उसका प्रयोग करें, भूरी खाद का प्रयोग करें, अजोला का प्रयोग करें, नील हरी शैवाल का प्रयोग करें और जो हमारी केक्स हैं जो उसको हम केक्स विभिन्न प्रकार के हैं इन सब का प्रयोग करें, मतलब जो पोषक तत्व के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्रोत हैं, इन सभी का एक साथ समन्वित प्रयोग करें तो हो सकता है हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उसके प्रयोग को हमें जरूरत ही न पड़े, तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है एक स्वस्थ फसल के उत्पादन की कामना कर सकते हैं और आज उसी की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखिए कि सब जगह जो है जो हमारा प्रोड्यूस मिल रहा है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर द्वारा प्रोड्यूस है जिससे हमको विभिन्न प्रकार के बीमारियां और रोगों का सामना करना पड़ रहा है। आज पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा वो लोग उपयोग करते हैं जिससे वहाँ देखिए जो ग्राउंड वाटर, आपको बता दें कि जितना हम नाइट्रोजन डालते हैं उसका केवल 30 से 35% भाग ही पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी 60 से 65% भाग जो है विभिन्न प्रकार से नष्ट हो जाता है, 15 से 17% जो है ऊर्ध्वाकरण द्वारा वो ऊपर उड़ करके नष्ट हो जाता है, 25 से 30% लीचिंग ग्लासेस द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, भूमिगत जल में चला जाता है और उसी भूमिगत जल को हम पीते हैं। तो आजकल पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जल है वहाँ पर नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो वहाँ आप देखेंगे कि बच्चों में जो है नीला पीला होना, उनका कलर जो है नीला होता है जब जन्म लेते हैं, बहुत से बच्चे नीले कलर के जन्म लिए होते हैं, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं और ये जो है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी

0: वजह से होता है। तो आज की तो सख्त जरूरत है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और अपने बजट को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार हरी खाद का उपयोगिता ओवरऑल देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कम खर्च में कम बजट में हरी खाद को अच्छे से अपना करके अपने मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तथा पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रति हेक्टेयर 8 से 10 हजार रुपया खर्च होता है फर्टिलाइजर में, उसमें हम तीन चौथाई भाग तक कटौती कर सकते हैं, अर्थात करीब 8 से 10 हजार रुपया हम बचा सकते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के द्वारा जो हम राइस में देते हैं, धान में देते हैं। अगर हम हरी खाद देते हैं तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपया हम अलग से बचा लेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि जो हरी खाद है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है हमारे किसान भाइयों के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि 50 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 1500 रुपये लगभग खर्च होते हैं और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के जो हानिकारक जो तरीके हैं क्रियाओं के बारे में सर ने बताया और बच्चों में जैसे कि बीमारियाँ फैल रही है और युवाओं में और जो बुज़ुर्ग लोग हैं सभी में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। और अब हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जब किया जाए तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सर, तो ऐसे कुछ बातों के बारे में बताएंगे आप जिसका ध्यान खास तौर पर हमारे किसान भाई और बहन रखें।
0: देखिए, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हम किस फसल के लिए समेकित पोषक तत्व देने जा रहे हैं। जैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जो है धान में करना है, तो धान के लिए जो हमारा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, अगर हम हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी लगाते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसको हम बेस मान लेते हैं, उसको हम विभिन्न प्रकार के स्रोत हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमको सबसे चीपेस्ट सोर्स हरी खाद है, तो अब हम हरी खाद देते हैं तो जनरली अगर एक अच्छी फसल है हरी खाद की तो 80 किलोग्राम तक जो है ढैंचा या सनई के द्वारा हम अगर हरी खाद दे रहे हैं तो 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ढैंचा में एक प्रजाति और है जैसे सिस्बनिया रोस्टाटा कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें जड़ में भी गांठ बनती है और तना में भी गांठ बनता है, दोनों में राइजोबियम रहता है। तो सिस्बनिया रोस्टाटा जो ढैंचे की प्रजाति है इससे करीब 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स रहता है। तो आप देखिए, अगर हम सिस्बनिया रोस्टाटा को ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारा 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। उसी रेशियो में 0.2% उसमें फास्फोरस भी होता है और 0.4% तक जो है पोटाश भी होता है। तो देखा जाए तो धान के लिए जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश चाहिए सिस्बनिया रोस्टाटा के केवल ग्रीन मैन्योरिंग से ही अकेले जो है ढैंचा की सिस्बनिया रोस्टाटा की जो ढैंचा वाली प्रजाति है केवल इससे हमारा अकेले जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, हमें अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिस्बनिया एक्विलेटा प्रयोग करते हैं जो केवल जड़ों में गांठें बनती हैं तो केवल उससे 80 किलोग्राम तक मिलता है नाइट्रोजन, तो बाकी हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है 40 किलोग्राम वो अलग से देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ध्यान ही देना होगा मुख्य रूप से कि हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट डाल रहे हैं। जैसे हरी खाद डाल रहे हैं तो हरी खाद से हमारा कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश या सूक्ष्म पोषक तत्व ये सब जमीन को मिल रहा है। फिर उसके बाद फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके आधार पर हम दूसरी खाद चाहे फसल अवशेष है चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसके माध्यम से बाकी फुलफिल करेंगे। वैसे अमूमन देखा जाए तो जो हमारा अब तक का रिकमेंडेशन है, जनरली अगर हमारे पास हरी खाद या ऑर्गेनिक खादों की कमी है तो हम क्या करते हैं 3/4 मतलब 75% भाग जो है हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं और 25% भाग जो है पोषक तत्व का वो है वो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक स्रोत हैं जो कार्बनिक स्रोत हैं फर्टिलाइजर के खाद के उससे देते हैं, चाहे हरी खाद के रूप में दे दें या भूरी खाद के रूप में दे दें, चाहे नीले सरवाल से दे दें या अजोला से दे देते हैं या फसलों से दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हरी खाद और ये सब विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक खाद हैं इनकी उपलब्धता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो है अधिक से अधिक मात्रा इनसे दिया जाए, बचा हुआ मात्रा जो है वो फर्टिलाइजर के माध्यम से दिया जाए, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उससे दिया जाए।
1: तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि अगर आप नाइट्रोजन पोटास या जो भी सूक्ष्म जीव पोषक तत्व हैं आप अपने मिट्टी को या खेत में जो मृदा है आपकी आप उसमें डाल रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी कितने परसेंट में या फिर कितने प्रतिशत वो उसे कंज्यूम कर रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा अगर हरी खाद है तो आप इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया आपको। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, और आपको बता दूं किसान

0: भाइयों की हाल ही में एक अनुसंधान में पाया गया है कि समेकित पोषक तत्व जैसे कि गोबर की खाद या हरी खाद या फसल अवशेषों के भूसे द्वारा कुल पोषक तत्वों के 50-75% आपूर्ति में फसल प्रणाली की उपज में वृद्धि हुई है और इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए आप इस पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन INM का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अपना सकते हैं। आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपने हरी खाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद के अलावे क्या कुछ ऐसे कार्बनिक खाद हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया, हरी खाद जो है एक सबसे सस्ता स्रोत है, सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट है, आजकल बहुत आसानी से मिल जा रहा है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे पास विभिन्न फसलों के अवशेष हैं उनको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, और जो हमारे पास खलियां हैं, जैसे कि पहले हम लोग के पास नीम की खली हुआ करती थी, महुआ की खली हुआ करती थी, मूंगफली की खली हुआ करती थी, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया, गोबर की सड़ी हुई खाद, चूंकि हम बात कर रहे हैं गोबर की सड़ी हुई खाद की, किसान भाई लोग अक्सर क्या करते हैं, गोबर की कच्ची खाद डाल देते हैं खेत में, तो उसे क्या होता है, कच्ची खाद में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे दीमक और कटवर्म का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कृपया आप लोग से अनुरोध होगा हमारा कि आप गोबर की खाद जो भी है, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, जो भी आपके पास उपलब्ध है, वैसे तो अमूमन जो है कम से कम 10-15 टन डालना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना उपलब्ध नहीं है, आप 10 क्विंटल भी अगर खेत में डालते हैं तो बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। उसका कलर जब भूरे रंग का हो जाए, सड़ी हुई गोबर का, उसको बकायदे गड्ढे में जो है अच्छे से डिकम्पोज करिए, अच्छे से सड़ाइए, और सड़े हुए गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। देखा गया है कि गोबर के खाद में लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटास होता है। तो आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हम इतना क्विंटल अगर दे रहे हैं तो कितना केजी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास हमारी ज़मीन को मिल रहा है। बाकी मात्रा आप जो है बर्मी कंपोस्ट से भी दे सकते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट भी क्या है, जनरली जो हमारा कछुआ है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम अधसड़े गोबर पर रिएक्ट करा करके उसे हम बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह दानेदार जो है मटेरियल, वो कछुआ चूँकि इसको खाता है और खाने के बाद कास्टिंग करता है, तो जो चाय की पत्ती जैसा गंधहीन जो है दानेदार बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और बर्मी कंपोस्ट में जनरली 2% तक नाइट्रोजन, 1-1.5% तक फास्फोरस और इस तरह से लगभग 1.5% तक पोटास भी होता है। देखा जाए तो बर्मी कंपोस्ट FYM मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद की तुलना में 4-5 गुना ज़्यादा जो है पोषक तत्व रखता है। साथ ही साथ बर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि फसल की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट चूँकि महंगा पड़ जाता है, मार्केट में 6-7 रुपये किलो है, तो इसका प्रयोग आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ जाता है। आप अपने घर पे ही बर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं और तैयार करके अपने खेतों में डाल सकते हैं, धान है या विभिन्न प्रकार की जो महंगी सब्जियां हैं उनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल अवशेष है, हम जनरली देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे फसलें हैं, चाहे रबी की फसलें मक्का हो या गेहूँ हो, इसको हम लोग आग लगा करके जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि एक साइड में जो है हमारे पास जो है जो मृदा की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और पोषक तत्व जो क्रॉप रेसिड्यू में जो अवशेष में पोषक तत्व होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, और जो कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बेहतर होगा कि जो रेसिड्यू है, जो फसल के अवशेष हैं, उसको हमेशा समय जमीन में ही इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, और उसको जो है जमीन में जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जमीन में जोताई करके मिला देते हैं, तो धीरे धीरे सड़ गल जाता है और फसलों को एक अच्छी प्रकार का पोषक तत्व देता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जनरली 3/4 भाग जो है, 75-80% भाग जो है जो पोषक तत्व जमीन से पौधा लेता है, उसका 75-80% भाग जो है जब हम उसके डंठल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जमीन में मिला देते हैं, तो 75-80% भाग वापस जमीन को मिल जाता है। अर्थात जो आपका पोषक तत्व जमीन से लिया गया है उसका 75-80% तक जो है वापस जमीन में मिल जाता है, अगर हम उसके रेसिड्यू को जलाने के बजाय हम उसको जमीन में मिला देते हैं। तो तो हम चाहेंगे कि आप रेसिड्यू का भी जो फसल अवशेष है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करें, उसको जलाएं नहीं, उसको जमीन में ही इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे भी कुछ पोषक तत्व जो है आपको

0: खाद है और वर्मी कंपोस्ट है और जो कुछ खलियां इत्यादि हैं उनका भी प्रयोग करें। एक हमने बात कहा भूरी खाद, भूरी खाद हम धान धान जो धान की रोपी धान है उसमें नहीं कर सकते, केवल जो धान की हम सीधी बुआई करते हैं उसी समय हम ढैंचा 30 किलो ले लेते हैं और 30 kg जो है धान ले लेते हैं और सीड ड्रिल के द्वारा तैयार खेत में हम सीधे बुआई कर देते हैं, तो धान और ढैंचा साथ साथ चलते हैं। उसके बाद जब 30 दिन का हो जाता है धान तो उसमें हम 240 डाल करके 600 से 650 ग्राम सक्रिय तत्व 240 का लेते हैं और छिड़काव कर देते हैं, या कोई दूसरी हर्बिसाइड जो धान में प्रयोग की जाती है उसका हम प्रयोग कर देते हैं, तो ढैंचा जो है वहीं गल करके मर जाता है और धीरे धीरे जमीन में वो मिल करके एक अच्छा जो है हरी खाद भूरी खाद का के रूप में वो पोषक तत्व प्रदान करता है और साथ साथ जो मृदा का टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस किया रहता है, जो मृदा की भौतिक और रासायनिक और जैविक अवस्थाएं हैं उनको सुरक्षित रखता है और मृदा स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। इस प्रकार से आप जो है हरी खाद हुआ, भूरी खाद हुआ, नील हरित शैवाल हुआ, अजोला केक्स यानी खलियाँ तथा फसल अवशेष का प्रयोग करते हुए साथ में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करके आप अपनी फसल को तथा मृदा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया अभी कि जो कार्बनिक खाद है इसके रूप में आप जो गोबर खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही रवि फसल के जो अवशेष हैं उसे बिल्कुल ना जलाएं बल्कि उसे जो अपने खेत में अगर आप गाड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हरी खाद, भूमि खाद, उजोला का इस्तेमाल करके आप अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आज आप सभी के साथ यहाँ पर हमारे उन्नत कृषि प्रोग्राम में थे डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी और इन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों और बहनों को। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और आप लोग सभी लोग को नमस्कार।
1: तो अगली बार अगले प्रोग्राम में अगले विषय के साथ अगले चर्चा के साथ फिर से हाजिर रहूंगी मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ मुनाफो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम

नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डाले अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगाई 11 जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी जरूरी मिनरल्स है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज आएंगी, तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा अगर आपके अंदर

विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती है, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफी डल हो जाती है। तो इन सारी चीजों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना? तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में, और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
2: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
1: संक्रमण होने
2: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नजर आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
1: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है।
2: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं, और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
1: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
2: ज्यादातर पाया ही जाता
1: है। और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है।
2: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
1: और
2: गला में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः

0: मृत्यु हो जाती।
1: और सर एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
0: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
1: तो इसके लक्षण क्या?
0: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है। और यह सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है। प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है। और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है। और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
1: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग।
1: खुर और मुँह,
0: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
1: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
0: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
1: अच्छा।
0: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में, खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
1: उनको नुकसान होता है,
0: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं, और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
1: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते क्योंकि उन्हें

0: कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
1: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का सब चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
0: और नमी और में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
1: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो, और ऊंचे स्थान पर रखें। वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वह नमी की कमी रहती है।
0: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती हैं?
1: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
0: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
1: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
0: अच्छा।
1: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
0: अच्छा।
1: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
0: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
1: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
0: जहां पर सभी पशु,
1: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि

0: बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल जो जल जमाव है वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
1: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
0: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
1: अच्छा।
0: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
1: कृमिनाशक,
0: हाँ, कृमिनाशक दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद। ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
1: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो है वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
0: जहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडीमाडीन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडीमाडीन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई ज़रूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव।
1: हाँ।
0: तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान
0: होता है।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में

0: में होने वाली बीमारियों और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से जिंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है, और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरते, और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले। और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें, और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले, और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें, या फिर डायमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाई मेथो 8 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर

पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।